100.7 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के एफएम प्रसारण सेवा का लखनऊ केंद्र है। आज दिन सोमवार ज्येष्ठ मास की चौथी तिथि शक संवत 1948 तदनुसार 25 मई 2026 है। प्रातः के 5:55 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा आरंभ होती है।

मन की चंचलता में संसार है और मन की स्थिरता में परमात्मा। परमात्मा की आराधना भक्ति संगीत की साधना कार्यक्रम पुष्पांजलि।

सुमंगल सुप्रभात नमस्कार। 100.7 FM रेनबो के सभी श्रोताओं का आज की इस पावन सुबह में हार्दिक अभिनंदन है। प्रातः का ये समय अपने साथ एक नई ऊर्जा लेकर आता है, जब चारों ओर एक शांत वातावरण होता है और मन सहज ही ईश्वर से जुड़ जाता है। ऐसे में स्मरण होता है प्रथम पूज्य श्री गणेश का, जिनकी वंदना के साथ हर मंगल कार्य का शुभारंभ होता है। इसी निर्मल भाव के साथ आज के कार्यक्रम पुष्पांजलि का आरंभ करते हैं। मैं हूं आपकी साथी आयुषी। तो आइए प्रथम पुष्प अर्पित करते हैं विघ्नहर्ता मंगल मूर्ति श्री गणेश के चरणों में।

आज गंगा दशहरा का पावन अवसर है। राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और अटूट संकल्प का ही परिणाम था मां गंगा का पृथ्वी पर पावन अवतरण। किंतु उनके वेग को धारण करने का सामर्थ्य केवल महादेव में था। अपनी जटाओं में उन्हें स्थान देकर शिव ने न केवल पृथ्वी की रक्षा की बल्कि करुणा और संरक्षण का अनुपम उदाहरण भी प्रस्तुत किया। मां गंगा और देवाधिदेव के इस गंगाधर स्वरूप को कोटि कोटि प्रणाम।

भारत की असंख्य आध्यात्मिक परंपराएं मां गंगा के तटों से जुड़ी हुई हैं। ऋषियों की साधना, संतों की वाणी और तीर्थों की महिमा उनकी धारा के साथ युगों युगों से प्रवाहित होती आई है। मां गंगा की धारा ने युगों से आस्था और आध्यात्म को एक सूत्र में पिरोए रखा है।

कैलाश की धवल चोटियों पर ध्यान मग्न महादेव, जो असीम शांति और अडिग धैर्य के स्वामी है, उनका स्वरूप भीतर के उस मौन की ओर ले जाता है जहां आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। अपने भीतर के मौन को पहचान लेना ही मनुष्य की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि है। देवादिदेव महादेव को कोटि कोटि प्रणाम।

महादेव को आशुतोष कहा जाता है। वे जो सच्चे भाव से की गई प्रार्थना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हें वैभव नहीं श्रद्धा प्रिय है, उन्हें आडंबर नहीं निष्कपट भक्ति प्रिय है। तो चलिए भोलेनाथ के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं।

महाकाल का स्वरूप काल की उस अनवरत धारा का स्मरण कराता है जिसके आगे सब कुछ क्षणिक है, जहां समय निरंतर गतिमान है और प्रत्येक क्षण अमूल्य है। कालों के काल महाकाल को कोटि कोटि प्रणाम।

भोलेनाथ का दरबार सभी के लिए खुला है। वहां भेद नहीं, केवल भक्ति का महत्व है। सच्चे मन से किया गया स्मरण ही उनके चरणों तक पहुंच जाता है। जहां संसार के द्वार बंद हो जाते हैं, वहां से महादेव की कृपा आरंभ होती है। आइए महादेव के चरणों में वंदन अर्पित करें।

0: मन में शिव, मन में राम, करुणा के सागर प्रभु श्री राम, जिनके जीवन का प्रत्येक प्रसंग धर्म और मर्यादा की एक नई प्रेरणा देता है। उनका जीवन केवल एक कथा नहीं बल्कि आदर्शों की अमूल्य धरोहर है। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को सादर प्रणाम।
1: सिर्फ सारे गाने।

अब पुष्पांजलि कार्यक्रम को यही विराम देने का समय है। इन भक्ति भरे स्वरों की मधुरता आपके साथ पूरे दिन बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे यानी आयुषी को पुष्पांजलि से अनुमति दीजिए। पर आपके

हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप कनेक्ट हो चुके हैं सिटी की म्यूजिकल हार्टबीट एफएम रेनबो कानपुर के साथ। जी हाँ, जिसे आप सुनते हैं 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर। आवाज सुनकर तो पहचान ही लिया होगा आपने मुझे। जी हाँ, आज के गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम के सफर पर मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजी कौसर। सो इस ब्यूटीफुल मॉर्निंग में आपका हार्टली वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। आज सोमवार है, शक संवत 1948, विक्रम संवत 2083। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि, तदनुसार 25 मई सन 2026। गुड विशेष है आपके लिए, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो और पूरा दिन आपका खुशनुमा हो। बिल्कुल इस सॉन्ग की तरह।

जी हाँ, साथ ही तो है आपका, हर पल आपका एंटरटेन करता है, आपका साथ देता है। और ये और कोई नहीं, एफएम रेनबो की ही बात कर रही हूँ, जी हाँ, जिसे इस वक्त आप सुन रहे हैं। और एफएम रेनबो कानपुर पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम। तो यूं तो हमारे साथ आप बने रहे 102.2 की फ्रीक्वेंसी पर, और आज मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौशल। फिलहाल टाइम है आज के विचार यानी कि मॉर्निंग थॉट का। दोस्तों, कबीर दास जी का एक दोहा है कि जिन खोया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। यानी कि जो जितनी मेहनत करता है उसे उसका उतना फल जरूर मिलता है। गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर ही आता है, लेकिन जो डूबने के डर से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं वो कुछ भी नहीं कर पाते।

तो बस मतलब यही है दोस्तों कि अगर कुछ पाना है, उसकी चाह है, तो अपने डर को छोड़कर आगे बढ़ना होगा। सिर्फ खड़े रहकर एक जगह कुछ हासिल नहीं होने वाला। पर अभी तो आप एक जगह बैठकर या फिर चाय नाश्ता करते हुए भी एंजॉय कर सकते हैं एक ब्यूटीफुल सा सॉन्ग, जिसे बस अब मैं प्ले कर रही हूँ आपके लिए।

हे गाइस, यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर वेदी और आरजे कौसर। ऑनगोइंग प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कानपुर एंड नाउ द टाइम इज सम इम्पोर्टेंट ट्वीट्स का, जो कि सोशल मीडिया पर ब्लिंक करती हुई मुझे नजर आ रही हैं।

तो भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि उन्होंने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का दौरा किया। सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ऐसी क्षण ये है याद दिलाते हैं कि अमेरिका भारत साझेदारी केवल मजबूत नीतियों पर ही नहीं बल्कि साझा मूल्यों और निस्वार्थ सेवा की भावना पर भी आधारित है जो सीमाओं से परे है। भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। मंत्रालय के अनुसार शरीर में पानी की कमी न होने दें, हल्का

भीषण गर्मी और लू के इस मौसम में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की है। मंत्रालय के अनुसार शरीर में पानी की कमी न होने दें, हल्का भोजन करें और चाय कॉफी जैसे अन्य पेयों से दूरी बनाकर रखें। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और बीट द हीट अभियान के साथ गर्मी को मात दें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में कहा है कि उत्तर प्रदेश आज पर्यटन, व्यापार और निवेश के क्षेत्र में तेजी से एक वर्ल्ड क्लास डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। उन्होंने जेवर और यमुना एक्सप्रेसवे डेवलपमेंट अथॉरिटी के आसपास जो तेज बदलाव दिखाई दे रहे हैं, वे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर पेश करते हैं। तो बस इसी खुशी में गुनगुनाइए कुछ ऐसे

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर के साथ। और चलिए अब नजर डालते हैं अतीत के आईने पर कि आखिर क्यों खास है आज का दिन आज की तारीख। दोस्तों आज है 25 मई और आज सेलिब्रेट किया जा रहा है वर्ल्ड फुटबॉल डे। जी हाँ, जो सिर्फ एक खेल का उत्सव नहीं बल्कि एकता, टीम स्पिरिट और जुनून का प्रतीक है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य संस्कृतियों, भाषाओं और सीमाओं से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ना, खेल शांति और सतत विकास को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही साथ आज शिक्षाविद और क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जन्म जयंती है, जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। आज यानी 25 मई 2005 को एक महान टैलेंटेड एक्टर सुनील दत्त ने इस दुनिया को अलविदा कहा। आज है उनकी पुण्यतिथि। और आज ही के दिन 2001 में भारत की जानी मानी पर्वतारोही संतोष यादव ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट फतेह कर इतिहास रच दिया।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूँ?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: पर्सनल लोन ऑफर
5: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
4: फ्री ट्रिप टू दुबई
5: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
6: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
5: तो क्या करूँ?
6: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
5: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
6: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
7: FM रेनबो कानपुर के स्टूडियो से आप एंजॉय कर रहे हैं गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम अपनी रेडियो हमसफर RJ कौसर के साथ। और अब इस मॉर्निंग शो में चलते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन अपडेट्स की तरफ। भारत अमेरिका रिश्तों में दिखी गर्मजोशी, जल्द होगी ट्रेड डील। दोनों देशों के लिए ये समझौता होगा लाभदायक और टिकाऊ। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में आज 3 दिन के दौरे पर भारतीय व्यापार जगत का एक प्रतिनिधि मंडल कनाडा जाएगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सामरिक सहयोग मजबूत करने के लिए भारत 26 मई को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। ये बैठक स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का साझा नजरिया आगे बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगी। तो देश विदेश की खबरों में बस इतना ही आज फिलहाल। तो करते हैं सफर, सफरनामा सॉन्ग के जरिए।

दोस्तों गुड मॉर्निंग कार्पर प्रोग्राम में आप लेते हैं एक टर्न और ये टर्न जाता है शहर और उसके आसपास की इम्पोर्टेंट अपडेट्स की तरफ। तो सबसे पहले ये अच्छी खबर है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि आर्थिक मजबूरी के कारण कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे। बाल श्रमिक विद्या योजना अब प्रदेश के सभी 75 जिलों में लागू होगी। सरकार कौशल विकास रोजगार मेले सेवा मित्र व्यवस्था और श्रमिक सुविधा केंद्रों को मजबूत कर युवाओं को और श्रमिकों को बेहतर अवसर देने पर भी जोर दे रही है। इसके बाद ये भी न्यूज आपको सुना दूं कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण भारत में रोजगार और आजीविका की गारंटी देने वाले विकास भारत रोजगार और आजीविका मिशन की अधिनियम 2025 के मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। इस कानून को 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा। इन नियमों का उद्देश्य कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है। और अब एक जायकेदार खबर है आपके लिए, वो ये कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत कानपुर मंडल के जिलों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी है, जिसके तहत कानपुर के मशहूर समोसा लड्डू और मक्खन मलाई को आधिकारिक रूप से चुना गया है। तो इसी जायकेदार खबर के साथ आपके लिए भेज रही हूँ ये जायकेदार सॉन्ग।

You are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur with your RJ Kausar. तो अब हमारे किसान श्रोताओं से कहना चाहूंगी कि पीएम किसान योजना की 23वीं किश्त के लिए ई-केवाईसी बहुत जरूरी है कराना। और क्या आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है? अगर नहीं तो इस काम को तुरंत पूरा करवा लें, वरना आप पीएम किसान योजना की किस्त के लाभ से वंचित रह जाएंगे। साथ ही आपको बता दूं कि टीजीटी यानी कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए परीक्षा जनपद की सूचना वेबसाइट upessc.up.gov.in पर जारी कर दी गई है। इसके प्रवेश पत्र 30 मई से आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकेंगे। साथ ही गंगा दशहरा के पावन पर्व पर आज लगाई जा रही है आस्था की डुबकी। हजारों श्रद्धालु बिठूर सहित अन्य घाटों पर स्नान करेंगे, लेकिन बिठूर का लक्ष्मण घाट प्रतिबंधित रहेगा और कोई भी नाव नहीं चलेंगी। साथ ही ये भी बता दूं कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कानपुर क्षेत्र के तत्वाधान में रोजगार से विकसित भारत कार्यक्रम 31 मई को होगा। इसमें 15 जिलों के विकसित भारत रोजगार योजना के तहत नौकरी पाने वाले 700 लाभार्थी और नियोक्ता शामिल होंगे। तो बस आशाएं ऐसे ही बनाए रखिए, क्योंकि जहां आशाएं और उम्मीदें होती हैं कामयाबी भी वहीं पर मिलती है।

0: पेश है खेल जगत की दमदार खबरों की उड़ान। तो गाइज आपको पता ही है कि आईपीएल के शानदार मैचेस चल रहे हैं। इसमें कल भी दो मुकाबले हुए, पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच, वहीं दूसरा मैच हुआ कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच, जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के प्लेबैक में जगह बना ली है। जी हाँ, राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल 2026 के प्लेऑफ में जगह बना ली है। उसने ग्रुप चरण के आखिरी मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 30 रनों से हराया और इसके साथ वो प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सबसे बड़ी घरेलू श्रृंखला रणजी ट्रॉफी की शुरुआत 11 अक्टूबर से होगी। दो चरणों में होने वाले इस टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम को ग्रुप ए में शामिल किया गया है और इस नए सीजन में यूपी की टीम नई रणनीति के साथ मैदान में उतरेगी। रांची में जारी नेशनल फेडरेशन कप में जालंधर के गुरविंदर सिंह ने ऐसा इतिहास रच दिया जिसने जालंधर ही नहीं पूरे पंजाब का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। अधूरी सुविधाओं और संघर्षों के बीच अभ्यास करने वाले गुरविंदर वीर ने 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया। और पांचवी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी क्रिकेट T20 चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की टीम ने डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को हराकर शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब और टूर्नामेंट अपने नाम किया है। तो ये थी कुछ खेल जगत से जुड़ी हुई खबरें। और बस ये देखिए आ गया है एक वैसा ही सॉन्ग।
1: Mara.

और आइए अब चलते चलते आपको मौसम का हाल भी बता देते हैं। भीषण गर्मी का दौर शुरू होने जा रहा है और आज से यानी कि 25 मई से नौतपा शुरू होने के साथ 2 जून तक चलेगा ये पूरा नौतपा। और इस दौरान सूर्य की किरणें सीधे धरती पर पड़ने से तापमान तेजी से बढ़ेगा और गर्म थपेड़े लोगों को बेहाल करेंगे। मौसम विभाग ने 28 मई तक राज्य के कई जिलों में रेड व कानपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार नौतपा के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल वातावरण में नमी भी मिल रही है, ऐसे में शाम के समय बादल छा सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर एवं मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आगामी 5 दिनों में आसमान साफ रहने के कारण वर्षा की फिलहाल कोई संभावना नहीं है तथा लू का प्रकोप 24 से 28 मई 2026 तक जारी रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये थे आज के मौसम के हाल।

तो बस एक हैप्पी एंडिंग के साथ करते हैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप। और जाते जाते कहना चाहूंगी कि जब भी सुबह की धूप आपकी खिड़की पे दस्तक दे तो सोच लीजिएगा कि जिंदगी एक बार फिर जीने की नई वजह दे गई। तो जिंदगी को यूं ही हंसकर मुस्कुराकर खुशी से जीते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट हर दिन को खास बनाती है। इन्हीं खूबसूरत एहसासों के साथ मुझे यानी आरजे कौसर को दीजिए इजाजत गुड मॉर्निंग कानपुर प्रोग्राम से। और अब आपको ले चलूंगी देश और दुनिया की ताजा अपडेट्स के लिए अपने दिल्ली केंद्र।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजाति समुदाय का स्वामित्व तो होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2

0: 61 पैसे और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
3: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त न करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
3: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़

0: छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हुर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौताओं को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हुर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हुर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ते ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल। प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek.

0: डियर रेनबो लिसनर्स, आपका और हमारा रिश्ता है बड़ा पुराना, पर इसे और भी गहरा बनाने आ रहा है एक खास बहाना।
1: जी हाँ,

0: एफएम रेनबो कानपुर के कार्यक्रमों पर अब आपकी राय, आपकी पसंद और आपके सुझावों का रहेगा हमें इंतजार। लेकर आ रहे हैं हम अपना फीडबैक शो मेल मिलाप।
1: हमें बताइए आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लगते हैं, क्या और सुनना चाहते हैं आप। तो नोट कीजिए, हर महीने के चौथे बुधवार दोपहर 3:45 पर होगा हमारा आपका मेल मिलाप।
0: अपनी प्रतिक्रियाएं हमें लिखकर भेजें इस पते पर, कार्यक्रम मेल मिलाप, विज्ञापन प्रसारण सेवा, आकाशवाणी कानपुर, बेना झाबर रोड, कानपुर, पिन कोड है 208002।
1: हमें ईमेल करें, हमारा ईमेल एड्रेस है fmmelmilaap@gmail.com पर, यानी कि fmmelmilaap@gmail.com। भूलिएगा मत, हर महीने का चौथा बुधवार दोपहर 3:45 सिर्फ एफएम रेनबो कानपुर पर मेल मिलाप।
2: एक आवश्यक सूचना सुनिए, कला साहित्य शिक्षा खेल चिकित्सा और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के लिए भारत सरकार द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं अपने नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.in पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। नामांकन करते समय संबंधित व्यक्ति की उपलब्धियों और सेवाओं का स्पष्ट और विस्तृत विवरण सही प्रारूप में अंकित होना सुनिश्चित करें। पद्म पुरस्कारों से संबंधित नियम और विनियम padmaawards.gov.in पर देखे जा सकेंगे। एक बार फिर हम बताना चाहेंगे, padmaawards.gov.in पर आप नियम और विनियम इस अवार्ड से संबंधित देख सकते हैं। नामांकन करने की अंतिम तिथि है 31 जुलाई 2026। सूचना समाप्त हुई।

हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आ चुकी हूँ मैं आपकी अपनी रेडियो हम सफर आरजी कौसर एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो में। जी हाँ, और साथ में लाई हूँ सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम। वैसे पुराने गीतों की खुशबू जब हवाओं में घुलती है तो बीते दौर की यादें भी मुस्कुराने लगती हैं। कभी मोहब्बत के नगमे, कभी दिल की हल्की सी कसक और कभी जिंदगी को बेहद सादगी से बयां करते गीत। तो आइए आज की सुरीली महफिल में हम कुछ ऐसे ही यादगार गीतों के साथ शुरू करते हैं ये सफर।

श्रोताओं, आज 25 मई है और आज ही के दिन हिंदी सिनेमा के बेहद टैलेंटेड अभिनेता रहे सुनील दत्त की आज पुण्यतिथि है। इसलिए आज का ये सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम करते हैं उनके नाम। और बस इस प्रोग्राम में आपने अभी सुना हमराज फिल्म का ये गीत जो सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। इसमें आवाज़ थी महेंद्र कपूर की, गीत को लिखा साहिर लुधियानवी ने और संगीत से सजाया रवि ने। और अब जो गाना आ रहा है वो पड़ोसन फिल्म का है, एक बार फिर सुनील दत्त पर ही फिल्माया गया है और जिसमें आवाज़ है किशोर कुमार की, गीत को लिखा राजेंद्र कृष्ण ने, संगीत से सजाया R.D. बर्मन ने।

0: सोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा, शोर नहीं, सोर, सोर, सोर।

आप सुन रहे हैं सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर के साथ 102.2 एफएम रेनबो कानपुर के स्टूडियो से। और श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज आपको सुनवा रहे हैं वो गीत जो एक्टर सुनील दत्त पर फिल्माए गए हैं। क्यों? क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। और चलिए इसी श्रृंखला में अब आ रहा है चिराग फिल्म का गीत आपके लिए। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोलें और मदन मोहन का संगीत है।

तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। जी हाँ, बहुत ही खूबसूरत सा ये गीत आपने सुना सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम में, और इसे फिल्माया गया था अभिनेता सुनील दत्त पर। आज हम आपको सुनील दत्त पर फिल्माए गीत इस प्रोग्राम में सुनवा रहे हैं, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि। आज और कल, जी हाँ, इस फिल्म का अब गीत आपको सुनवाएंगे। साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ है, रवि ने इसे संगीत से सजाया है, और आवाज़ एक बार फिर आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की।

आज और कल फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना और इसे गाया था रफ़ी साहब ने। और इसके बाद प्रोग्राम के आखिर में अब आपको सुनवाते हैं छाया फिल्म का गीत, जिसमें आवाज़ें हैं तलत महमूद और लता मंगेशकर की। राजेंद्र कृष्ण के गीत को संगीत से सजाया है सलील चौधरी ने और फिल्म का नाम है छाया। तो ये है इस कार्यक्रम का आखिरी गीत, सुनिए और इन्जॉय करिए।

छाया फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना तलत महमूद की आवाज़ में, और ये था सुरों की पुरानी महफिल प्रोग्राम का आखिरी नगमा जो आपने सुना। और इसके साथ ही इस प्रोग्राम से अपनी रेडियो हम सफ़र कौसर को दीजिए इजाज़त। बस कुछ ही देर में आपके लिए लेकर आ रहे हैं रस बहार प्रोग्राम, बने रहिए 102.2 FM रेनबो कानपुर पर।

रेडियो हम सफर कौसर। जी हाँ, लेकर आई हूँ इस वक्त आपके लिए रसों और सुरों से सजा कार्यक्रम रस पहार, जिसमें समाए हैं कई खूबसूरत एहसास। जी हाँ, एहसास वो जिसमें फुटबॉल के जुनून की गूंज है। गंगा दशहरा की पावन आस्था है, शुरू हो रही है नौतपा की तपिश। जी हाँ, और इस तपिश की आजमाइश है। और आज हफ्ते की नई शुरुआत की उमंग भी तो है, आज है मंडे। और इन सब के बीच आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने का सेलिब्रेशन भी तो है भाई। यानी यादों, संस्कृति और संगीत का एक सुनहरा सफर है आज के रस बहार प्रोग्राम में। तो बस बने रही अपनी आरजे कौसर के साथ, क्योंकि अब हर बात में होगा अपनापन और हर गीत में होगी जिंदगी की मिठास।

तो एक सबसे अच्छे एहसास के साथ आपने ये शेयर किया मेरे साथ गाना, और मैंने आपके साथ शेयर किया ये एहसास। आज वर्ल्ड फुटबॉल डे है, और आपको बता दूं कि ये वो खेल है जो सिर्फ मैदान में नहीं खेला जाता, जी हाँ, बल्कि दिलों में धड़कता है। आपको पता है कि ये फुटबॉल का खेल हमें सिखाता है टीम वर्क, जुनून और आखिरी पल तक कोशिश करते रहने का हौसला। कैसे? जी हाँ, जैसे एक खिलाड़ी पूरे मैदान में दौड़ते हुए गोल की तरफ बढ़ता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें लगातार आगे बढ़ने का एक मैसेज देती है और हमें इंस्पायर करती है। और शायद यही वजह है कि दुनिया के हर कोने में फुटबॉल लोगों को जोड़ता है, बिल्कुल संगीत की तरह। जैसे अभी ये सॉन्ग आपको जोड़ रहा है हमारे साथ।

तो गाइज आज है मंडे, वीक का फर्स्ट वर्किंग डे। यानी कि नई उम्मीदों की शुरुआत। और एज यू नो बेटर कि मंडे की सुबह कभी कभी सुस्त बनती है, लेकिन अगर साथ में अच्छा संगीत और मीठी मीठी प्यारी प्यारी सी बातें हों तो यही दिन पूरे वीक को खूबसूरत बनाने के लिए काफी होता है। तो दोस्तों, चाहे आप ऑफिस के लिए निकल रहे हो, पढ़ाई में जुटे हो या घर के कामों में बिजी हो, सब करिए, पर बस हर काम करते हुए होठों पर मुस्कान बनाए रखिए, क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नया मौका लेकर आती है। और मौके की बात चली है तो अब मौका है एक लवली सा सॉन्ग आपको सुनवाने का।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पुलिस?
2: मिस सीमा
1: जी,
2: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
1: क्यों? लेकिन मैं
2: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
1: डिजिटल अरेस्ट?
2: 1,00,000 दो, बच जाओगे।
1: इतने पैसे?
2: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए। अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो वरना बेटा जेल जाएगा।
1: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

वैसे दोस्तों गर्मी ही नहीं, यूं कहें कि इस बेतहाशा गर्मी की तपिश ने हम सब का हाल एकदम बेहाल करके रखा हुआ है। क्यों, मानते हैं ना आप मेरी इस बात को? और आज से शुरू हो रहा है नौ तपा, जो कि नौ दिन जम कर तपने वाला है अपने नाम की ही तरह। और वैसे भी नाम का असर तो होता ही है, आप सभी को मालूम है, पर आप ये भी जान लीजिए कि प्रकृति का यही संतुलन आने वाली बारिशों की तैयारी भी करता है। जैसे एक कठिन समय के बाद राहत मिलती है, वैसे ही गर्मी के बाद बारिश की फुहारें सुकून लेकर आती हैं। पर आपको फिलहाल अभी ये जो मौसम है, बेतहाशा गर्मी, तपिश और लू का, इसमें खुद का खास ख्याल रखना है। हल्का और संतुलित खाना ही खाना है, और हाँ, पानी की बिल्कुल भी कमी नहीं होने देना है। बॉडी में खूब पानी पीना है, और अभी फिलहाल आपको ठंडा ठंडा कूल कूल एहसास मैं एक सॉन्ग के जरिए ज़रूर दिला सकती हूँ। तो बस सुनिए ये सॉन्ग और करिए ठंडा ठंडा कूल कूल का एहसास।

तो माय डियर लिसनर्स, आपको मालूम है कि ये जो आकाशवाणी अपने 90 वर्षों का जश्न मना रहा है, 9 दशकों का ये सफर सिर्फ प्रसारण का इतिहास ही नहीं बल्कि भावनाओं, संस्कृति, साहित्य, संगीत और लोगों से जुड़े रिश्तों की कहानी है। पीढ़ियां बदलती रहीं, समय बदलता रहा, लेकिन रेडियो की खूबसूरत रूहानी आवाज हमेशा दिल के करीब रही और यही अपनापन आज भी 102.2 FM रेनबो कानपुर और विविध भारती कानपुर को आपकी लाइफ का एक पार्ट, एक खूबसूरत हिस्सा बनाता है। तो चलिए सुनते हैं एक और ऐसा ही ब्यूटीफुल सॉन्ग, आपके लिए प्ले कर रही हूं इसको।

सुन रहे हैं रस बहार अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर के साथ। जी हाँ, जिसमें आज थीम है संगीत, संस्कृति और यादों का सुनहरा सफर। दोस्तों, आज का दिन जो कि एक खास दिन है और ये दिन हमें एक खूबसूरत मैसेज देता है कि खेल हमें जोड़ते हैं, पर्व हमें संस्कार देते हैं। मौसम, जी हाँ, मौसम हमें धैर्य यानी कि पेशेंस की सीख देता है और रेडियो, उसके तो क्या ही कहने, वो तो हमें दिलों से जोड़ता है। और जब इन सब के साथ म्यूजिक यानी कि संगीत शामिल हो जाता है ना, तो सच में जिंदगी रस से भर उठती है, जिसमें हर एहसास लगता है कि बस सुरों में पिरोया गया है।

तो डियर लिसनर्स, अभी मुझे अपने सभी लिसनर्स से कहना है कि इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ा सा वक्त खुद के लिए भी निकालें भाई। अगर सुबह के वक्त की उस दिन में बात करें तो बस इतना ही काफ़ी हो सकता है कि हाथ में एक कप चाय अगर आपको पसंद है तो, होठों पर प्यारी सी मुस्कान और साथ में खूबसूरत से गीत, और उन्हें सुनवाने के लिए हम हैं ना स्टूडियो में। और रियली मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपकी इस प्यारी सी सुबह का आपके दिन का हिस्सा बनता है 102.2 FM रेनबो कानपुर। तो यूं ही हमारा हौसला बढ़ाते रहिए और हम सजाते रहेंगे ऐसे ही सुर, बस आपको जुड़े रहना है, सुनते रहना है FM रेनबो कानपुर।

तो दोस्तों आप प्रोग्राम को वाइंड अप करने का और इस प्रोग्राम से इजाजत लेने का वक्त आ चुका है। उम्मीद है इस रसबहार प्रोग्राम ने आपके मूड को थोड़ा खुशनुमा तो जरूर बना दिया होगा। जी हाँ, जिसमें था वर्ल्ड फुटबॉल डे का उत्साह, गंगा दशहरा की श्रद्धा, नौ तपा की तपिश की आजमाइश और आकाशवाणी के 90 वर्षों की मधुर यादों को हमने इसमें सुरों के साथ एक साथ जोड़ने की छोटी सी एक कोशिश की जो आपके सामने रखी। इसकी थीम थी संगीत, सुर, संस्कृति और यादों का सुनहरा सफर। और ये पूरा सफर आपने तय किया अपनी रेडियो हम सफर आरजे कौसर के साथ। और अब ये लास्ट सॉन्ग आपके लिए प्ले करने जा रही हूँ। इसके बाद आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट प्रोग्राम विविधा के साथ।

0: सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

Hey guys, you are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur. टाइम है विविधा प्रोग्राम का, जिसमें हर रोज डिफरेंट कलर्स होते हैं एंड टुडेज कलर चित्रपट से। आरजी कौसर है आपके साथ इस ब्यूटीफुल चित्रपट से प्रोग्राम में। चलिए फील करते हैं कुछ ऐसे सॉन्ग्स जिनमें है ब्यूटीफुल अमेजिंग फीलिंग्स। एंड फर्स्ट सॉन्ग इज कमिंग फ्रॉम द मूवी क्रिमिनल। सिंगर हैं कुमार सानू एंड अलका याग्निक। लिरिक्स इन दी वर्क एंड म्यूजिक M.M. करीम का।

एंड नाउ स्लो बीट सूदिंग वोकल्स एंड ड्रीम फील वाला ये सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। चित्रा सिंह की सोलफुल वॉइस, गुलजार के लिरिक्स एंड साथ में अनु मलिक का म्यूजिक इस सॉन्ग को बना रहा है सुपर्ब। अशोका मूवी का ये सॉन्ग प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग, इंजॉय करिए। एंड मैं आपसे मिलूंगी ठीक 11 बजे एक घंटे बाद हम नवा प्रोग्राम में आरजे लक्ष्मी द्विवेदी के साथ। तो बस बने रहिएगा 102.2 FM रेनबो कानपुर के साथ।

नमस्कार, सुबह के 10 बजे हैं। अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भीषण गर्मी और बढ़ती बिजली मांग के बीच प्रदेश में सुचारू और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों सहित प्रदेश के हर उपभोक्ता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कल लखनऊ में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा और राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत सहित ऊर्जा विभाग, पावर कॉरपोरेशन और डिस्कॉम के अधिकारियों के साथ विद्युत आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने विद्युत व्यवस्था बहाल रखने के लिए त्वरित रिस्पांस सिस्टम सक्रिय रखने को कहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पुलिस व्यवस्था को और आधुनिक सुरक्षित और तकनीकी आधारित बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की लोकेशन, मूवमेंट और संचार गतिविधियों की गोपनीयता सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी सेंधमारी की संभावना नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने पुलिस रेडियो नेटवर्क को अत्याधुनिक तकनीकों से सशक्त करने तथा दूरस्थ क्षेत्रों तक निर्बाध संचार व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में पुलिस रेडियो यूनिट के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को प्रस्तावित कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET UG 2026 स्थगित कर दिया है। NTA के अनुसार बकरीद की छुट्टी की तारीख में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा पर्व का आयोजन हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया। वहीं अमरोहा में भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल से ही रूट डायवर्जन लागू कर दिया गया। आज भोर होते ही ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर ब्रिज घाट पहुंचे और उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PAC, फ्लड PAC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात किए गए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का असर जारी रहने की चेतावनी दी है। लखनऊ स्थित मौसम विभाग केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि प्रदेश में गर्मी का प्रकोप बढ़ने की संभावना है। रविवार को 50 से अधिक शहरों में गर्म हवाएं चली। बांदा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। झांसी और उरई जालौन में 45.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि प्रयागराज में भी पारा 45.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने बताया कि सोमवार से शुरू हो रहा नौतपा और तपाएगा, हालांकि पूर्वांचल के 14 जिलों में हल्की बारिश का भी अलर्ट है। इसी के साथ ही बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन सुबह 11 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: करियर पर है ध्यान,
3: स्पोर्ट्स में करना है नाम,
2: पॉजिटिव है फैशन,
3: क्रिएटिव है पैशन,
2: टेक्नोलॉजी में रुचि,
3: बने पर्सनालिटी ऊंची,
2: फॉलो करें ट्रेंड्स,
3: आइए मिलिए युवा फ्रेंड्स
2: ओनली ऑन यूथ वेव।
3: यूथ की बात यूथ के साथ
2: शाम 4 बजे 100.7 FM रेनबो पर।
3: धड़कन लखनऊ की

जी दोस्तों, 10:04 का वक्त हो रहा है और आप सुन रहे हैं FM रेनबो। मैं हूं आपके साथ आपका दिल RJ निखिल। दोस्तों, ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप जो सुन रहे हैं वो हम आपको इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि ये जो टाइम है सुपरहिट सॉन्ग्स का समय है, तो अपने समय की जो सुपरहिट सॉन्ग्स है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक को एंजॉय करिए और उसके बाद और भी प्यारे से सुपरहिट सॉन्ग्स आएंगे आपके पास बिना किसी रुकावट के। तो सुनते रहिए नॉन स्टॉप सुपरहिट म्यूजिकल सॉन्ग।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा, NECC द्वारा जनहित में जारी।

धड़कन फिल्म से ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सुन रहे हैं अलका अभिजीत की आवाज में। फिलहाल दोस्तों 10:18 का वक्त आपके साथ ही आपका दिल आरजे निखिल सुनते रहिए 104.7 FM।

धड़कन फिल्म के इस सुपरहिट ट्रैक के बाद पेश है अब सबके लिए एक और सुपरहिट ट्रैक फ्रॉम द मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसे अपनी आवाज दी है लता मंगेशकर और उदित नारायण ने। 10:23 का वक्त, आप सुन रहे हैं सुपर हिट सॉन्ग्स और मैं हूं आपके साथ आपका दिल आरजे निखिल। सुनते रहिए।

0: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
1: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
0: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
1: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
0: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
1: 8700001-4242।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

0: है बदल। जो कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: पर्सनल लोन ऑफर
3: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
2: फ्री ट्रिप टू दुबई
3: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
4: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
3: तो क्या करूं?
4: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
3: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
4: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

यूं ही नहीं है ये सुपर हिट सॉन्ग, क्योंकि आपके दिल में जो चलता है उसकी रहता रखता है ये पहचान। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में मेरा मन मूवी से ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक, जो कि बहुत ही सुपर हिट। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे म्यूजिकल विद द लार्ज निखिल।

जी हाँ, सातों जन्म मैं तेरे साथ रहूंगा यार। दिलवाले फिल्म से ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक आप सुन रहे थे, और अब जो म्यूजिकल ट्रैक आ रहा है ये एक ऐसा सुपरहिट ट्रैक है जो पूरी दुनिया की जुबान पर अक्सर आपको सुनने को मिल ही जाता है। जी हाँ, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से इस प्यारे से म्यूजिकल ट्रैक की बात कर रहा हूँ, जिसका की नाम है आए हो मेरी जिंदगी में। और खासकर ये म्यूजिकल ट्रैक आज के दिन इसलिए भी प्ले कर रहा हूँ क्योंकि आज होता है कुणाल खेमू का बर्थडे, जिसमें कुणाल खेमू ने इस फिल्म में बाल कलाकार की भूमिका निभाई थी। तो एंजॉय करिए सुपरहिट ट्रैक को और बने रहिए अपने दिल के साथ आरजे निखिल के साथ। स्टे ट्यून्ड।

भी सुन रहे हैं। फिलहाल दोस्तों आपको बता दूं कि 10:57 का समय हो रहा है और ये टाइम है प्रोग्राम सुपर हिट सॉन्ग्स को वाइंड अप करने का। तो इस प्रोग्राम के साथ, इस सॉन्ग के साथ मैं इस प्रोग्राम को वाइंड अप तो करूंगा, लेकिन आपको बता दूं जो हमारा अगला प्रोग्राम है न्यूज ब्रेक के बाद, उसका की नाम है संदेश आपके गीत हमारे, जहां पर आप हमें ईमेल के जरिए या फोन कॉल के जरिए हमें अपना ईमेल भेज सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही अच्छा सा मैसेज लिख सकते हैं और उसको हम वहां वहां तक पहुंचाएंगे जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है। और ईमेल करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर, और कॉल करने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522 2238 845 या फिर 0522 2982 3077 पर। सो स्टे ट्यून्ड विद योर दिल आरजे निखिल।

102.2 की फ्रीक्वेंसी पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो कानपुर और शुरू हो रहा है प्रोग्राम हम नवा।

0: गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। हम नवा प्रोग्राम में मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर। श्रोताओं, मई के महीने की तपती दोपहर हो या फिर गर्म हवाओं वाली शामें, इन दिनों मौसम अपने तेवर में नजर आ रहा है। पूरा पूरा अपने बिल्कुल तेवर दिखा रहा है अच्छी तरीके से। लेकिन ऐसे मौसम में भी अगर कोई चीज़ सुकून देती है तो वो है अपनेपन से भरी बातें, कुछ सच्चे एहसास और दिल से निकली हुई आवाज़। तो इस वक्त मेरी आवाज़ से आवाज़ मिलाने स्टूडियो में आ चुकी हैं मेरी हमनवा। ज़रा आप भी सुनिए कि कौन है वो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी आरजे लक्ष्मी, और आज हम दोनों यानी कौसर और मैं लक्ष्मी आपके साथ हैं और आपके लिए लेकर आए हैं बातों के साथ एहसास और एहसास के साथ समाज से जुड़े मुद्दे। हम कुछ बेहद ज़रूरी और दिलचस्प विषयों पर बात करेंगे आज, जहां आपकी सोच, आपकी राय और आपके अनुभव भी हमारे लिए उतने ही अहम होंगे।
0: बिल्कुल अहम होंगे। लक्ष्मी, कहते हैं कि बातों में अगर अपनापन हो ना तो थका हुआ दिल भी मुस्कुरा उठता है, क्योंकि बातों बातों में ही दिलों के फासले मिट जाते हैं। कुछ लोग मुस्कुरा दें तो मौसम भी बदल जाते हैं।
1: भाई क्या बात है कौसर, काफ़ी अच्छी बात कही है और काफ़ी खुश और शायराना अंदाज में बातें कर रही हैं आप। और इस खुशी का राज क्या है, हम जान सकते हैं क्या?
0: हाँ हाँ, बिल्कुल जान सकती है। और वैसे ऐसा भी कुछ खास नहीं है, मैं तो हमेशा ही, आप जानते हो कि हंसती रहती हूँ, खुश रहती हूँ। खास तो आप हो हमारे लिए, क्योंकि इतने दिन बाद मिल रही हो आप और हमनवा प्रोग्राम यूँ मेरे साथ कर रही हैं, आप मेरी हमनवा बनकर। तो और

0: साथ में सबसे बड़ी बात कि खास हैं हमारे
1: लिसनर्स, और ये मेरी खुशनसीबी है कि आपने मेरे लिए इतने अच्छे शब्द कहे। और इस वक्त हम जुड़ चुके हैं हमारे प्रोग्राम के साथ, हमारे लिसनर्स भी जुड़ चुके हैं। तो चलो कौसर, अभी बता देते हैं आज के हम सब्जेक्ट्स, बताते हैं कि हम सीधे शुरू करें।
0: सब्जेक्ट्स तो हमारे लिसनर्स खुद ही जान जाएंगे, है ना। लेकिन हम जो आज सवाल करने जा रहे हैं वो जरूर यहाँ पर बता देते हैं कि
1: बिल्कुल,
0: आज
1: बिल्कुल।
0: हम आपसे सवाल करेंगे, तो आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो ये है कि आपका फेवरेट खेल कौन सा है। अगर फुटबॉल है तो आपका पसंदीदा फुटबॉल प्लेयर कौन है, आपको लिखना है उसका नाम। और हमारा एक और सवाल है आपसे कि क्या आपको आकाशवाणी से प्रसारित कोई भी रेडियो नाटक याद है, तो बस जल्दी से बता दीजिए उस नाटक का नाम और बस हमें लिख भेजिए जवाब हमारी ईमेल आईडी पर।
1: जी, हमारा ईमेल एड्रेस है aarkansomedia@gmail.com।
0: तो बस आप हमें मेल अपनी भेजिए जल्दी से, हम कर रहे हैं आपकी मेल्स का इंतजार।
1: और चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और कौसर, सबसे पहले तो जो हर कोई बात कर रहा है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है,
0: हम भी कर रहे हैं
1: और तपिश को तो बस शब्दों में क्या ही कहें। और तुम्हें पता है कौसर, आज से नौतपा भी शुरू हो गया है जो 2 जून तक रहेगा, और इस समय कहते हैं कि बहुत ज्यादा गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है। और इसके बारे में हम बाद में बात करें, फिलहाल मई जून की जो गर्मी है वो ऐसे ही तपाती है, और सच बताऊं तो ऐसे में मन करता है कि बस कहीं ठंडी ठंडी जगह पर चले जाएं।
0: हाँ बिल्कुल सच कहा आपने, ऐसी गर्मी में अगर पानी की कल कल आवाज सुनाई दे जाए ना, तो बस मन अपने आप वहीं खींचा चला जाता है। वैसे पानी से याद आया लक्ष्मी कि कुछ चीजें सिर्फ प्यास नहीं बुझाती, सुकून भी देती हैं। और हमारे देश में तो एक ऐसी धारा है जिसे लोग सिर्फ नदी नहीं मानते बल्कि माँ कहकर पुकारते हैं।
1: और वो धारा हिमालय से निकलकर करोड़ों लोगों की आस्था, संस्कृति और भावनाओं को जोड़ती चली जाती है। हम बात कर रहे हैं हमारी गंगा माँ की, और मनाया जा रहा है गंगा दशहरा का पावन पर्व आज। हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा का महापर्व पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
0: और ये पर्व भारतीय संस्कृति, आस्था और प्रकृति के प्रति सम्मान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यताओं को अगर देखें तो ये वही पावन तिथि है जब राजा भागीरथ, घोर तपस्या उन्होंने की थी और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर अवतरित हुई थी।
1: और ये पर्व कौसर हमें केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता है बल्कि जल और पर्यावरण के महत्व को भी समझाता है। गंगा दशहरा का ये महापर्व लोगों के मन में विशेष श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव रखता है, और इस दिन लोग गंगा स्नान, पूजा अर्चना, दीप दान और दान पुण्य भी करते हैं।
0: बिल्कुल, और साथ ही लक्ष्मी ये पर्व हमें एक मैसेज भी देता है, एक संदेश भी देता है कि जिस गंगा को हम माँ कहकर पूजते हैं उसकी स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सबकी ही है।
1: बिल्कुल।
0: और आज जरूरत भी इस बात की है कि आस्था के साथ जागरूकता भी जुड़ी रहे। और अभी हमारे साथ फिलहाल जुड़ रहे हैं चंद्रेश गौहर जी जो सहायक प्राध्यापक हैं, सुनते हैं उनके क्या विचार हैं गंगा दशहरा के इस महापर्व पर।
2: मित्रों नमस्कार, मैं सहायक प्राध्यापक चंद्रेश गौहर आप सभी श्रोताओं को FM रेनबो के माध्यम से गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। गंगा दशहरा भारतीय संस्कृति, आस्था और प्रकृति के सम्मान का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इसी दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यह पर्व हमें केवल आध्यात्मिक शांति ही नहीं देता बल्कि जल और पर्यावरण के महत्व को भी समझाता है। भारत की सभ्यता और संस्कृति में गंगा का स्थान केवल एक नदी के रूप में नहीं बल्कि जीवनदायिनी शक्ति के रूप में रहा है। सदियों से गंगा ने कृषि, समाज, साहित्य और आध्यात्मिक चेतना को घोषित किया है। यही कारण है कि गंगा दशहरा का पर्व लोगों के मन में विशेष आस्था, श्रद्धा और भावनात्मक जुड़ाव रखता है। इस दिन लोग गंगा स्नान, पूजा अर्चना, दीप दान और दान पुण्य करते हैं। साथ ही यह पर्व हमें संदेश भी देता है कि जिस

गंगा को हम माँ कहकर पूजते हैं, उसकी स्वच्छता और संरक्षण की जिम्मेदारी भी हम सबकी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि आस्था के साथ जागरूकता भी जुड़ी रहे। अगर हम अपनी नदियों को स्वच्छ रखेंगे तभी आने वाली पीढ़ियां भी इस सांस्कृतिक धरोहर का महत्व समझ पाएंगी। एक बार फिर आप सभी को, FM रेनबो के सभी श्रोताओं को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ गंगा आप सभी के जीवन में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें।

0: और गंगा दशहरा के साथ ही आज एक और खास दिन है, वर्ल्ड फुटबॉल डे, और जिसके फैंस जो हैं वो कौशल पूरी दुनिया में है। और साथ ही बिग एडवेंचर के लिए आप भी श्रोताओं रेडी हो जाइए, बिकॉज आने वाली है बिगेस्ट फुटबॉल पार्टी, और वो है वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026। ये सिर्फ गेम नहीं है बल्कि एक ग्लोबल सेलिब्रेशन है जो यंग जनरेशन के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज लाता है। तो चलिए थोड़ा जान लेते हैं इसके इतिहास के बारे में।
1: हाँ बिल्कुल, तो विश्व फुटबॉल दिवस आधिकारिक तौर पर प्रतिवर्ष 25 मई को मनाया जाता है, जिसे 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा खेल की व्यापक वैश्विक पहुंच और शांति, कूटनीति और सामुदायिक सहयोग को बढ़ावा देने की इसकी शक्ति को मान्यता देने के लिए घोषित किया गया था।
0: यस, 25 मई पेरिस में आयोजित 1924 के ओलंपिक फुटबॉल टूर्नामेंट की एनिवर्सरी के तौर पर चूज की गई थी, द वेरी वेरी फर्स्ट इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट जिसमें दुनिया के सभी रीजन्स के रिप्रेजेंटेटिव ने पार्टिसिपेट किया। यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन ने फुटबॉल को एज ए यूनिवर्सल लैंग्वेज हाईलाइट किया।

0: किया गया है इसमें, जो कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक बैरियर को ब्रेक करती है।
1: और लक्ष्मी, आज हम जो वर्ल्ड फुटबॉल डे मना रहे हैं ना, तो इस दिन अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संघों सहित वैश्विक समुदाय लैंगिक समानता, महिलाओं और लड़कियों के सशक्तिकरण और समग्र सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जमीनी स्तर के टूर्नामेंट और कार्यशालाओं और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है।
0: बिल्कुल सही कहा कौसर तुमने। और 2026 फीफा वर्ल्ड कप, 23rd फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है, जो 11 जून से 19 जुलाई तक आयोजित किया जाएगा। और पहली बार, हम आपको श्रोताओं बता दें, इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप है उसमें पहली बार 3 नेशन एक साथ को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें हैं USA और मेक्सिको और कैनेडा। तो जरूर देखिएगा ये मैच और पहले से कर लीजिए तैयारी इसकी।
1: हाँ, और उसके बाद मैच देखिएगा और फिर मैच देखने के बाद कहिएगा कि यहाँ के हम सिकंदर हैं।

0: गाना हम लोगों ने सुनवाया लक्ष्मी, वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। और बिल्कुल सही मैसेज है कि हारी बाजी को जो जीत ले बस वही सिकंदर कहलाता है ना। और इसी के साथ हम देख रहे हैं कि हमारे जो लिसनर्स है ना वो बड़े एक्टिव रहते हैं, और हम लोगों ने बस अभी थोड़ी सी बात की और जो ईमेल्स की बौछार है हमारे स्क्रीन पर वो होने लगी है। तो पढ़ देते हैं,
1: ये मोनू सेठ भैया हैं, इन्होंने लिखा है कि बचपन में क्रिकेट, गुल्ली डंडा, लुका छुपी, कंचा खेलने में दिन बीत जाता था, और कड़ी धूप में भी घर से बाहर गायब रहते थे, भूख प्यास भूल जाते थे। खेल के आगे मम्मी जब ढूंढने लगती तो दोस्त लोग बोल देते थे, मम्मी जी आ रही हैं, छुप जाइए। उसके बाद धीरे इधर उधर ढूंढने के बाद जब नहीं मिलते थे तो वापस चली जाती थी, कहती थी भोजन नहीं मिलेगा, वहाँ खेलो वहीं खाओ, ये अक्सर होता था।
0: अक्सर होता है,
1: बिल्कुल सही बात आपने कहा। और लेकिन मम्मी पापा का दिल बहुत बड़ा होता है भाई, ये तो बिल्कुल शाश्वत सत्य है।
0: बिल्कुल,
1: और बिना खिलाए चैन का तो कभी कभी मार भी पड़ जाती थी।
0: और इन्होंने लिखा है कि आज बड़ा हो गया हूँ, बिजनेस है अपना छोटा सा, लेकिन फिर वॉलीबॉल या क्रिकेट 2 घंटे रोज खेलता हूँ। वैसे इस समय क्रिकेट खेलते हैं क्योंकि क्रिकेट में ज्यादा आनंद आ रहा है, और मेरा फेवरेट खिलाड़ी है मैसी रोनाल्डो। और रही बात नाटक की, तो मैंने आकाशवाणी पर बहरा बाबा और वर
1: बहरे बाबा आता था,
0: हाँ इन्होंने वही बहरे बाबा आता था, अभी इसको करेक्ट करना था, इन्होंने लिखा है बहरा बाबा और वर खोज, बुद्धू का इंटरव्यू और तमाम नाटक इन्होंने सुने।

0: हैं, लेकिन इनको इतने ही नाटक इस वक्त पे याद है ना। और साथ में एक और ईमेल आई हुई है हमारे पास।
1: इसमें जो इन्होंने कौसर लिखा, बड़ा अच्छा संबोधित किया है, लक्ष्मी बहना और कौसर बहना जी। इन्होंने लिखा है कि हम नवाब प्रोग्राम में आप दोनों बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हम भी आप सभी श्रोताओं का
0: हार्दिक
1: अभिनंदन करते
0: अभिनंदन
1: हैं,
0: करते हैं
1: और गंगा
0: बिल्कुल।
1: दशहरा की शुभकामनाएं भेजी हैं इन्होंने।
0: और इन्होंने आगे लिखा है कि रेनबो कानपुर को शिद्दत से सुनते हैं ये, जो हमारा सुबह से शाम तक भरपूर मनोरंजन करता है। और इनका पसंदीदा खेल लक्ष्मी फुटबॉल है, जिसपे अभी हमने बात भी की है ना। तो इन्होंने लिखा है कि मुझे इस खेल से अपना जुड़ा एक किस्सा याद आ रहा है। जब हम अपने गांव में दोस्त मिलकर फुटबॉल खेल रहे थे, तो एक बुजुर्ग घोड़ी पर बैठकर पास से निकल रहे थे, तभी फुटबॉल उछल कर घोड़ी के पास चला गया। घोड़ी डर कर उछल पड़ी, जिससे बुजुर्ग संभल नहीं पाए और वो भी नीचे गिर पड़े और उनके पैर की हड्डी टूट गई। अरे भाई,
1: ओहो।
0: ये तो थोड़ा सा वो हो गया। इसलिए सबसे कहते हैं कि भाई, जब भी खेल खेलिए कोई, तो दूसरों का भी ध्यान जरूर रखिए कि हमारे आसपास किसी को कोई नुकसान ना हो। तो ये उन्होंने अपनी एक याद लिखी है।
1: और इसके साथ ही लिखा है कि कल शाम को जो हेलो कानपुर का इन्होंने आनंद उठाया, जिसे कौसर बहन ने पेश किया, श्रोताओं से वार्ता बहुत लाजवाब लगी और श्रोता के मिजाज को भापते हुए बात करना सच में प्रोग्राम में चार चांद लगा देता है।
0: बहुत
1: भाई,
0: बहुत धन्यवाद।
1: आपके लिए ये इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, और इस खूबसूरत पेशकश के लिए कौसर जी का आभार।
0: जी, आपको भी बहुत बहुत आभार कि आपने दिल से सुना।
1: और आज सुबह गुड मॉर्निंग का आगाज दुआओं के साथ किया गया, जो मन को सुकून दे गई। भाई वाह, और गीत भी बहुत अच्छे सुनने को मिले, और आज का विचार भी काफी प्रेरणादायक रहा।
0: थैंक यू सो मच।
1: तो इन्होंने हम दोनों के लिए बेशुमार मोहब्बतें और दुआएं दी हैं। भाई, आपको भी हमारे तरफ से, हम दोनों की तरफ से
0: दिल से
1: ढेर सारी
0: दुआएं।
1: दुआएं।
0: तो ये हमारे कुछ लिसनर्स थे जो शिद्दत से हमारे प्रोग्राम से, एफएम रेनबो से जुड़े हुए हैं, और बात इसी के साथ में आगे बढ़ाते हैं लक्ष्मी।
1: आज हम जिस तरह से हमारे यहाँ डेली जा रहा है प्रोग्राम आकाशवाणी एट 90, तो आज आकाशवाणी की हम बात आगे करते हैं, जो राष्ट्र और विश्व के लिए देश की आवाज के प्रसारण के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहा है। भारतीय राज्य प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, और ये वो ऐतिहासिक दिन था, 8 जून 1936। और श्रोताओं को हमारे याद भी हो गया होगा, लगातार हमारे यहाँ से ये प्रोग्राम जा रहा है, पूरा देश और प्रवासी भारतीय समृद्ध विरासत की इस अभूतपूर्व उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहे हैं कई सारे कॉम्पिटिशन्स के माध्यम से। और आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे कौसर रेडियो नाटकों के संदर्भ में, यानी जब अक्षर धड़कन बनकर सुनाई देने लगते हैं, जब शब्द अनुभूति बनकर दिल में उतरने लगते हैं,
0: वाह।
1: जब कहा अनकहा कानों से दिखाई देने लगे, तो समझ जाइए श्रोताओं, आप आकाशवाणी के रेडियो नाटक सुन रहे हैं।
0: अरे वाह, क्या बात कही है आपने, बड़े ही अच्छे शब्दों में बताया है आपने। और आज से कुछ दशक पहले मनोरंजन का सबसे सहज, और कुछ दशक पहले क्या, आज भी मनोरंजन का सबसे जो सहज और सस्ता माध्यम है वो हमारा रेडियो है। खबरों, ज्ञानवर्धक कार्यक्रम और खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाता है इसमें आज भी। और टेलीविजन धारावाहिकों की कमी को पूरा करते थे रेडियो पर आने वाले नाटक।
1: जी, हिंदी साहित्य के महान लेखक साहित्य रचना के साथ रेडियो स्टेशनों के लिए नाटक लिखते थे। हिंदी के कई नाटक ऐसे हैं जो बाद में मंच पर भी बेहद कामयाब हुए, लेकिन एक्चुअली वो लिखे रेडियो के लिए गए
0: हाँ,
1: थे,
0: बिल्कुल।
1: जिसमें धर्मवीर भारती का लिखा नाटक अंधा युग था, मोहन राकेश जी का आषाढ़ का एक दिन, मुंशी प्रेमचंद की रचना का रेडियो नाट्य रूपांतरण कफन, और साहित्य बंगला उपन्यास पर आधारित नाटक सादा लिफाफा एक बेहतरीन प्रस्तुति है।
0: और ये सारे नाटक, ये जो लक्ष्मी बताए आपने, ये इसमें से कुछ नाटक तो हम लोग भी सुने हुए हैं। जैसे कफन, मुंशी प्रेमचंद जी का जो है, वो हम लोगों ने कई बार उसको सुना भी है और पढ़ा भी है बुक्स में। और सिनेमा और रंगमंच की तरह रेडियो नाटक में भी चरित्र होते हैं, यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, और आपसी संवादों के जरिए आगे बढ़ती है कहानी, संवादों और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से। रेडियो नाटकों की अवधि सीमित होती है और पात्रों की संख्या भी सीमित होती है। आकाशवाणी के कई केंद्र हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में नाटक प्रस्तुत करते हैं, प्रसारित करते हैं। मूल नाटकों के अलावा आकाशवाणी केंद्र नियमित रूप से सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को खत्म करने के उद्देश्य से पारिवारिक नाटकों का प्रसारण करते हैं।
1: और जुलाई 1956 में

0: पहला प्रफुल्ल गिरीश चंद घोष का बंगला नाटक प्रसारित किया गया था। तब से हर महीने के चौथे गुरुवार को 9:30 बजे रात को आकाशवाणी के कुछ चुनिंदा स्टेशनों से ये प्रसारित किया जा रहा है और किया जाता है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय अखंडता, सद्भाव और एकता का संदेश प्रस्तुत किया जाता है। बहुत ज्यादा लंबी जो अवधि होती है उनके नाटकों को एपिसोड के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और 1985 में नरेंद्र नाथ मित्र का रेडियो ड्रामा रस, रेवती शरण शर्मा का रेडियो नाटक इंसान, जैसे कई रेडियो धारावाहिकों का प्रसारण किया जाता रहा। इसके अलावा मोनोलॉग ड्रामास का प्रसारण भी किया जाता है। मोनोलॉग यानी वो नाटक जिसमें एक ही पात्र की आवाज होती है, जिसका एक एग्जाम्पल है पन्ना धाय।
1: अरे वो तो बहुत ही मशहूर नाटक रहा है। और दोस्तों, आवाज और ध्वनि के माध्यम से दृश्य को पूरी तरह जहन में उतार देने वाली ये विधा वाकई अद्भुत है, जो आज भी श्रोताओं के दिलों में

0: वो तो बहुत ही मशहूर नाटक रहा है।
1: हम्म,
0: और दोस्तों, आवाज और ध्वनि के माध्यम से दृश्य को पूरी तरह जहन में उतार देने वाली ये विधा वाकई अद्भुत है, जो आज भी श्रोताओं के दिलों में अपनी जगह बरकरार रखे हुए एक ऐसी जीवंत विरासत जो यूं ही गूंजती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी।
1: आकाशवाणी।
0: आकाशवाणी।
2: मन का रेडियो बजने दे जरा, गम को भूल कर।

0: और चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं कौसर। और कौसर, सबसे पहले हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये कोट तुमने बहुत जरूर पढ़ा होगा कि जो बदलाव हम दूसरों में देखना चाहते हैं वो पहले खुद में लाएं।
1: बिल्कुल पढ़ा है, और आपको बता दें कि ये कथन है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का।
0: राइट। एक इंसान के रूप में हमारी महानता इसमें नहीं है कि हम पूरी दुनिया को ही बदलें, बल्कि हमें खुद में चेंजेस लाने चाहिए।
1: बिल्कुल, परिवर्तन जो होता है ना वो प्रकृति का नियम है और नवीनता के लिए ज़रूरी भी। कुछ परिवर्तन शाश्वत होते हैं जिन पर हम चाह कर भी हमारा वश नहीं चलता है, जैसे सूरज का उगना, ढल जाना, बारिश का होना, मौसम का बदलना, और इन पे हमारा वश बिल्कुल भी नहीं चलता है।
0: और इस बढ़ते हुए तापमान में 15-20 डिग्री पर ले आना इसको, हाँ। तापमान को, हालांकि हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार इससे बचाव के तरीके अपनाते हैं। बहरहाल कुछ परिवर्तन जो होते हैं वो मानवीय होते हैं, जो हम इंसानों के वश में होते हैं, लाइक पर्सनल नेचर और इनोवेशन, फिजिकल चेंजेस। और इसे गांधी जी से जुड़ी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्टोरी है, हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। एक बार क्या हुआ है कि एक दिन एक माँ अपने बच्चे को गांधी जी के पास लेकर गई। उसने उनसे कहा कि मेरा बेटा चीनी बहुत खाता है।
1: अच्छा।

0: जो इसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरी बात तो ये सुनता नहीं है, आप इसे समझा दीजिए। गांधी जी बोले डोंट वरी, हो जाएगा, बट तुम मुझसे 2 हफ्ते बाद आकर मिलो। आफ्टर 2 वीक उस लेडी ने दोबारा विजिट किया, गांधी जी ने बच्चे को अपने पास बिठाया, बात की और उसे शक्कर ना खाने की एडवाइस दी। बच्चे की माँ ने उन्हें थैंक्स कहा, मगर जाते जाते मन में आ रहे प्रश्न को पूछ ही लिया कि जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी आपके पास तब आपने उसे क्यों नहीं समझाया। डू यू नो दैट व्हाट ही सेड? उन्होंने कहा कि बच्चे को चीनी खाना बंद करने से पहले मुझे स्वयं शक्कर खाना बंद करना होगा, अदरवाइज उसे सलाह देने का मेरा कोई भी नैतिक अधिकार नहीं है।
1: बहुत ही अच्छी ये जो आपने एक शॉर्ट में ये जो कहानी बताई है कि जो चीज हम किसी दूसरे से करवाना चाहते हैं पहले वो हम खुद उसको अपने अंदर उतारे तब वो दूसरे को उसको बताएं, है ना। कहानी का जो सार था वो यही था,
0: यही था।
1: तो ये कहानी बेहद प्रेरणादायक भी रही, और हम अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों से तो बचना चाहते हैं मगर अधिकार सुख का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं, है ना। हम अपनी उपलब्धियों का सेहरा खुद के सिर पर बड़े गर्व से बांधते हैं मगर गलतियों का ढीकरा दूसरों पर ही फोड़ते हैं हमेशा।
0: बिल्कुल सही बात है, और ये एक उस तरह का वो है कहावत कह लो या दोहा जिसे कहते हैं कि पर उपदेश कुशल बहुतेरे। हम दूसरों से रिस्पेक्ट अफेक्शन लॉयल्टी तो पूरी तरह से एक्सपेक्ट करते हैं मगर खुद को उनकी अपेक्षाओं पर कितना खरा साबित कर रहे हैं कौसर, इस बात का मूल्यांकन कभी नहीं करते,
1: कभी नहीं करते।
0: और मिर्जा गालिब का एक शेर भी है कि उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा।
1: बहुत ही अच्छा ये शेर है, और जो हम लोग बात कर रहे हैं बिल्कुल उस पे फिट भी बैठता है, यानी इंसान अपनी कमियों गलतियों और कमजोरियों को स्वीकार करने के बजाय हालात या दूसरों को बदलने की कोशिश करता रहता है। जब तक हम खुद में सुधार या बदलाव नहीं लाएंगे तब तक बाहरी दुनिया या परिस्थितियां नहीं बदल सकती। इसलिए अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो उसको एक्सेप्ट करना भी सीखिए।
0: एग्जैक्टली, गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रचित महाकाव्य है श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में एक पंक्ति भी है कौसर कि परहित सरस धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई।
1: हाँ, तो इसका अर्थ हम बता देते हैं लक्ष्मी जी कि तुलसीदास जी कहते हैं कि दूसरों की भलाई करने के समान दुनिया में कोई दूसरा धर्म या पुण्य नहीं है, और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो बिल्कुल भी ऐसा पाप नहीं करिएगा आप लोग। अगर हम दूसरों से अच्छा व्यवहार करेंगे तो सामने वाला भी वैसा ही करेगा। अगर सामने गलत है तो उसके लिए हम स्वयं को गलत क्यों बनाएं?
0: तो चलिए एक और हम दोहा बता देते हैं जो कबीर दास जी ने ही कहा है, जो तोको काटा बुवे ताई बोए तू फूल, तोको फूल के फूल है बाकू है तिसूल।
1: अरे भाई, आज तो आप दोहे पे दोहे सुनाए चली जा रही हैं। तो सामाजिक बदलाव के लिए अपनी आदतों विचारधारा और जीवन शैली को बदलना होगा। हम लोगों के कहने का दोनों का यही मतलब है ना लक्ष्मी जी?
0: बिल्कुल।
1: कई बार हम मोबाइल का इस्तेमाल दिन भर करते रहते हैं और चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल से दूर रहें और किताबें पढ़ें। ये तो तभी होगा ना जब हम भी किताबें पढ़ना शुरू कर दें और मोबाइल से दूरी बना कर रखें। बच्चों के लिए माता पिता आदर्श होते हैं, अनुशासन सिखाने से पहले खुद आपको अनुशासित होना पड़ेगा।
0: और जब हमने बात इतनी सारी कर ली है तो ये सारी बातें हमारे श्रोता सुन भी रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं एक अच्छे नागरिक होने के नाते हम क्या कर सकते हैं। तो स्वच्छता बनाए रखने के लिए खुद पहल करनी बहुत जरूरी है श्रोताओं। सार्वजनिक स्थानों वर्क प्लेस और घर पर डस्टबिन जरूर यूज करें, गीले और सूखे कचरे को अलग अलग डस्टबिन में डालें ताकि उसे कौसर सही तरीके से जब रिसाइकिल करना होता है तो प्रॉब्लम होती है रिसाइकिल करने में, इसलिए अलग अलग गीला और सूखा कचरा अलग अलग रहता है तो इजी वे में रिसाइकिल हो पाता है।
1: सही कह रही हैं आप।
0: सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर दीजिए बिल्कुल, उसकी जगह आप पेपर कैरी बैग या पेपर कैरी बैग हम लाइट वेट जो आइटम होते हैं उनके लिए यूज कर सकते हैं, और कपड़े के थैलों का इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, अपने परिवार दोस्तों और पड़ोसियों को स्वच्छता के फायदे के बारे में जरूर बताएं और सफाई अभियान का एक पार्ट बने। स्वच्छता सरकार या सफाई मित्रों की जिम्मेदारी नहीं है बल्कि ये तो हर नागरिक का कर्तव्य है, मेरा आपका हर नागरिक का कर्तव्य है।
0: बिल्कुल, और समाज में सुधार के लिए सिविक सेंस यानी नागरिक चेतना की पहल भी खुद से ही होती है। ट्रैफिक रूल्स और क्यू में खड़े होना जैसे बुनियादी नियमों को स्वेच्छा से फॉलो करें और किसी पर पॉइंट करने से पहले खुद का अवलोकन करें कि क्या आप एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हैं। साथ ही अपने आचरण और अनुशासन को व्यवहार में उतारें ताकि दूसरे आपसे इंस्पायर हो। अपने व्यवहार में पॉजिटिव चेंजेस लाकर ही हम एक बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। दैट्स व्हाई महात्मा गांधी हैज सेड बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।
1: और लक्ष्मी, हमारी जो गीता है उसमें भी कुछ इसी तरीके का ज्ञान दिया गया है।
0: कुछ नहीं, वो पूरा ज्ञान इसी तरह भागवत गीता में दिया गया है। तो चलिए एक गाना सुना देते हैं अपने श्रोताओं को।

0: दर्शनों को दुनिया तरसती है, स्वयं दर्शन देने आ रहे हैं।
1: पहुँचा हुआ है साधु, क्या क्या चमत्कार दिखलाए, बोली जनता बोली ईश्वर रूप बदल के आए।
0: ये जनता की भूल है देवी, ये महापापी है, घोर अपराधी है।
1: अच्छा,

0: अच्छा लक्ष्मी, इसमें कहा गया था जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, तो इसलिए जैसे कर्म होते हैं वैसे जब फल हमें वैसा ही मिलने वाला है तो क्यों ना अच्छे कर्म किए जाए।
1: करने ही चाहिए, सभी को अच्छे कर्म
0: और
1: करने
0: अच्छे कर्म
1: चाहिए।
0: जो करता है वो इस दुनिया में तो सारी प्रशंसा पाता ही है, साथ में जब इस दुनिया से चला भी जाता है तब भी उसको लोग याद रखते हैं, है
1: तो
0: ना।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। और अब हम क्या बताने वाले हैं अपने श्रोताओं को?
0: तो चल रहा है हम नवा कार्यक्रम, ये तो पता ही है हमारे श्रोताओं को भी। तो और इसकी एक खास बात ये भी है लक्ष्मी कि हम समाज से जुड़े हर पहलू पर बात तो इसमें करते ही हैं, साथ ही कई सारी महान शख्सियत, स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों आदि सभी के बारे में बात करते हैं इसमें और अपने श्रोताओं को बताते हैं उनके बारे में। और आज हम याद कर रहे हैं ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी रहे, राज बिहारी बोस को।
1: जी हाँ, जिनका नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे साहसी सेनानियों में लिया जाता है। 1921 में दिल्ली में वायसराय लॉर्ड होर्डिंग पर बने पर हुए थे ये बम हमले के पीछे, जो बम हमला हुआ था इन पर, उनके पीछे इनका हाथ, इनका रोल माना जाता है। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत उनसे इतनी डर गई थी कि हर जगह उनकी तलाश शुरू कर दी गई, लेकिन वो लगातार अपनी पहचान बदलकर अंग्रेजों से बचते रहे, हाथ नहीं लगे।
0: और इसके बाद उनका सफर भारत से जापान तक पहुंचा क्योंकि यहाँ पर उनकी तलाश शुरू हो गई थी, तो वो यहाँ से जापान चले गए, अपना उन्होंने सफर वहाँ तक का किया, लेकिन उनका जो दिल था वो हमेशा भारत में ही लगा रहा। जापान में रहकर उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की कोशिश की, वहीं उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को मजबूत किया और आज़ाद हिंद फौज की बुनियाद तैयार करने में एक बड़ी भूमिका निभाई। और बाद में उन्होंने इसकी जो कमान है ना लक्ष्मी, वो सुभाष चंद्र बोस को सौंपी।
1: बिल्कुल सही बात है। और कौसर, अच्छा ये बता दूं मैं यहाँ पर कि राज बिहारी बोस की एक और खास बात ये थी कि
0: हाँ
1: वे जितने बड़े क्रांतिकारी थे उतने ही अच्छे लेखक और विचारक भी थे।
0: हाँ
1: उन्होंने जापान में भारतीय संस्कृति और खान पान को भी लोकप्रिय बनाया, और उनकी पूरी लाइफ इस बात का उदाहरण है कि सच्चा देश प्रेम सरहदों का मोहताज नहीं होता।
0: वाह क्या बात कही है, सच में सच्चा देश प्रेम जिसके दिल में है सरहदें बिल्कुल उसका कुछ भी नहीं कर सकती, चाहे वो भारत में रहे चाहे वो विदेश में रहे, है ना। और आज जो रास बिहारी बोस जी की जन्म जयंती है जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, वो हमें याद दिलाती है कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली, इसके पीछे अनगिनत बलिदान और संघर्ष छिपे हैं। ऐसे महान क्रांतिकारी को FM रेनबो की ओर से
1: शत
0: शत
1: शत
0: शत
1: नमन।
0: नमन।

0: बिल्कुल, देश मेरे मेरी जान है तू, और हर भारतवासी के दिल में यही देश जज्बा होना चाहिए, है ना?
1: बिल्कुल होना
0: यही
1: चाहिए।
0: देश प्रेम होना चाहिए अपने देश के लिए। और कुछ लाइन में बोल रही हूँ लक्ष्मी, समझना कि मैं क्या कहने जा रही हूँ, ठीक है? मैं केवल घर की रौनक नहीं, इस सृष्टि की धार हूँ। तुम्हारे हर संघर्ष में साथ खड़ी मैं ही तो आधार हूँ।
1: वाह,
0: मत समझो अबला मुझे, मैं झांसी की रानी का तेज हूँ। जो हर मुश्किल से डटकर सामना करे वो नई सदी की आवाज हूँ।
1: वाह कौसर, बहुत ही खूबसूरत लाइनें तुमने बोली, और श्रोताओं ये लाइनों को सुनकर हमारी महिलाओं को खुशी और हौसला जरूर मिला होगा।
0: महिलाओं के लिए ही तो बोली है, उनका हौसला बुलंद करने के लिए। और हौसले बुलंद अब और भी होने वाले हैं, क्योंकि तेजस्विनी सेगमेंट हमारा आ चुका है। और तेजस्विनी में आज बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की सफलता की कहानी की, जो ना ही सुन सकती हैं और ना ही बोल सकती हैं।
1: ये है आगरा की रहने वाली रुचि जैन, इनकी है ये कहानी, जो ना सुन सकती हैं और ना बोल सकती हैं, जैसा कि कौसर ने कहा, लेकिन उन्होंने सिलाई और हैंडीक्राफ्ट के हुनर से अपनी अलग पहचान बनाई, और वो घर पर ही ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनने का रास्ता भी दिखा रही हैं।
0: बिल्कुल लक्ष्मी, मूक बधिर होने के बावजूद वो अपने हुनर से ना सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बनी हैं, बल्कि अन्य महिलाओं को भी रोजगार का रास्ता दिखा रही हैं। और रुचि को सिलाई का काम बेहद पसंद है, और बस इसी हुनर को उन्होंने अपनी पहचान बना लिया। आज उनके बनाए हैंडीक्राफ्ट्स आइटम्स जो है ना, उनको लोग काफी पसंद करते हैं।
1: रुचि ने 2012 में इस काम की शुरुआत की थी कौसर। समय के साथ उन्होंने अपने हुनर

0: को और निखारा और शहर में लगने वाले कई मेलों में अपने स्टॉल भी लगाए,
1: हाँ।
0: जहां उनके बनाए सामान को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला।
1: सच में। और इसके बाद घर पर ही उन्होंने एक छोटा सा सेटअप तैयार कराया। यहीं से रुचि ने सिलाई का काम शुरू किया और धीरे धीरे इसे आगे बढ़ाया। जब उनका काम चल निकला तो उन्होंने दूसरी अन्य महिलाओं को भी सक्षम बनाने का निर्णय लिया और वो अपने घर पर ही महिलाओं की निःशुल्क उनको ट्रेनिंग देने लगी।
0: और जब हमारा घर, हम महिलाओं का घर जब सपोर्ट करता है ना, तो महिलाएं कुछ भी कहीं भी कुछ कर सकती हैं, आसमान में छेद भी कर सकती हैं। और इस काम में उनका पूरा सपोर्ट करते हैं उनके पति और उनका बेटा, परिवार का जो सहयोग और मजबूत इरादों की बदौलत रुचि जैन ने लोगों के लिए एक प्रेरणादायक बन चुकी हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रुचि ने शायद मन में ये सोच लिया था, ये ठान लिया था कि जो ठान लिया है मन में वो करके दिखाएंगे और हर मुश्किल की राह को आसान बनाएंगे। और इसी के साथ हमारे पास दिख रही हैं कि स्क्रीन पर आ गई हैं कुछ ईमेल्स भी, तो पढ़ देते हैं इन्हें। तो लक्ष्मी, पढ़ दिया जाए?
0: हाँ बिल्कुल, पढ़ दिया जाए। हमारे श्रोता बराबर से हमें मेल भेज रहे हैं।
1: तो ये हैं ग्राम मदारीपुर कानपुर देहात से, और इनके बराबर ईमेल्स आते भी हैं, हमारे फरमाइशी प्रोग्राम्स में भी आते हैं। इन्होंने लिखा है कि कौसर महोदया और लक्ष्मी महोदया जी को प्यार भरा नमस्कार। जी आपको भी हम दोनों की तरफ से प्यार भरा नमस्कार
0: जी।
1: हम नवा प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया जा रहा है, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आज आप लोगों के द्वारा मिल रही हैं, गीत संगीत भी बड़ा ही मधुर सुनवा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
0: भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी।
1: हाँ,
0: आपको
1: हम अच्छा लोगों को भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप इतनी तन्मयता से हमारे प्रोग्राम्स को सुन रहे हैं। और लक्ष्मी, यहीं पर एक और ईमेल भी आया हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं कि क्या है।
0: हाँ, ये आंचल सेठ खालिसपुर से हैं। इन्होंने आज दीदी जी को नमस्ते, आपको भी नमस्ते हम दोनों की तरफ से। जिंदगी जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट ना हो। भाई बहुत अच्छा,
1: बहुत
0: आपने
1: अच्छी
0: लिखा।
1: बात इन्होंने लिखी है। और इसी के साथ एक प्रेरणादायक गीत भी हो जाए तो फिर चार चांद लग जाएंगे इस टॉपिक पर, और है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सुना देते हैं।

0: एकदम बढ़ता हुआ कहाँ तक आ गया है?
1: आ गया है हमारी हमनवर रसोई के पास। हाँ। यानी सेगमेंट हमारा रेसिपी का स्टार्ट होने वाला है।
0: बिल्कुल।
1: और देखिए अभी तो 12 बजने वाला है, यानी ब्रेकफास्ट का टाइम निकल चुका है हालांकि, और लेकिन फिर भी हम खा सकते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए साबूदाना खिचड़ी तो सभी ने खाई है।
0: बिल्कुल।
1: बहुत बोर भी हो जाते हैं लोग खाते खाते, मगर आज हम हमनवर रसोई में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं हरियाली साबूदाना खिचड़ी।
0: अरे वाह।
1: उसके लिए आपको लेना क्या है तो कौशल बताएंगे आप?
0: इसके लिए लेना है, पहले तो आपको एक कप जो साबूदाना है वो रात भर आपने उसको सोक करना है, ठीक है ना? फिर उसके बाद आपको लेना है एक कप हरी धनिया पत्ती, और आपको लेना है हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद ज़रा सा आपको अपने वो भी टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है पुदीना पत्ती। कोई लोग ज़्यादा खाते हैं, कोई लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम भी खाते हैं, तो वो ये सब चीज़ें आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है। आधा कप आपको दरदरी पिसी हुई मूंगफली लेनी है, एक टी स्पून आपको शुगर लेनी है, वो आपकी चॉइस पर है, अगर आप डालना चाहें तो, ऑप्शनल है आपके लिए। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेना है, ऑयल या घी लेना है जिस हिसाब से आपको जितना भी लेना हो, जितने तेल और घी में बनाना हो उसको, थोड़ा सा आपको जीरा लेना है, और एक नींबू का रस, और आपको लेना है दो उबले हुए आलू।
1: बिल्कुल सही। और अब चलिए बनाते हैं हरियाली साबूदाना खिचड़ी। तो सबसे पहले धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती और हरी मिर्च को बगैर पानी के पीस लीजिए। अब पैन में ऑयल या घी डालकर इसमें जरा सा जाएगा जीरा। क्रैकल होने के बाद फिर इसमें ऐड करेंगे पिसा हुआ धनिया, पुदीना, हरी मिर्च का पेस्ट। फिर इसमें मिलाएंगे रात भर सोक किया हुआ साबूदाना, ऊपर से डालेंगे उबले आलू, ऊपर से नमक और शक्कर स्प्रिंकल करके इसको अच्छी तरह से मिलाकर तब तक पकाएंगे जब तक साबूदाना ट्रांसल्यूसेंट ना हो जाए। अब बारी आती है क्रश किया हुआ पीनट पाउडर, यानी मूंगफली का पीनट, मूंगफली का पाउडर।
0: हाँ।
1: अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करके ऊपर से मिलाएंगे नींबू का रस, और बस तैयार है आपकी हरियाली साबूदाना खिचड़ी। खाइए और खिलाइए और इस समर ब्रेकफास्ट को एंजॉय कीजिए। और आपको सुनाते
0: हैं, रात में वो बिल्कुल लास्ट में बताया है नींबू का रस, तो मेरा मुंह एकदम नींबू के रस से बिल्कुल होता नहीं, खट्टा खट्टा हो जाता है, और बच्चों को चटाओ तो फिर उनका मुंह देखने काबिल होता है कि वो कैसा बनाते हैं मुंह। तो यहाँ पर नींबू के रस से मुझे एक गाना याद आ रहा है, क्या प्ले कर दूं?
1: बिल्कुल, हम तो सुनने के लिए बैठे हैं, हमारे श्रोता भी।
0: तो बस आपको और अपने श्रोताओं को सबको सुनवा रहे हैं ये इस प्रोग्राम का लास्ट गाना, और उनका मूवी बड़ा ही अच्छा सा होने वाला है।

నిముడా నిముడా నిముడా నిముడా నిముడా నిముడా నిముడా కాచా కాచా చోటా చోటా నిముడా. తో లక్ష్మీ సి కే సాత్ ये प्रोग्राम को ख़त्म करने की अपने श्रोताओं से इजाज़त ले लें. तो मैं सुबह से आई हूँ तो मैं तो अब इजाज़त चाहूँगी अपने श्रोताओं से. और लक्ष्मी आपको मिलेंगी दिन में 3 बजे. तो बस जुड़िएगा फिर से 102.2 FM रेनबो के साथ. लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों को कहना है नमस्कार.

नमस्कार। दोपहर के 12 बजे सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आयुष विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल उपचार आधारित व्यवस्था तक न सीमित रखते हुए आयुष, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस सेवाओं के समन्वय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत जिला प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उप मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठन की मजबूती का आधार होते हैं और कार्यकर्ताओं को वैचारिक रूप से सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। श्री मौर्य ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को संगठन की विचारधारा, राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के प्रति और अधिक समर्पित बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए उस बयान की कड़ी आलोचना की है जिसमें उन्होंने कहा कि अगले एक वर्ष में मोदी सरकार गिर जाएगी। श्री चौधरी ने कहा कि यह बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था और देश की जनता द्वारा दिए गए जनादेश का सीधा अपमान है। उन्होंने कहा कि लगातार लोकतांत्रिक संस्थाओं और जनादेश पर सवाल उठाना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के कारण राज्य को लीड्स 2025 रैंकिंग में लैंडलॉक्ड राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एक्सेम्प्लर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उस व्यापक परिवर्तन की पहचान है जिसने उत्तर प्रदेश को देश की आर्थिक प्रगति के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश की ओर से इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पुरस्कार ग्रहण किया। चित्रकूट के वन क्षेत्र में पिछले कुछ सालों से लगातार और काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019, 2021 और 2023 के दौरान पूरे इलाके में हरित क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चित्रकूट में चलाए गए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों ने सफलता की मजबूती की नींव रखी है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 1 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: पर्सनल लोन ऑफर
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूँ यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूँ?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: वाह, कितनी लाजवाब डिशेस बनाती हो, इतनी रेसिपीज कहाँ से लाती हो?
4: शत्रुपा से। अरे बहू, मेरा जोड़ों का दर्द तो बिल्कुल चला गया, कहाँ से लाई है नुस्खा?
5: शत्रुपा से माँ जी।
6: वाह, तेरा घर तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है, कहाँ से लाती हो इतने नए नए आइडियाज?
5: शत्रुपा से।
7: घर, बच्चे, शॉपिंग, किचन, गार्डन, वार्डरोब कैसे मैनेज कर लेती हूँ इतना सब?
5: शत्रुपा से।
8: हमारी होम मेकर्स की कंप्लीट मैगजीन शत्रुपा, मंडे टू थर्सडे दोपहर 12 बजे, ओनली ऑन 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
9: कीप लिसनिंग टू 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
10: बारह बजकर 5 मिनट का वक्त। हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप सब? इस चिलचिलाती गर्मी में बहुत अच्छा तो मन नहीं होता है, क्योंकि जब पसीना बहता है ना तो दिल थोड़ा सा अजीब सजीब सा हो जाता है और बिल्कुल भी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर कुछ खूबसूरत से गाने हों और वो काम जिसमें आपका मन लगता हो वो करिए, तो फिर थोड़ा गर्मी साइड लाइन हो जाती है और आप जिस काम को कर रहे होते हैं उसमें बहुत अच्छा फील करते हैं। एंड हाँ, अच्छा लगने के लिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है और वो है आपकी हेल्थ। यानी अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको फिर अपने आस पास भी सब कुछ अच्छा लगता है। तो आज हेल्थ की बात होगी आपके प्रोग्राम रूपा में। और आज किस बारे में बात होगी भाई? आप जानते हैं ना आज कौन सा इंपॉर्टेंट है? आज वर्ल्ड थायराइड डे, तो विश्व थायराइड दिवस पर हम थायराइड के बारे में ही आपको जानकारी देंगे और बताएंगे कि किस तरह आप कुछ चीजों को ध्यान रखकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। और बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन उससे पहले कि हम एक बढ़िया सा गाना चलाएं, हम बता देते हैं शिल्पी रहेगी आज आपके साथ 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शत्रुपा में।

मोहब्बत तो आपको करनी चाहिए अपने आप से, क्योंकि भाई अगर हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे सकते, अपने शरीर पर ध्यान नहीं दे सकते, और फिर क्या होता है ना, हम खुश नहीं रह सकते, और जब खुश नहीं रहते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमारे अपने शरीर में हो जाती है और हमें लगता है ये कहाँ से आ गई। और आज 25 मई का दिन है और आज वर्ल्ड थायराइड डे है, और इस बार थायराइड को जो थीम है वो है थायराइड एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी हमारा जो खाने पीने का तरीका होता है उसका सीधा असर हमारे थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है। अगर न्यूट्रिशन अच्छा होता है तो थायराइड हार्मोन अच्छे से बनते हैं, और अगर न्यूट्रिशन आपका वीक होता है यानी अच्छे से नहीं आप खा पी रहे हैं तो ये सब थायराइड पर असर डालता है। तो हम आपको क्या सलाह दें, हम कोशिश करें किसी एक्सपर्ट से आपकी बात कराएं और पूरी जानकारी दें आपको इस संबंध में, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो थायराइड की समस्या से ग्रसित रहते हैं, और बहुत सारी समस्याएं जो होती हैं उनको लगता है कि आप एक तरह का पार्ट मान लेते हैं कि अरे ये सबको होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई सारी चीज़ें बहुत अपनी हैबिट्स को सुधार कर भी सही की जा सकती हैं। तो क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है, किन चीज़ों को खाना है, किन चीज़ों को नहीं खाना, ये सब आप जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक खूबसूरत सा ट्रैक और उसके बाद

आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: दोस्तों, हमने आपसे कहा था ना कि आज वर्ल्ड थायराइड डे है और इस बारे में हम आपके एक्सपर्ट से बात करेंगे ताकि आपको और ज्यादा जानकारी मिल सके। और इसी सिलसिले में हम आपकी बात कराने जा रहे हैं SGPGI की डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर मनीषा काका जी से, और उनसे जानेंगे सारी बात इस थायराइड के बारे में कि क्या क्या चीजें हमें खानी है, क्या नहीं खानी है, किस तरह अपना ध्यान रखना है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम शत्रुपा में। जी डॉक्टर साहब, आपको मेरी जी
1: आज हम बात करेंगे कि जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, हमारा आहार कैसा होना चाहिए। थायराइड के पेशेंट में बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन है पेशेंट्स के पास, जब वो आते हैं तो हमसे डिस्कस करते हैं, तो उन बारे में हम कुछ बात करेंगे।
0: जी
1: देखिए, थायराइड जो होता है वो दो तरीके

0: थायराइड होता है, हाइपोथायराइड होता
1: है। जी जी
0: अब इसमें जो आहार की बात है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आयोडीन युक्त नमक खाएं।
1: जी
0: अगर हम आयोडीन युक्त नमक नहीं खाते, आजकल बहुत सारे नए नए तरीके के सॉल्ट चल रहे हैं, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सेंधा नमक, तो उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। सबसे पहले आप अपना जो भी नमक का पैकेट खरीदते हो तो उसमें जरूर देखें कि आप आयोडीन युक्त नमक खाएं।
1: जी
0: उसके बाद आप दूध और दही का सेवन करें, अगर मांसाहारी है तो अंडा और मछली का सेवन करें। इसमें सेलेनियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, साबुत अनाजों में पाया जाता है, कद्दू के बीज होते हैं, मेवा, दालें, इस तरीके का इस्तेमाल अपने खाने में आप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस बार की जो थीम है वो थायराइड और न्यूट्रिशन ही है, तो एक चीज हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे थायराइड है इसको कैसे अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो लोगों को पता रहती है कि थकान हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, या फिर वजन बढ़ रहा है घट रहा है, तो शायद थायराइड हो, लेकिन कैसे परफेक्टली जाने कि क्या क्या, अगर आपको सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि पता चल जाए कि हाँ ये

0: इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है। सबसे पहले आप अपना जो भी नमक का पैकेट खरीदते हो उसमें जरूर देखें कि आप आयोडीन युक्त नमक खाएं।
1: जी।
0: उसके बाद आप दूध और दही का सेवन करें, अगर मांसाहारी है तो अंडा और मछली का सेवन करें। इसमें सेलेनियम का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, जो सूरजमुखी के बीज होते हैं, साबुत अनाजों में पाया जाता है, कद्दू के बीज होते हैं, मेवा दालें, इस तरीके का इस्तेमाल अपने खाने में आप कर सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इस बार की जो थीम है वो थायराइड और न्यूट्रिशन ही है, तो एक चीज हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे थायराइड है इसको कैसे अर्ली स्टेज पे पहचान सकते हैं, क्योंकि कुछ चीजें तो लोगों को पता रहती है कि थकान हो रही है, बाल बहुत झड़ रहे हैं, या फिर वजन बढ़ रहा है घट रहा है, तो शायद थायराइड हो, लेकिन कैसे परफेक्टली जाने कि क्या क्या, अगर आपको सिम्टम्स ऐसे आ रहे हैं कि पता चल जाए कि हाँ ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है।
0: सिम्टम्स है ना, ये हाइपो में और हाइपर में अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर आपके पास इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप है आपको ब्लड टेस्ट कराना है। वैसे भी एक उम्र के बाद जब हम 40 क्रॉस करते हैं, और महिलाओं को भी स्पेशली हर साल एक बार ब्लड चेकअप जरूर कराना चाहिए।
1: जी।
0: जब आप ब्लड चेकअप कराएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं। रूटीन प्रोटोकॉल में कर लेना चाहिए कि साल में एक बार हमें टेस्ट जरूर कराना।
1: जी जी।
0: तो ब्लड टेस्ट कराने से हमें पता चल जाएगा कि हमारी थायराइड की लेवल कैसा है।
1: जी।
0: अगर नॉर्मल है तो कुछ नहीं करना है, एबनॉर्मल है तो सबसे पहले अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को मिलके उसको देखना है कि वो आगे कैसे बढ़ना है, तो उसे समय समय पर मॉनिटर कराना होगा।
1: जी।
0: और अपनी डाइट को ना मेंटेन करना होता है इसमें।
1: डॉक्टर साहब, ऐसी थायराइड किसी को अगर डिटेक्ट हो जाता है तो एक दवा दी जाती है जो इसकी कुछ वैल्यूज होती हैं कि अगर आपका इतना थायराइड लेवल निकला है तो इस ये दवा दी जाएगी, या इतना थायराइड लेवल है तो इस तरह आपको दवा खाली पेट खानी रहती है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि दवा तो आप खा ही रहे हैं थायराइड को कंट्रोल करने में, लेकिन अपने डाइट में किस चीज़ को इंक्लूड करना और किस चीज़ को हटाना है?
0: देखिए, सबसे पहले इसमें जो हमें खाना है, जैसे कि मैंने अभी पहले भी बताया कि दूध दही पनीर इन सब का सेवन करना है, हरी सब्जियों का सेवन करना है, फलों का सेवन करना है, ओट्स का सेवन करना, असली के बीज का सेवन करना है। इसमें क्या नहीं सेवन करना है ये भी मैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये जो आपने देखा होगा पत्ता गोभी, फूल गोभी और सोयाबीन, इन सब की मात्रा को थोड़ी सी निर्धारित करना है, मतलब बहुत एक्सेस अमाउंट में ये चीजें नहीं खानी अगर आपको खा रही है तो। और बाकी जीवन शैली बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका जो दवा लेने का समय है वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप सोने से जैसे ही उठे तुरंत अपनी दवा लें, और दवा ना ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ, सामान्य पानी के साथ दवा लें, और उसके करीब सबसे इम्पोर्टेंट की दवा खाली पेट लें, और उसके 20-35 मिनट तक कुछ भी नहीं खाना है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और जाननी थी कि थायराइड जो होता है इससे और हमारे शरीर पे क्या प्रभाव होता है, किस तरह की चीजें या समस्याएं देखने को मिलती हैं?
0: देखिए, इसमें आपको अधिक वजन पड़ सकता है, थकान हो सकती है, गर्दन में सूजन आ सकती है, पीरियड्स की प्रॉब्लम हो सकती है।
1: जी।
0: और प्रेगनेंसी में भी थायराइड का लेवल चेक कराना ना बहुत जरूरी है कि आगे वाले बच्चे का पूरा मेटाबॉलिज्म उस पर डिपेंड करता है।
1: अच्छा डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी में इस चीज का खास ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाह रहे थे आपसे कि ये थायराइड जब आपको डिटेक्ट हो जाता है कि भाई थायराइड है, तो क्या कुछ ऐसा है कि दवाओं को नियमित रूप से लेने से एक तो कंट्रोल रहता है, लेकिन क्या दवा कभी बंद हो सकती है इसकी?
0: बिल्कुल होती
1: है। जी,
0: मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल हूँ।
1: जी,
0: ज्यादा टाइमिंग प्रेगनेंसी के दौरान बढ़ गया था।
1: जी जी।
0: बट आपको मॉनिटर करना, जैसे कि मैंने बोला ना, ये नहीं कि आपकी 25 mg की चल रही है और आप जिंदगी भर वही खाते जा रहे हैं।
1: जी,
0: ये नहीं करना। आप हर 3-5 महीने में आपको अपना ब्लड टेस्ट जरूर कराना है, उसके मापदंड से आपके दवा का डोज कम हो सकता है, बढ़ सकता है, और इवन कभी कभी हमने देखा है कि मतलब बंद भी होता है। पेशेंट टू पेशेंट।
1: ये ब्लड टेस्ट की आप डॉक्टर साहब बात कर रही थी, तो हमारे लिसनर्स ये जानना चाहते हैं कि कौन सा ब्लड टेस्ट इसके लिए होता है जो करवाना जरूरी है?
0: होता है T3, T4 और TSH।
1: जी, ये तीनों टेस्ट होते हैं।
0: प्रोफाइल करके भी आता है, और ये तीन टेस्ट हम एक बार में कराते हैं, T3, T4, TSH।
1: जी,
0: ये सुबह खाली पेट आप अपने किसी भी लैब के सामने, लैब में आप जाके सैंपल दे सकते हैं।
1: जी,
0: और शाम तक आपको रिपोर्ट।
1: तो खास तौर पर जो आप कहना चाह रही हैं कि अगर हम अपने जीवन शैली को सुधार लें, जो बाहर का खाना या प्रोसेस्ड फूड है इसको थोड़ा सा अवॉइड करें, तो हम थायराइड को कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन शैली को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल, मैं यहाँ पे एक बात और कहना चाहूंगी कि थायराइड के साथ ना विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत कॉमन है। आजकल मैंने देखा सब लोग एसी में रहते हैं, धूप का बिल्कुल भी सेवन नहीं।
1: जी जी,
0: विटामिन डी की ना टैबलेट्स खा लेंगे, धूप का सेवन नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि सुबह की एक जो छोटी सी चाय होती है 10-5 मिनट की, वो गार्डनिंग करते हुए या धूप में बैठ के सुबह के 6-7 बजे की धूप जरूर लें। धूप, सनलाइट हमारे हर बीमारी से लड़ने का एक सबसे बड़ा

0: आप उससे बच सकते हैं। तो सनलाइट का सेवन जरूर करें, एसी की हवा बिल्कुल खाएं बट सनलाइट का भी प्रयोग करें।
1: जी, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया हमारे तमाम लिसनर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो पूरे समय एसी में रहते हैं और धूप के दर्शन भी नहीं करते हैं। सबके लिए बहुत जानना जरूरी कि विटामिन डी की कमी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसमें डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि सुबह 6 से 7 के बीच अगर थोड़ा सा समय आप दे पाइए तो ज़रूर उस धूप को लीजिए, क्योंकि हमें कहते हैं नेचर से जितना आप जुड़े रहते हैं उतना ही ज़्यादा फिट रहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और उम्मीद है हमारे जो लिसनर्स हैं इन जानकारियों का फायदा उठाएंगे और समय पर अपने थायराइड की जांच करा के और दवाएं लेकर अपने आप का एक स्वस्थ जीवन शैली की तरफ अग्रसर होंगे। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर मनीषा काका जी, SGPGI की डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशनिस्ट, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक अच्छी जीवन शैली अगर आप जी रहे हैं, अच्छा सा खाना खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड नहीं खा रहे हैं, सुबह की धूप ले रहे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप एक सुरक्षित जीवन शैली जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन शैली जी सकते हैं। और टाइम टू टाइम उन्होंने बताया कि आप ब्लड टेस्ट ज़रूर कराइए, क्योंकि ब्लड टेस्ट से आपको पता चलेगा कि कोई समस्या अगर आ रही है तो पहले ही उसका इलाज हो जाएगा, जिससे कि आप बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ फील करेंगे। तो इस ढेर सारी जानकारी के बाद एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं और उसके बाद एक गाना सुनते हैं। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो शिल्पी के साथ

0: है। MK बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम चल रहा है शत्रुपा शिल्पी आपके साथ है 12:34:55 का वक्त। और आज हम बात करें सेहत की। तो भाई थायराइड डे के बारे में तो हमने आपको बता दिया और साथ ही डॉक्टर मनीषा काका जी ने भी आपको बहुत सारी जानकारी दी और ये बताया कि हमने जैसे आपसे प्रोग्राम की स्टार्टिंग में कहा था अपने सेश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपने सेश करेंगे तो अगर हमारे शरीर में कुछ थोड़े बहुत बदलाव होंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स नजर आएंगे तो हम टाइम पर जरूर जरूर डॉक्टर को दिखाएंगे। और ये बात सिर्फ आपको अपने तक नहीं रखनी है, अगर आपके घर में भी कोई महिला है, आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी दादी है, कोई भी है, किसी को भी कुछ आप फील कर रहे हैं कि कुछ अलग सा वो फील कर रही हैं, वो अनईजी फील कर रही हैं या कुछ छोटी सी भी परेशानी लग रही है, तो आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है महिलाएं सोचती हैं कि भाई चलो छोड़ो अभी बाद में दिखा देंगे, और ऐसा करते करते समस्या शायद काफ़ी बढ़ जाती है। तो महिलाओं को ये इस बात का खास ध्यान रखना है। कोई भी हो, हम तो सिर्फ महिलाओं की बात नहीं करेंगे क्योंकि प्रोग्राम शत्रुपा इसलिए हम करते हैं, नहीं तो हम सबसे ये कहेंगे कि अर्ली स्टेज में कोई भी चीज़ डायग्नोस होती है तो उसका जो समस्या है उसका समाधान बहुत इजी हो जाता है। और हाँ, एक चीज़ और होती है, जो स्ट्रेस होता है ना वो बहुत सारी समस्याओं को जन्म देता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि खुश रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति के बीच रहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा था कि सुबह की धूप ज़रूर लीजिए, सुबह आपका वक्त आपका होता है, बहुत ही खूबसूरत सा वक्त होता है। और हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, क्योंकि ये जो वाकई में कुदरत ने एक चीज़ बनाई है कि सुबह के इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं, वो जो शांति होती है, चिड़ियों की चहचहाहट होती है, वो आपको ऐसे कहीं नहीं मिलेगी। फिर तो शोर शराबा शुरू हो जाता है जी, ढेर सारी गाड़ियों की आवाज़, ढेर सारे हॉर्न, वो पोल्यूशन, वो तेज़ धूप, वो आनंद आपको जो सुबह का आप मिस कर देते हैं वो आपको फिर दोबारा नहीं मिलता है। तो अगर आप जल्दी नहीं उठते हैं, देर से उठते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपनी इस हैबिट को थोड़ा सा चेंज कीजिए और सुबह के नज़ारे को बिल्कुल मिस मत कीजिए। हो सकता है आप कुछ दिन उठिए और उसके बाद फिर आपको बिना उठे चैन ना, यानी इश्क हो जाए आपको इस सुबह के नज़ारे से, अपने आप से, और अपनी ज़िंदगी को बहुत प्यार कीजिए, क्योंकि बहुत अनमोल, बहुत प्यारी है ये ज़िंदगी। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो पर प्रोग्राम शत्रुपा।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
4: तो दोस्तों, जो भागदौड़ होती है, भागदौड़ भरा जो जीवन होता है, वो आपको करनी ही पड़ती है, क्योंकि भाई आप जॉब भी कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं। तो ऐसे में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कहिए कि भाई हम भागदौड़ नहीं करेंगे, हमें काम नहीं करना। काम करना पड़ता है, लेकिन कभी भी ऐसा ना हो कि आप अपने खाने को स्किप कीजिए इस बीच में, यानी न्यूट्रिशियस खाने को। अक्सर ऐसा होता है कि सुबह का आप नाश्ता स्किप कर देते हैं, तो उसे मत स्किप कीजिए और एक निश्चित समय पर एक सही जगह पर आप बैठ कर उसे ज़रूर खाइए। और अपनी दिखावट को बदलने के लिए नहीं, बल्कि अपने अपनी शारीरिक गतिविधि को बदलने के लिए और अपने आप को फिट रखने के लिए ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज को ज़रूर टाइम दीजिए, यानी इतना वक्त निकालिए कि आप ज़रूर एक्सरसाइज कीजिए। हाँ, और साथ ही नींद जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अक्सर ऐसा होता है कि आपकी नींद प्रॉपर वे से नहीं होती है, तो कई तरह की समस्याएं हो जाती हैं। तो नींद आपके टाइम है जो, उसको सही रखिए और सुबह जब टाइम से उठिए तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालिए कि आप अपने जो दिनचर्या है उसकी शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव वे में कीजिए, ताकि आपका पूरा पूरा दिन अच्छा जाए। और ऐसा करिए और बताइए फिर हमें कि क्या लगता है आपको, क्या वाकई में शिल्पी ने जो कहा वो सही कहा कि नहीं। फिलहाल और भी बहुत सारी बातें हैं जिसे हम आपसे शेयर करते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, और आप भी ध्यान से सिर्फ सुनिए नहीं, इसे फॉलो भी कीजिएगा। फिलहाल सुनिए खूबसूरत से ट्रैक।

दोस्तों कहते हैं हम शरीर से कितने भी स्वस्थ हों या ना हों ये तो अलग बात है, लेकिन आपका मन से स्वस्थ रहना भी उतना ही बेहद ज़रूरी है जितने आपके शरीर को स्वस्थ रहना ज़रूरी है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारा मन बहुत बीमार होता है और हम इस ओर ध्यान ही नहीं देते, ना ही हमारे घर के लोग समझ पाते हैं कि भाई हम बहुत बीमार हैं या परेशान हैं। तो अगर आपको कुछ आसपास अपने घर में ही ऐसे लक्षण दिख रहे हैं कि कुछ कोई इंसान है जो आपसे कटा कटा रह रहा है, पहले की तरह बात नहीं करना चाहता, अकेले रहना चाहता है, कमरे की लाइट्स ऑफ करता है, थोड़ा सा उसके अंदर उदासी आ गई है, वो या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है या फिर बहुत ज़्यादा चुप रहने लगा है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो डिप्रेशन से रिलेटेड होती हैं, यानी अवसाद जिसे कहते हैं। तो ये जो लगातार उदास रहना, थोड़ा सा डिप्रेस रहना, निराशा रहना किसी भी चीज़ में, अक्सर ऐसा होता है कि हम फेल होते हैं तो हमें लगता है कि अरे अब जिंदगी में बचा गया। तो अगर ऐसी चीज़ें आप आसपास नोटिस कर रही हैं तो ज़रूर ज़रूर उस चीज़ का उपचार कीजिए। अपने मन को स्वस्थ बनाइए और अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सुबह का जो समय होता है वो बिल्कुल स्किप मत कीजिए। बहुत ही वंडरफुल टाइम होता है मॉर्निंग टाइम, आप का अपना समय होता है, आप कुछ वक्त ज़रूर अपने लिए निकालिए, डीप ब्रीदिंग कीजिए। और ये सिर्फ बातें नहीं है, सच में डीप ब्रीदिंग करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि डायरेक्टली जो ऑक्सीजन होती है वो ब्रेन को जाती है, विच एक्टिव योर ब्रेन, और आपका जब ब्रेन एक्टिव होता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। और सिर्फ पॉजिटिव विचार ही रखिए, ये सोचिए ना कि अगर ऐसा हो जाए तो। किसी भी काम को करने से पहले अगर आप उस बारे में नेगेटिव सोचेंगे तो मन में बहुत सारे इफ एंड बट बने रहते हैं। सो सोचिए ना कि कुछ गलत होने वाला है, अपने एफर्ट्स पूरे कीजिए और बस। कई हमने लेडीज़ को देखा है वो रात भर चैन से सोती नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह हमें अपने बच्चों को टिफिन

बना के देना, हस्बैंड का टाइम से नाश्ता तैयार हो जाए, क्या होगा अगर मैं टाइम से नहीं उठ पाई, और इस चक्कर में उनकी पूरी पूरी नींद खराब रहती है। तो भाई डियर लेडीज, बहुत सारा ध्यान रखना है आपको, क्योंकि आपके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है अपनी और अपनी फैमिली की। तो बस अपनी और अपनी फैमिली की जिम्मेदारी, लेकिन आपकी अपनी ऊपर आपकी भी जिम्मेदारी है। तो बस अपने आप को फिट रखने के लिए बिल्कुल भी कोर कसर छोड़िए नहीं, और अपना ध्यान रखने के लिए मैंने जो बातें बताई उनको ज़रूर फॉलो कीजिए। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर डॉक्टर से मिलिए, उस मामले में बिल्कुल भी लापरवाही ना कीजिए।

जी बातें करते करते समय देखिए 12:53 और 31 सेकंड हो गए हैं और आज हमने बात करी वर्ल्ड थायराइड डे के बारे में, बात भी आपकी कराई हमारे एक्सपर्ट से जिन्होंने आपको बताया कि भाई अच्छा खान पान जो होता है वो इफेक्ट करता है आपकी जो बीमारियां हैं उनको रोकने में काफी मदद करता है। ये सिर्फ हमारा भ्रम है कि हमें लगता है कि बस जल्दी से ऑर्डर करो, खाना मंगा लो, लेकिन आप जरा सोचिए कि आप मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर के लिए, अपने आगे जीवन के लिए कि जो बहुत अच्छा रहे, और आप अपने ही शरीर से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, जो भी आप कुक कर सकते हैं ज़रूर कुक कीजिए। आप के पास समय नहीं तो आप हल्के से फ्रूट्स या वेजिटेबल्स वगैरह डाल के खिचड़ी खा सकती हैं या फिर फ्रूट्स का इंटेक कर सकती हैं जिनको हम अक्सर अवॉइड करते हैं, और डीप फ्राइड फूड खाने में ज़रा भी परहेज नहीं करते क्योंकि हम स्वाद ढूंढते हैं। तो इन सब चीज़ों का खास ध्यान रखिए। और आपको ये भी बता दें कि अवेयरनेस, किसी भी दिन को मनाने का मतलब होता है उसके लिए अवेयरनेस फैलाना, जागरूकता फैलाना। तो जो भी लोग इस बीमारी से परिचित ना हो तो वह बात जान गए होंगे कि इस बीमारी के क्या सिम्टम्स होते हैं और कैसे इस बीमारी से को हम कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी हद तक। और साथ ही नींद और स्ट्रेस, यानी अगर आपके पास स्ट्रेस है तो नींद नहीं आएगी, तो स्ट्रेस को थोड़ा सा बाय बाय कीजिए। और हाँ, एक चीज़ और, थोड़ा अपने जो आपका सोने का कमरा है, जैसे आप सारी लाइट्स ऑफ कर देते हैं उसी तरह आपको उस कमरे से टेक्नोलॉजी को भी ऑफ कर देना, यानी कि उस कमरे से मोबाइल को दूर रखिए और टेंशन फ्री होकर बिल्कुल सुकून वाली नींद सोइए। क्योंकि अक्सर लोग क्या होता है ना, देर रात मोबाइल चलाते रहते हैं और ऐसे में नींद बहुत डिस्टर्ब होती है। तो बाकी हमारी सब जो सुनने वाली श्रोता हैं, हमारी जो लेडीज़ स्पेशल प्रोग्राम है या जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं, वो सब सब चीज़ें जानते हैं और हमारे प्रोग्राम सुनते रहते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या क्या करना और क्या क्या नहीं करना है। जैसे कि मुझे पता है कि इस समय मुझे आपसे टाटा बाय बाय कहनी है, क्योंकि नेक्स्ट प्रोग्राम होठो पे तेरी बात में एक बार फिर मेरा आपका सामना होना है। सो राइट नाउ शिल्पी इज सेइंग टाटा बाय बाय, टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 200.7 FM रेनबो।

नमस्कार। दोपहर के 1 बजे अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में आयुष विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने प्रदेश में आयुष हेल्थ एंड वेलनेस नीति 2026 को लागू करने की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को केवल उपचार आधारित व्यवस्था तक न सीमित रखते हुए आयुष, योग, पंचकर्म, प्राकृतिक चिकित्सा और वेलनेस सेवाओं के समन्वय से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख वेलनेस डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वाराणसी, अयोध्या और मथुरा जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों के आसपास वेलनेस और हीलिंग आधारित पर्यटन विकसित किए जाने की व्यापक संभावनाएं हैं। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने अपने दौरे के दूसरे दिन अमरोहा में आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजरौला का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बृजेश पाठक ने अधिकारियों से कहा कि मरीजों को अनावश्यक रूप से इंतजार न कराया जाए और अस्पतालों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जाए। निरीक्षण के बाद उपमुख्यमंत्री ने टीबी मरीजों को पोषण किट वितरित की और आशा कार्यकर्ताओं को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति के कारण राज्य को लीड्स 2025 रैंकिंग में लैंड लॉक्ड राज्यों की श्रेणी में सर्वोच्च एग्जाम्पलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह उपलब्धि केवल एक सम्मान नहीं बल्कि उस व्यापक परिवर्तन की पहचान है जिसने उत्तर प्रदेश के देश की आर्थिक व्यवस्था प्रगति के केंद्र में लाकर खड़ा किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, प्रदेश की ओर से इन्वेस्ट यूपी के अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने पुरस्कार ग्रहण किया। चित्रकूट के वन क्षेत्र में पिछले कुछ सालों में लगातार और काफी अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019, 2021 और 2023 के दौरान इस पूरे इलाके में हरित क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चित्रकूट में चलाए गए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों ने सफलता की मजबूत नींव रखी है। प्रदेश के औद्योगिक विकास और निर्यात प्रोत्साहन मंत्री नंदगोपाल गुप्ता नंदी कल झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, साथ ही बीड़ा औद्योगिक क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण भी किया। पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों ने जिस बुंदेलखंड को पथरीला और बंजर समझकर छोड़ दिया था, उसी बुंदेलखंड में अब बीड़ा और डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से विकास की नई धारा बहाई जा रही है। इसी के साथ समाचारों का ये बुलेटिन ही समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन 2 बजे प्रसारित किया जाएगा।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की।
2: एक बजकर 3 मिनट और 52 सेकंड हो गए और ये प्रोग्राम होता है होठों पे तेरी बात का। वायदे के मुताबिक शिल्पी हाजिर है एक बार फिर 100.7 FM रेनबो पर। वेल दोस्तों, होठों पे तेरी बात, आज मंडे का दिन और मंडे के दिन तो भाई और फ्राइडे के दिन दो दिन भाई हम कुछ लोगों से बातचीत करते हैं तो कुछ रिकॉर्डिंग्स प्ले करते हैं, लेकिन लेकिन लेकिन भाई जो हमारे रेगुलर लिसनर्स हैं या जो हमारे जो हमको सुन रहे हैं श्रोता भाई, उनके लिए भी हम ओपन प्लेटफॉर्म रखते हैं। यानी कि अगर आप हमें मेल करना चाहते हैं ज़रूर मेल कीजिए fmakashwani@gmail.com पर, और आपको हम ये बता देते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं। ये जो गर्मी की छुट्टियां होती हैं ना, बहुत स्पेशल होती हैं, और हमें अपना बचपन याद आता है जब हम गर्मी की छुट्टियों में कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन नाना नानी के घर ज़रूर जाते थे, और नाना नानी के घर जो मज़ा आता था, यानी सब इकट्ठे होते थे और फिर जो मौज मस्ती होती थी, वो हमारी लाइफ का ऐसा पन्ना होता है जिसे कभी भी हम जब पलट के देखते हैं तो हम पूरी तरह इमोशनल हो जाते हैं और उन यादों में खो जाते हैं। तो आज हम आपसे यही जानना चाहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में आप अपने नाना नानी के घर जाते थे तो वो कौन सी याद है जो आज भी आपके जहन में ताज़ा है, जिसे आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, तो वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। तो आप भी ज़रूर शेयर कीजिए fmakashwani@gmail.com पर, और जो रिकॉर्डिंग्स है वो तो हम प्ले ही करेंगे। साथ ही हम आपको ये बता दें कि 1:05 हो गया है, बस एक गाना सुनिए, उसके बाद आप सुनेंगे क्या इलाकाई खबरें, और उसके बाद जारी रहेगा होठों पे तेरी बात का ये सफर आज शिल्पी के साथ। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड टू 100.7 FM रेनबो।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब अली।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: सपने बड़े हैं,
4: स्टाइल अलग है,
3: तो ये शो है आपके लिए।
4: करियर हो या फैशन ट्रेंड्स,
3: स्पोर्ट्स हो या लाइफ को बेहतर बनाने वाले स्मार्ट टिप्स,
4: सब कुछ एक ही जगह। तो सुनना मत भूलिए यूथ वेव हर शाम 4 बजे
3: सिर्फ 100.7 FM रेनबो पर।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रियासत के अमनो अमान और इंतजामी कामों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने हर तरक्याती ब्लॉक की सतह पर हफ्तावाराना चौपाल मुनक़िद करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने कहा कि इन चौपालों में रेवेन्यू के तनाज़ात, घरेलू तशद्दुद, गैर कानूनी वसूली और मकामी सतह की शिकायत का मौके पर ही हल यकीनी बनाया जाए। IGRS और CM हेल्पलाइन के जरिए मौसूल होने वाली शिकायत के मेयारी और तसल्ली बख्श निपटाने पर जोर देते हुए जनाब योगी ने कहा कि शिकायत में किसी भी सतह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि गंगा दशहरा और बकरीद के सिलसिले में मजीद चौकस रहें। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल एक आला सतही जायजा मीटिंग में रियासत के पुलिस निज़ाम को मजीद महफूज, जदीद और तकनीकी बनाने के लिए पुलिस रेडियो यूनिट को मजबूत करने की हिदायत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुलिस के मकाम नकलो हरकत और मवासलाती सरगर्मियों की राजदारी अव्वलीन तरजीह है। इसके अलावा कल शाम महकमा आयुष की एक जायजा मीटिंग में वज़ीर आला ने आयुष, सेहत और फलाह बहबूद की पॉलिसी 2026 को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने की हिदायत दी। बहुजन समाज पार्टी की कौमी सदर मायावती ने कल लखनऊ में वाक़ पार्टी सदर दफ्तर पर सभी सीनियर अहदेदारों, कोऑर्डिनेटर्स और ज़िला सदूर के साथ 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात की तैयारियों को लेकर मीटिंग की। इस दौरान BSP सरबराह ने उन्हें जीत का मंत्र देते हुए कहा कि रियासत में एक बार फिर BSP की हुकूमत बनाने के लिए कारकुन अभी से जुट जाएं। उन्होंने कहा कि मुल्क में नए नए चैलेंजेस के दरमियान जिस तरह इंतखाबात हो रहे हैं उसको देखते हुए पार्टी को तैयारियों की हर सतह पर और भी चुस्त, दुरुस्त और मुस्तैद बनाने की ज़रूरत है। हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में आज से गंगा दशहरा त्यौहार का इनेकाद हो रहा है। इसे देखते हुए पुलिस इंतजामिया ने कल डॉग स्क्वाड और मेटल डिटेक्टर से मेला इलाके में सख्त चेकिंग की। वहीं अमरोहा में भी कौमी शाहरा पर कल से ही रूट डायवर्जन नाफिज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ज्येष्ठ गंगा दशहरा पर्व पर गंगा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हापुड़ की तीर्थ नगरी गढ़मुक्तेश्वर के ब्रजघाट पहुंच रहे हैं। उनकी सुविधा और सुरक्षा के लिए घाटों पर PSC, फ्लड PSC, फायर टेंडर्स के साथ एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है। इसके साथ ही यातायात को सुचारू रखने के लिए रूट डायवर्जन लागू किया गया है। नदी में बैरिकेटिंग कराने के साथ गोताखोर और नाविक भी तैनात रहेंगे। मेला क्षेत्र की CCTV कैमरे और ड्रोन से निगरानी की जाएगी। 3 दिनों तक चलने वाले गंगा दशहरा मेले में श्रद्धालुओं के लिए जगह जगह ठंडे पानी की आपूर्ति के लिए वाटर कैंपर और वाटर टैंकर की व्यवस्था की गई है। रविंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। हाँ।

0: पेट्रोल की कीमतों में आज 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा किया गया है। पेट्रोल और डीजल की कीमत में यह गुज़िश्ता 2 हफ्ते में चौथा इजाफा है। अब लखनऊ में पेट्रोल 101 रुपए 89 पैसे और डीजल 95 रुपए 36 पैसे फी लीटर मिलेगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 28 मई को मुजव्विज़ा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET 2026 मुलतवी कर दिया है। NTA के मुताबिक बकरीद की छुट्टी की तारीख में तब्दीली को देखते हुए ये फैसला किया गया है। 5 रोज़ा सालाना हज मगरबी एशिया में तनाव के दरमियान आज से शुरू हो रहा है। भारत समेत पूरी दुनिया से 10,60,000 से ज़्यादा आज़मीन हज मक्का मुकर्रमा से हज का सफ़र शुरू करेंगे और मीना में क़याम करेंगे। मीना में रात गुजारने के बाद आज़मीन हज कल अलसुबह अराफात के लिए रवाना हो जाएंगे। इस साल हज में भारत से तकरीबन 1,75,000 हाजी शिरकत कर रहे हैं। महकमे मौसमियात ने रियासत में शदीद गर्मी और लू का असर जारी रहने का इंतबाह जारी किया है। लखनऊ के मौसम साइंस मरकज़ के सीनियर साइंसदान मोहम्मद दानिश ने बताया कि रियासत में गर्मी का कहर बढ़ने का इम्कान है।
1: जैसा कि

0: तारीख से थोड़ा सा जो तराई बेल्ट है सेंट्रल पार्ट में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना है, तो कहीं ना कहीं अगले 4-5 दिनों के बाद तापमान में धीरे धीरे गिरावट होने की संभावना है।
1: महकमा मौसमियात ने मशरकी उत्तर प्रदेश में दिन के वक्त कुछ मकामात पर कल तक के लिए ज़बरदस्त लू का रेड अलर्ट भी जारी किया है। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन ख़त्म हुआ।

0: 1:16 पर हम फिर से स्वागत करते हैं आपका प्रोग्राम होठों पे तेरी बात पे। और आज हमने टॉपिक जो दिया वो बहुत ही इमोशनल है और कई लोग जो है उन गलियों में घुस गए होंगे, चले गए होंगे और उन गलियों में ढूंढ रहे होंगे अपने बचपन को। जी हाँ, मैंने आज आपसे ये पूछा है कि नाना नानी क्या हम गर्मियों की छुट्टियों में कहीं जाए या ना जाए लेकिन इस जगह जरूर जाते थे और यहाँ हमें बहुत मजा आता था, हम ढेर सारी शैतानियां करते थे और उसके बाद भी हमें ढेर सारा प्यार मिलता था। और आज हम अपने लिसनर से यही जानना चाहते हैं कि वो नाना नानी के यहाँ गर्मी की छुट्टियां बिताने पर वो जो यादें आपके पास स्टोर हैं उन्हें आप हमसे शेयर कीजिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। लेकिन चूंकि आज मंडे है, वॉक्स पॉपुलाई, तो हमने कुछ लोगों से बात करी है, वो भी सुनते हैं। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि ऋचा श्रीवास्तव ने क्या कहा।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋचा है। आज का टॉपिक तो मुझे बचपन के उन ढेर सारे अनमोल पलों में ले गया जब हम गर्मी की पूरे 2 महीने की छुट्टियां एंजॉय करते थे और नानी के घर जरूर जाते थे। और नानी के घर जाने से याद आता है वो ट्रेन की वो जर्नी, वो भी जनरल टिकट लेके, और बैठ के हम लोग जाते थे, खूब वो मस्ती करते थे ट्रेन में, खूब मस्ती करते थे। और वो पूरी सब्जी और अचार, आहा क्या बात है। उसके बाद जब नानी के घर हम लोग पहुंच जाते थे तब तो क्या ही कहना, जैसे लगता था कि बिल्कुल एकदम पंख लग गए हमें। नाना से ये फरमाइश वो फरमाइश, उनका लीची लाना, फिर उसके बाद आम, ढेर सारे आम, बैठ के पता नहीं कितने आम हम लोग खा जाते थे और गिनते भी नहीं थे। और रात के समय छत के नीचे हम लोग सब लोग अपना बिस्तर लगाते थे और खूब ढेर सारी बातें करते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कितनी ही बातें कर लेते थे और क्या ही क्या ढूंढ लेते थे और क्या क्या हम लोग उसमें सपने बुन लेते थे अपने। इस तरीके की बहुत सारी यादें हैं जो कि नाना नानी के साथ और अपने बचपन में, या हम लोग जब मम्मी के साथ जब वो पल बिताते थे जब

मम्मी भी एकदम बेफिक्र होके रहती थी वहां पे, कोई काम का टेंशन नहीं और कोई भी जिम्मेदारी नहीं, सबसे बड़ी चीज, बहुत मजा आता था सच में, वो पल अनमोल थे।

नाना नानी का घर बहुत स्पेशल होता है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ उन्हें बिल्कुल भी डांट नहीं मिलती, ढेर सारा प्यार मिलता है और जो भी वो फरमाइश करते हैं वो सब की सब पूरी हो जाती है। हमें भी याद है कि हम लोग अपने नाना नानी के घर जाते थे तो बिंदास खेलने का मौका मिलता था, खूब मज़े करते थे और दिन में जब सब लोग कहते थे सो जाओ तो कहाँ नींद आती है बचपन में, ना थकान होती है, लगता है पूरी एनर्जी से भरे हम लोग पूरे टाइम खेलने की बातें सोचा करते थे कि आज ये शाम को करना है वो करना है, प्लानिंग करते थे और दिन में भी हम लोग बहुत बदमाशी करते रहते थे। और ऐसी कई सारी ढेर सारी बातें होती हैं जो हम सब के जहन में ताज़ा होती है। सुल्तान रज़ा साहब ने लिख दिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से सुल्तान रज़ा साहब लिख रहे हैं कि हम जब अपने नाना नानी के घर जाते थे तो हमारे नाना का बाग हुआ करता था और उसमें बैठकर आम का खाना और वहाँ चिलचिलाते धूप में आराम से मिलता था और पंखे के नीचे नहीं मिलता था, और उससे अच्छी बात नदी में नहाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सब कुछ बदल गया, अब सिर्फ याद रहेगी। तो सुल्तान रज़ा जी, इतनी अच्छी याद है ये भी क्या कुछ कम है। सुधाकर जाधव जी लिख रहे हैं ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से, प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली कुमार, सरवन कुमारी सानवी लिखा है कि हमको तो नाना नानी नहीं है लेकिन मामा के घर हम छुट्टी में जाते थे तो मामा और मामी हमारी बहुत देखभाल करते थे, बहुत खिलौने, खाना पीना, घूमना घुमाने ले जाना। और लिख रहे हैं अभी तो मेरी उम्र 62 साल की है लेकिन अभी भी मामू के गांव की बात आई तो मामू हमको अभी भी कहते हैं कि आओ भाई यात्रा को आओ, और हम भी यात्रा को चले जाते हैं। तो भाई मामा मामी को बहुत

बहुत धन्यवाद जी। हाँ, नाना नानी के बाद मामा मामी भी बहुत ध्यान रखते हैं, ये बात सच है। और वो जो घर होता है वो बहुत स्पेशल होता है, हर एक की जिंदगी में बहुत खास होता है। और भाई हमारे पास मेल आ गया रामराज जी का, और इन्होंने जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से लिखा है। रामराज, राजू बानू, शंकर भैया, पप्पू पासी, मनीष, मधु, बजरंगी काका लिख रहे हैं। हमारा संदेश ये कि हम नाना नानी के यहाँ जब जाते थे तो वहाँ पर आम खाने को बहुत मिलते थे, और कच्चे आम का जो पना होता है वो रखा जाता था। और जब हम वहाँ से जाते थे तो नानी झोला भर के आम हमारे लिए दे देती थी। और आज आपने याद दिलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से आप सबको प्यार भरा नमस्कार। देखा ना कैसे मैंने आपको जो है अपने बचपन के दिन याद दिला दिए, यानी सब लोग अपने अपने बचपन के दिनों में इस समय वापस लौट गए। और मैं आपको बता दूं कि 1:24 हो गए, इन बचपन की गलियों में हम चलते रहेंगे। फिलहाल तो चलिए हम लोग बस से एक ट्रिप करते हैं। आपको लोग रहा बस से एक ट्रिप करते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इमेजिन कीजिए सब लोग इकट्ठा हैं बस में, सब पूरी फैमिली बैठी है और मज़े से कहीं घूमने जा रहे हैं, तो फिर ऐसा ही माहौल होता है ना।

के दिन याद दिला दिए, यानी सब लोग अपने अपने बचपन के दिनों में इस समय वापस लौट गए। और मैं आपको बता दूं कि 1:24 हो गए, इन बचपन की गलियों में हम चलते रहेंगे। फिलहाल तो चलिए हम लोग बस से एक ट्रिप करते हैं। आपको लग रहा है बस से एक ट्रिप करते हैं? नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि इमेजिन कीजिए सब लोग इकट्ठा हैं बस में, सब पूरी फैमिली बैठी है और मजे से कहीं घूमने जा रहे हैं, तो फिर ऐसा ही माहौल होता है ना।

0: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
0: कॉल उठाओ, फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
0: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई D&D ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
3: जी, आप लोग के साथ हम भी इमोशनल हो रहे हैं और हम भी याद कर रहे हैं वो दिन जो हम अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाते थे, गर्मी की छुट्टियों में खूब मजे करते थे और वहाँ हमें किसी भी चीज़ का डर नहीं होता था, हमें ढेर सारा प्यार मिलता था। सिर्फ नाना नानी का ही नहीं बल्कि अपनी मौसियों का, मामा का, सबका बहुत सारा प्यार मिलता था। तो चलिए, अब हम तो आपसे जो बातें शेयर करते बीच में करते रहेंगे, लेकिन जो हमने अपने लिसनर से बात करी, आइए वो शेयर करते हैं।
4: हाय, मेरा नाम वनीषा जादौन है। गर्मियों की छुट्टियों में मेरी नानी के घर की याद है। मैं हर साल गर्मियों की छुट्टियों में अपनी नानी के घर जाया करती थी, जहाँ पे मुझे बहुत मज़े आते थे। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियाँ शुरू होती थी, मेरे को सबसे पहले मन करता था बस सबसे जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम नानी के घर पे पहुँचे, कुछ भी करके। नानी के घर पे हमें मज़े बहुत आते थे। वहाँ पे हम सारे भाई बहन मिलके बहुत खेलते थे, मेरे काफ़ी दोस्त भी थे उधर, और नानी हमारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाया करती थी खाने के लिए। और हम लोग घूमने जाया करते थे, कभी मेले में, कभी कहीं और, बहुत मज़े आया करते थे। और रोज़ शाम को फिर हम सब लोग बैठते थे और नानी हमको स्टोरी सुनाया करती थी, बहुत अच्छा लगता था। थैंक यू।
3: जी, तो भाई ये जो स्टोरी सुनाया करती थी, ये नानी नाना के यहाँ का ये स्पेशल वो था कि भाई रात में नाना नानी की कहानियों के बिना जो थी वो कोई भी बातचीत अधूरी रहती थी। और इन्हीं बातों में हम बहुत सारी बातें सीख भी जाते थे, क्योंकि हर चीज़ आपको किताब खोल के पढ़ने से नहीं आती, कुछ चीज़ें आप ऐसे ही सीखते हैं जो अक्सर हमारे बड़े बड़े जो लोग घर में होते हैं वो बातचीत करते करते बच्चों को यूं ही चुटकियों में सिखा देते हैं। फिलहाल चुटकियों की बात तो अभी नहीं है, अभी तो हमें बहुत सारी बातें आपकी सुननी है। मोनू सेठ जी का मेल आ गया खालिसपुर ऊंचगांव अमेठी से, लिख रहे हैं, शिल्पी जी बचपन तो ऐसा ही था कि आज भी याद करके इमोशनल हो जाते हैं। हम सबको नाना नानी का इतना प्यार दुलार मिला कि हम नाना नानी के घर पर बचपन से जवान हो गए और बच्चे से यानी बड़े हो गए। और एक बार नाना जी मेला जाने के लिए तैयार थे और नाना जी की साइकिल कैची ही चला पाते थे, अचानक उसकी चेन उतर गई और हम गिर गए। हमें तो चोट नहीं लगी लेकिन नाना जी की साइकिल टूट गई, चुपके से हमने खड़ी कर दी। पर जब नाना जी को मेला जाने का समय आया तो जो टूटी मिली तो फिर धुनाई हुई, वो आज भी याद है। लेकिन उसके बाद नाना जी ने साइकिल भी ला कर दी, आज भी वो साइकिल है लेकिन चलती नहीं, घर पर है। जी मोनू जी, ये बहुत सारी यादें सब हमारे जो लिसनर्स हैं उनके जहन में ताज़ा है, जिसे आज वो हमसे शेयर कर रहे हैं प्रोग्राम होठों पे तेरी बात में, जिसे लेकर हाजिर है आपके अपनी दोस्त शिल्पी। तो गानों का सिलसिला भी जारी रहेगा और आपकी बातों का सिलसिला भी जारी रहेगा। सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: बहुत ही प्यारा सा ट्रैक पलाश की आवाज में आप सुन रहे थे 100.7 FM रेनबो पर. और अब कुछ और बातें जो हमने की वो भी हम सुन लेते हैं.
1: हाँ, मेरा नाम कंचन है. हम लोग नानी के घर जाते थे गर्मी छुट्टी में, नहर में खूब डुबकी लगा के नहाते थे, पेड़ पौधे खूब थे, खूब हिचा घसोटी करते थे, पेड़ के साथ खूब खेला करते थे. बस हम लोग की छुट्टी से ही बीतती थी. करते हैं कि कैसे हम. हेलो, मेरा नाम काव्या है. और जैसा कि आपने पूछा कि हम अपने नानी के घर की गर्मी की छुट्टियों की यादें साझा करें, तो बहुत ढेर सारी यादें हैं. हम हमेशा इंतज़ार करते थे कि हमारी गर्मी की छुट्टियां हों और हम नानी के घर पहुंचे, क्योंकि वहां पर हमारी जॉइंट फैमिली थी और बहुत सारे बच्चे और बहुत सारे लोग एक साथ रहते थे, तो वो अपने आप में एक सेलिब्रेशन होता था. और हम सारे बच्चे वहां पहुंचते ही बस खेलने में लग जाते थे. कभी कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें ला के बाहर से खा रहे हैं. तो और हमारा कभी वहां से लौटने का मन ही नहीं करता था. मन करता था कि बस वापसी का टाइम ना आए. तो नानी के घर की यादें जो है वो बहुत ही खास हैं. और

0: जी तो नानी के घर के प्यार की बातें हो रही है कि नानी और नाना कितना प्यार करते थे और क्या मजा आता था गर्मी की छुट्टियों में। आइए जानते हैं, कुछ और रिकॉर्डिंग सुनते हैं कि क्या बातें और क्या इमोशंस आज हमारे लिसनर्स हमसे शेयर कर रहे हैं।
1: मैं सुषमा सिंह इंदिरानगर से बोल रही हूँ और गर्मी की छुट्टी की वैसे तो बहुत सारी यादें हैं हम लोगों के पास, लेकिन नाना नानी के घर जाने का जो अट्रैक्शन था वो तो बिल्कुल ही अलग रहता था, क्योंकि हमारे मौसी के बच्चे और मामा के बच्चे भी बाहर रहते थे, तो छुट्टियों में हम सब बच्चे अपने नाना नानी के यहाँ जाते थे तो हम लोग खूब मजे करते थे, पूरे दिन खेलना कूदना उछल कूद। और उस समय जो है एसी तो बहुत कम घरों में होते थे, तो हम लोग छत पर जाते थे और छत पे पानी का छिड़काव करते थे और सब बच्चे बाल्टी भर भर के ले जाते थे, पूरी छत भिगो देते थे और फिर वहां पे जब वो सूख जाती तो बिस्तर लगाया जाता और हम सब लोग खूब धींगा मस्ती करते हुए लेटते और रात में कोई तारे गिनता तो कोई कहानी सुनाता और कहानी में ऐसे भूत प्रेतों की कहानी, मतलब बहुत ही उस वक्त को आज भी जब याद करती हूँ तो मतलब मन एकदम रोमांचित होता है और लगता है कि काश फिर से हम लोग नाना नानी के घर जाएं और सब बच्चे इकट्ठा हों और इसी तरह से मस्ती करें। अब तो खैर सब बाल बच्चे वाले हो गए हैं तो बहुत ही खूबसूरत यादें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता।
2: नमस्कार, मैं प्रभात कुमार अलीगंज से। गर्मी बहुत पड़ रही है, अपने बचपन के दिन की यादों में समय खोया हुआ हूँ। याद कर रहा हूँ जब अपने नाना नानी के यहाँ जाया करता था, जब फाइनल एग्जाम हो रहे होते थे तो इतनी बेसब्री से नाना नानी के यहाँ घर जाने का इंतजार करते थे कि इम्तहान सेकेंडरी हो जाता था, किसी तरह बस यही लगता था कि इम्तहान खत्म हो जाए, जल्दी से उड़ कर नाना नानी के यहाँ पहुँच जाए। आखिरी इम्तहान तो ऐसे बीतता था कि समझ ही में नहीं आता था कि क्या किया क्या लिखा कुछ नहीं पता, बस मौका मिला और मौका मिलते ही हम सभी भाई बहन नाना नानी के घर पहुँच गए और बस नाना नानी का वो घर, गाँव का वो घर जहाँ एक आम का पेड़ लगा है, बाहर इमली का पेड़ लगा है, उसी आम के पेड़ पर झूला डाल लिया, चढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं और नाना नानी डांट रहे हैं, गर्मी का कोई असर नहीं है, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि आम पक जाए

0: और एक दूसरे के साथ इतनी शैतानी तालाब तक घूमना, क्या आनंद था, क्या जीवन था। नाना नानी चले गए, सब कुछ वहाँ से उजड़ गया, अब एकदम सन्नाटा है, जाने का मन भी नहीं होता। हाँ, मेरे बच्चे जब कभी कभी आ जाते हैं, मतलब मेरी बेटी के बच्चे, तो बहुत आनंद आता है, वो पुराने दिन को याद कर लेता हूँ। धन्यवाद।
1: मैं ज्योति गोमती नगर से बोल रही हूँ। बचपन में नाना नानी के घर जाने के बारे में इतनी अच्छी अच्छी यादें हैं कि उनको आज भी याद करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग सारे भाई बहन जो है, अपने अपने मौसी के बच्चे, हम लोग मामा के घर जाते थे और सारे लोग इकट्ठा होके खूब तरह तरह के खेल खेलना, फिर नानी का लड्डू बनाना, फिर नानी के लड्डू को हम लोग दारा चुरा लेना और फिर नानी कहे कि कहाँ गए, इतने लड्डू बना के रखे थे, तो हम लोग कहते थे हम लोग ने नहीं लिए, हमने नहीं लिए। उसके बाद कभी दोपहर में चिया खेलना, गुट्टे खेलना और छुपा छुपाई खेलना, और फिर रात में सब लोग एक साथ लेटे सोए और नानी कहानियां सुनाती थी और हम लोग भी तरह तरह के मतलब खेल खेलते थे। तो वो सब यादें अब तो सपना बन गई हम लोग के लिए, लेकिन वो आज भी याद आती तो लगता है कि हम लोग के पुराने दिन कितने अच्छे थे, हम लोग कितने नेचुरल खेल खेलते थे।

0: प्रोग्राम वाइंड अप करने का टाइम हो रहा है, चलते चलते गुलफशा सिद्दीकी का मैसेज पढ़ लेते हैं। गुलफशा सिद्दीकी संडीला से लिख रही हैं कि गर्मी में अपने नानी नाना के घर जाती थी और एक बार ऐसा हुआ कि छत से गिर गई थी और इनकी सांस रुक गई थी। डॉक्टर भी घबरा गए, इन्हें लगा शायद कुछ नहीं है, लेकिन फिर क्या हुआ, इनके नानी ने इनकी नाक कस के दबाई और उसके बाद बहुत देर तक जब ऐसे करती रहीं तो इनके सांस एकदम से वापस आई और थोड़ा सा प्रेशर भी दिया इनकी नानी ने, और उसके बाद सबने सांस में सांस ली और ये वहां से बच के सही सलामत आई। और सब यही कहते हैं कि वही है जो क्या, ये वही है जो मर गई थी। अच्छा, मतलब लोगों को इसी तरह आपकी याद है कि आपको इस तरह याद किया जाता है कि ये वही लड़की है जो नानी के घर आई थी। और एक और मैसेज हम सुन लेते हैं जो हमारे लिसनर ने हमसे बात करी और हमसे कहा, उसके बाद आपसे टाटा बाय बाय करते हैं और फिर मिलते हैं आपके फेवरेट प्रोग्राम किस में, आप जानते हैं ना, हॉटमेल में।
1: हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौम्या है और गर्मी की छुट्टियों में सबसे स्पेशल मेमोरी मेरी होती है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन मेरे नाना के घर। जब भी मेरा बर्थडे वेकेशंस में आता है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हूँ, क्योंकि हम सब, मैं, मेरा भाई, मेरे मॉम डैड और क्या कहते हैं, शाम को मेरी मासी, मेरे मौसा जी और मेरे भाई, कज़न भाई, ये लोग आते हैं तो हम लोग सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग सेलिब्रेशन जो है अपना काफ़ी कुछ सिंपल रखते हैं, और जहाँ तक होता है कि हम लोग जितना भी फूड वगैरह है वो सब हम लोग बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं और हम लोग मिलके सब साथ में इंजॉय करते हैं। बाकी केक कटिंग, बातें और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना तो वैसे ही मेरी काफ़ी स्पेशल मेमोरी है। थैंक यू।

0: matches at the iconic Deichmann Bjørvika Public Library. India created history at the International Association of Ultra Runners 24-Hour Asia Oceania Championships held in Japan. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि।

0: दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल दो दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में

एप्पल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: दोनों भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।

0: नमस्कार।
1: बहुत शुक्रिया भी लिखा है, थैंक यू सो मच मसरूर हसन जी। एक मिनट मैं इनका ज़रा सा फिर से क्लिक करती हूँ। मसरूर हसन जी का मेल आ गया है। शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम किसी भी गीत में शामिल कीजिए, कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से मेल किया है आपने। इसके बाद मोहम्मद साहिर जी, मैम अपने बड़े भाई के मोबाइल से मेल कर रहे हैं, मोहम्मद फराज रामपुर कटरा ज़िला बाराबंकी से। अब हम आपको इसी तरह पहचानने लगे हैं मोहम्मद फैज़ साहब कि आप अपने बड़े भाई के मोबाइल से मेल करते हैं हमें। गुड आफ्टरनून लिख रहे हैं और लिखा है शुभ दोपहरिया। इनका लिखा है कि मेरा कुछ मिलता है उनका नाम देना चाहते हूँ, मोहम्मद साहिर, मोहम्मद मुन्ना भाई, मोहम्मद सद्दाम भाई, इन सब को। और ये जो गाना सुनना चाहते हैं इन्होंने वो भी लिखा है, तो चलिए कोशिश करते हैं कि आपकी पसंद का गाना आज प्ले हो जाए। शाहजी बोड़के, श्रीमती नंदा बोड़के, अनुमान बोड़के, उत्तम जामदड़े, इन सब ने हिंगोली महाराष्ट्र से हमें मेल भेजा है। शुक्रिया आप सभी का इतनी दूर से हमें मेल भेजने के लिए। और इसके अलावा बापू कॉलोनी अब्दुल्ला मस्जिद खंडवा मध्य प्रदेश से बेबी शालिया, बेबी हलीमा, बेबी जिक्रा, बेबी आयशा खत्री, गुंगट रेडियो श्रोता संघ जिलाधार धर्मपुरी से मूसा जी, ईशा जी और जाकिर खत्री। इसके बाद जयराम जी का मेल आ गया है और उसके बाद अब्बासी जी का फिर मेल आया है। और ये हैं हमारे पास मोहम्मद साहिर, जिनका मेल मैं पढ़ चुकी हूँ, यानी मोहम्मद फैज़ साहब दो दो बार तीन तीन बार आप मेल करते हैं। अहमद फूल वाले जी, अहमद भाई फूल वाले, दुखनी सदफ आरजू, जो इकबाल फूल वाले, इमरान अहमद फूल वाले, छोटे बलिया फिल्म सिटी मुंबई से और कपासड़ा बॉर्डर नई दिल्ली से बिटिया आमना नसरीन, आसमा परी, रबी अमंतशा, अशु अहमद फूल वाले, समस्त फूल वाले फैमिली। अब मुझे सांस लेना होगा और आपके लिए गाना प्ले करना होगा क्योंकि मेल्स बहुत ज़्यादा हैं और फिर इसमें क्या होता है फिर गाना नहीं हो पाता। तो चलिए जल्दी से आपकी पसंद का गाना सुनते हैं।

0: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
1: जी तो भाई अब जल्दी से और मेल पढ़ते हैं। बता दें 2:36 का समय हो गया, प्रोग्राम चल रहा हॉटमेल 100.7 FM रेनबो पर। रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी साहनी, सुनीता साहनी, कमल साहिनी नागपुर महाराष्ट्र से, पिंकी साहिनी, अफजल मलिक, संदीप मक्कड़ जी, और इसके अलावा हमारे पास अब्दुल गफ्फार जी का भी मेल आ गया। अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, ये नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से, और भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी और पायल जोशी, जोशी गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी। और ये हमारे पास मेल आ गया संदीप मक्कड़ जी का, जन्नत मक्कड़, मन्नत मक्कड़ और भरत मक्कड़, कमल सानी, पिंगेवाला चौक, कुरिया ये इन्होंने ये इसके बाद जो हमारा मेल आया है ये आया फ्रॉम राजकोट गुजरात, कौशिक अस्मिता, मम्मी पापा महेश, बदवाड़ा परिवार लिखा है। हेलो नमस्ते शिल्पी मैम, केम छो, हमें मजा में छो एंड गुड आफ्टरनून। सॉन्ग जो उन्होंने लिखकर भेजा है वो हम कोशिश करते हैं प्ले करते हैं। बाबू अंसारी जी गुड आफ्टरनून, किसी भी गाने में नाम शामिल कर लीजिए कीजिए, नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, बाबू अंसारी और कुलदीप गुप्ता। और भाई एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा, अब्बासी जी यानी जो हमारे अब्बासी साहब हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज उन्होंने हमें खूब सारे मेल भेजे और उनका मेल पढ़ा भी गया, लेकिन वो लगातार उनके मेल हमें मिल रहे हैं, उसके लिए आपको बहुत ढेर सारी बधाई। और अंचल वर्मा हरदोई से गुड आफ्टरनून मैम जी, प्लीज़ मैडम मेरा भी सॉन्ग प्ले कर दीजिए, और कोशिश करती हूँ लेकिन क्या करा जाए, इतने सारे मेल्स होते हैं। और डेडिकेट कर रही सभी को जो गाना ये अगर इनकी पसंद का प्ले हो गया तो। इसके बाद आर्यन राज जी इन्होंने भी लिखा है मुजफ्फरपुर बिहार से, रोहित राज, पीयूष कुमार, आर्यन राज, जावेद अख्तर साहब ने भी मेल किया है और लिखा है हम भी हॉटमेल से जुड़े हैं, किसी गीत में शामिल कर लीजिए, रकीबा शाहीन, तूबा शाहीन, आफरीन, शमीम अख्तर अंसारी जी। और ये इन्होंने कहाँ से किया ये नहीं बताया, तो फिर हमें जो है वो बहुत सारी शिकायतें सुननी पड़ेंगी। रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपने मेल किया है। भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कार्यक्रम पसंद आ रहा है, आप हमारा मेल शामिल करें या ना करें हम सुने बिना नहीं रह सकते, क्या बात है। और दतरिंगी से ही हमें मेल आया, थैंक यू सो मच। इसके बाद दीपेश वर्मा जी, पूनम वर्मा जी, दिशिवांश वर्मा जी, और इन्होंने हमें मेल किया ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से। बोधराज खोरवाल जी, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश जी, उत्तम नगर दिल्ली से। इसके बाद अभय प्रताप सिंह जी का मेल आ गया है, रायपुर लखनऊ, सबकी पसंद हमारी पसंद, और लिखा है सादर प्रणाम, गानों की कृपा बनाए रखे हैं, वाह वाह। और जिला मुरादाबाद, ग्राम दुलापुर, उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, किसी भी गीत में शामिल कीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आर कुमार जी का मेल आ गया है, पवटिंगखेड़ा पंजाब से, मिंटी थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, साई गायकवाड़ लिखा नमस्कार दीदी, प्यार भरा नमस्कार, आपको भी नमस्कार, लिखा कैसी हैं आप, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। और इसके बाद इन्होंने जो पता लिखा है वो है ओम रेडियो श्रोता संघ कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़ और साई गायकवाड़। अब इतने सारे नाम लेने के बाद आइए सुनते हैं आप ही में से किसी की पसंद का ये गीत।
2: को जीत बना।

0: की बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।
2: हिंदुस्तानी ब्रह्मेश सोनी लिखते हैं, मैम जी नमस्ते, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं सो थैंक्स। इसके अलावा आपने ये नहीं लिखा आपने कहां से मेल किया, थैंक यू सो मच। और ये अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, इन सब ने हमारा हार्दिक अभिनंदन किया, थैंक यू सो मच। इसके बाद हमारे पास मेल आया है, मैं देखूं जिस ओर सखीरी सामने मेरा बावरिया, ये अच्छे से गाना सुनना चाह रहा है, गोकुल चौक गंगजलर सहरसा बिहार से राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वानी फलना झा। और इसके अलावा हमारे पास मेल आ चुका है छत्रपति शामाजी नगर सूर्यवाड़ी औरंगाबाद से प्रकाश, सुषमा, प्रांजलि, सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, स्वीट अंशुमन और बेबी ओवी, और लिखा है दिल से शुक्रिया। और इसके बाद देखिए नंबर आ रहा है, किसका नंबर आया जी, ये है नीले शर्मा रूपपुर चंदेला से, शिल्पी दीदी मुझे सॉन्ग सुनना है और आज मेरा सॉन्ग आपने सुनाया था 3 महीने पहले, आज रिक्वेस्ट जरूर सुना दीजिएगा। और सारा पिहू, रोशनी, बबिता, मनुदी, इन सब के नाम भी आपने लिखे हैं। उदय भानपाल जी नंबर 2 बनने वाले हैं खूब सारे मेल करके, पता ग्राम रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से। और श्रोता उदय भानपाल, जय हिंदपाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विप्लेश पाल, दिव्यांश बघेल, और लिखता है किसी भी गीत में हमें शामिल कर लीजिए।

शारून नूर अंसारी जी, फरियाद अंसारी जी, शकील अहमद, मोइन तस्लीम और डीजे प्रधान। उदय भानपाल जी ने ढेर सारे मेल कर दिए, ढेर सारे मेल कि कहीं भी बिल्कुल नज़र से हम लोग अलग ना रहें। और ये प्यार भरा नमस्कार के साथ लिख रहे हैं, पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्विनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे भाविका ढिंगरा, दिल से शुक्रिया। और ये इन्होंने हमें कहाँ से केल किया, पंचकुला सेक्टर 9 से हमें मेल आया। सुरेश नारंग जी का मेल आ गया सहारनपुर से, आशा नारंग, सुरेश नारंग, सोनाली नारंग जी का मेल, और लिखा है, रिस्पेक्टेड आरजे, योर वॉइस इज सो स्वीट, थैंक यू सो मच। और भगवत वर्मा जी, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा, कार्यक्रम पसंद आ रहा, मेल शामिल करें या ना रहें। अच्छा जी, मैं अब तक मेल पढ़ चुकी हूँ। वही होता है, कई बार आप जब मेल करते हैं तो हम बार बार उसी चीज़ को पढ़ देते हैं और फिर हमें लगता है ये तो मैं पढ़ चुकी थी। राधे श्याम शर्मा जी जी का भी मेल आ गया, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, सचिन शर्मा, नंदिनी शर्मा, प्रियंका शर्मा, रोहित शर्मा, गाँव हांडी खेड़ा, जिला सिरसा, हरियाणा से। जी हाँ, न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप के थ्रू आप हमें कहीं पर सुन सकते हैं। महेंद्र दीपन जी आ गए, शिल्पी मैम नमस्कार, महेंद्र दीपन गौरूड़, जिला नागौर, राजस्थान से। आज होठों पर तेरी बात में मेल नहीं कर पाया था, वैसे सुबह 7 बजे से लगातार सुन रहा हूँ। हाँ ये बात तो है, मैं आपका मेल देख रही थी, मुझे लगा आप तो हमेशा करते हैं, आज क्यों नहीं करा आपने। कोई बात नहीं, आप आज नहीं कर पाए तो फिर कर दीजिएगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। और आज आपको बताऊँ ना, सारे रिकॉर्डिंग्स प्ले हो रही थी तो जो कुछ अच्छे मेल्स थे वो हमने ज़रूर शामिल किए, सबके मेल हम शामिल भी नहीं कर पाए। ताज मोहम्मद जी, आपका मेल हम शामिल कर चुके हैं, हरिद्वार से आपने मेल किया। नेहा वर्मा जी, अर्पित हर्षिता, अंजलि सुधाकर, कोमल, सियाराम गौरपुर, बमहेड़ा, बमन खेड़ा, बमना खेड़ा, जिला हरदोई से लिखा है, सब कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, कोई भी गीत बजा दीजिए, कोई भी गीत सुनवा दीजिए। अरविंद कुमार बुद्ध जी, गुड आफ्टरनून मैम जी, विलेज रसूलपुर, सुनावली डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद, मैं सबसे सुन रहा हूँ रेडियो, ये मुझे समझ में नहीं आया थोड़ा सा, चलिए कोई बात नहीं। पूनम गगनेजा जी का मेल आ गया, लगता है हमें मेरा मेल शामिल नहीं करेंगे, लीजिए शामिल हो गया। सुरेश गगनेजा, पूजम, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया देशानी और निमित, देखिए मैंने आपको बताया ना, आप ही के कुछ दोस्त हैं जो बहुत मेल करते हैं, जैसे उदयवान जी और अब्बासी जी, ये लोग बहुत सारे मेल कर देते हैं जिससे कि आपका मेल छिप जाता और कुछ नहीं होता। तेज बहादुर यादव जी, ममता यादव, बच्चे रोनित यादव, बेमी वमिका, लिखा है गांव मऊ शरकी, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश से, गुरुग्राम हरियाणा से सुन रहे हैं। और लिखा है, प्यार भरा नमस्ते, आप बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रही हैं, थैंक यू सो मच। और कह रहे हैं कि भाई गीत भी अगर सुनवा दिए तो अच्छा है। देखिए पूरी कोशिश रहती है कि आपके गीतों को हम शामिल करें, और कोशिश करते हैं कि जिनका गीत बच चुका है उनके गीत थोड़े से रोक दें, उन लोग के गीत शामिल करें जिनके गीत शामिल नहीं हुए हैं। नमस्ते जी, चर डोगरी, पिपरिया, जिला कबीरधाम, 6 गा, दुर्गा राम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी, माया साहू, कोई भी गीत किसी भी गीत में शामिल करें। तो अब इसके बाद अब गाना सुनवा देते हैं जो हमारे पास रिक्वेस्टेड सॉन्ग है।

0: की बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।
2: हमारे बहुत प्यारी लिसनर है अमन नवाब संडीला से, और ये लिख रही है, हेलो डियर दीदी, वन ईमेल ओनली, आज गर्मी बहुत है, अम्ब्रेला लेकर जरूर जाएगा, लॉट्स ऑफ लव टू यू, नो रिक्वेस्ट। और अमन, शायद आपने मेरी फोटो इमेजिन करके इसको हमें भेजा है, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। एंड बाबू अंसारी देवकली अहमदपुर बाजार बाराबंकी से लिखा, किसी भी गीत में शामिल कीजिए नसीम अंसारी, मुन्नन अंसारी, बाबू अंसारी, कुलदीप गुप्ता जी, दोबारा मेल आपका पढ़ा गया है। इसके बाद हमारे पास आ गया है प्रस्तुतकर्ता जी, ग्राम शिरटे, जिला सांगली, हनुमान शिंदे, संगीता शिंदे, इनका मेल आ गया है। समय हमारे पास बहुत कम है, 2:53:53। और इसी में बहुत सारे वो जितेंद्र नामदेव जी, बबलू नामदेव, अंजू नामदेव, ज्योत्सना नामदेव, आरोही नामदेव, सौम्या, विलेज एंड पोस्ट, खनौसी डिस्ट्रिक्ट शहडोल मध्य प्रदेश से मेल हमें किया है। बिट्टू गगनेजा जी, आपका मेल हम पढ़ चुके हैं। संजय ढिंगिया जी, नमन ढिंगिया, पार ढिंगिया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बागपत उत्तर प्रदेश से मेल करने पर। अहमद बागवान जी, बागवान मंजिल छोटी बलिया से, नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अहमद बागवान, अखलाक अहमद बागवान, आमना आमना, राबिया परी, जूही सदफ बागवान, और छतरी टोल तोगड़ा बाजार बेगूसराय से अदीबा अफसरी, इस्माइल आजाद, नन्हे राजा, फैयाज, फिरोज आलम, भाई शाह आलम, वली आलम जी। और लिखा है, इग्नोर मत कीजिएगा भाई, हम किसी को इग्नोर नहीं करते, हमारे लिए सारे लिसनर्स का वही इंपॉर्टेंस है जैसे कि किसी और लिसनर की होती है, ऐसा नहीं है कि हम किसी को इग्नोर करें। संदीप मकर जी, बोधराज करवर, आप सभी के मेल हो चुके हैं शामिल। और अब जो समय है वो हमें कह रहा है कि भाई अब आप चलिए।

लेकिन रविंद्र मोहनदास जी, आशा देवी जी, किशनगंज बिहार से हमें मेल आ गया है। आपका भी संतोष नामदेव जी का मेल आ गया है, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव, शौर्य नामदेव, और इन्होंने भी हमें बघेरा दुर्ग से मेल किया है। मुकेश कश्यप जी, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तानवी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलबीर सिंह, किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। जिला मुरादाबाद, ग्राम दूल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। तालिब अंसारी जी, राजा कटरा, बाराबंकी से। गुड आफ्टरनून शिल्पी मैम, प्लीज मेरा मेल पढ़ देना, गर्मी बहुत हो रही है, सभी लोग अपना ध्यान रखें। जी साबिर अंसारी, आसिफ अंसारी जी, आप सबकी बात को बहुत ध्यान में रखा जाएगा। शारून नूर अंसारी जी, आपका मेल हम पढ़ चुके हैं। दारा सिंह जी का मेल आ गया चौटाला हरियाणा से। दारा सिंह, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा, आप सब ने हमें मेल किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रिजवान जी, आप कैसी हैं मैम? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। परिंदा संडीला हरदोई, प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू सो मच, गुड आफ्टरनून लिखा, सो आपको भी गुड आफ्टरनून। हीरा मणि वर्मा जी, आपका मेल हम पढ़ चुके हैं। और एक नज़र डाल लेती हूँ, लगभग सबका मेल पढ़ा जा चुका। वारिस अली खान साहब लिखा है, आदाब आपको, और प्रचंड गर्मी का प्रकोप है, ऐसे में थोड़ा अपने सभी लोग ध्यान रखें, बाहर निकलते समय टावल या गमछा ले लीजिए, चश्मा पहन लीजिए, और गुजारिश है कि गाना चला दीजिए। गाना तो हम ज़रूर चलाएंगे, लेकिन अब किसकी पसंद का, क्योंकि अब आखिरी 2:56 हो गया, चलते चलते एक गाना आप ही में से किसी की पसंद का हम प्ले कर देते हैं, और अभी आपसे कहते हैं टाटा बाय बाय, क्योंकि भाई नेक्स्ट प्रोग्राम सतरंगी दुनिया में एक बार शिल्पी को फिर आपके साथ होना। सो थैंक यू सो मच, आप सबने मेल किया उसके लिए। बाय बाय, टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड 200.7।

0: वो भी ऐप से। वाह,
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम

A very good afternoon all of you. 102.2 FM Rainbow Kanpur से connect हो गए हैं आप अपनी रेडियो दोस्त आजी लक्ष्मी के साथ. Musical Infotainment Show Music Car में आप सभी का welcome. आज के show की theme हम आपको बता देते हैं, एक ऐसा खेल जो हमें सिखाता है कि life में goal तभी होता है जब पूरी team साथ में हो. जी हाँ, आज हम celebrate कर रहे हैं World Football Day, तो show में होने वाली है काफी कुछ इंटरेस्टिंग बातें, तो बने रहिए हमारे साथ. फिलहाल एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग.

चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस खेल के बारे में, इस म्यूजिकल के। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस मैजिकल गेम फुटबॉल के बारे में। दुनिया के सबसे ज़्यादा पसंद करने वाले खेलों में एक, द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। पहले पूरे वर्ल्ड में मोर देन 265 मिलियन प्लेयर्स एंड एस्टिमेटेड 4 बिलियन पीपल इस स्पोर्ट्स को देखते हैं। अराउंड 476 BC चाइना में ये स्पोर्ट इन्वेंट हुआ, जिसे कहा जाता था सुजू। इसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने फुटबॉल की पॉपुलरिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया।

वेल यू आर लिसनिंग 102.2 एफएम रेनबो कानपुर म्यूजिक का शो एंजॉय कर रहे हैं आप आज लक्ष्मी के साथ। शो में हम बातें कर रहे हैं 11 जून से होने वाले फीफा वर्ल्ड कप की और शो में हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले आप हमें ये बताइए कौन सा देश पहली बार इस टूर्नामेंट को होस्ट या को होस्ट कर रहा है। जल्दी से हमें मेल कीजिए, हमारी ईमेल आईडी है AIRKANSOMEDIA@gmail.com।

As you know, FIFA World Cup 2026 टूर्नामेंट 23rd वर्ल्ड कप होगा जो 11 जून से स्टार्ट होने वाला है और 19 जुलाई तक खेला जाएगा। पहली बार FIFA वर्ल्ड कप 3 नेशंस के द्वारा होस्ट किया जा रहा है जो 16 सिटीज़ में खेला जाएगा, जिसमें 11 यूनाइटेड स्टेट में, 3 मैक्सिको में और 2 टूर्नामेंट कनाडा में होंगे। और इस बार टीमों की संख्या में भी होगा एक्सपेंशन, यानी पहले थी 32 टीमें और जो अब बढ़ाकर हो गई हैं 48 टीम।

Music Hour program is going on and you are listening 102.2 FM Rainbow Kanpur. Show mein hum theme hamara jo hai wo hai FIFA World Cup 2026. Dosto, football hame sirf goal karna nahi sikhata, ye gir kar fir uthna, haar kar muskurana aur sabse badi baat team bankar saath chalna sikhata hai. Anushasan har goal ke piche ki gayi lagatar mehnat aur practice. यही नहीं, अपने साथी प्लेयर्स, कोच और विरोधियों का सम्मान करना भी सिखाता है. मोशन कंट्रोल करना यानी जीत में विनम्र रहना और हार में मजबूत बने रहना, यही है असली खिलाड़ी की पहचान.

दोस्तों, खेल सिर्फ खेल नहीं होते, हम खेल खेल में भी काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। हमारे शो का थीम सिर्फ फुटबॉल के बारे में आपको बताना नहीं है, बल्कि आप इसे क्यों देखें और क्यों खेलें, क्योंकि ये हमें देता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म जहां आप कुछ यूजफुल वर्ड्स भी सीख सकते हैं। टूर्नामेंट, चैंपियन, मेज़बान देश, गेम कमेंट्री देखना, प्लेयर्स इंटरव्यू, मैचेस रिपोर्ट, खेलों के बारे में आप बातें कैसे करें, सीखने के लिए काफ़ी कुछ, इवन डिफरेंट कंट्रीज़ के कल्चर्स, दुनिया भर की परंपराएँ और सबसे इम्पॉर्टेंट खेल भावना जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करती है।

Well, you are connected to 102.2 FM Rainbow Kanpur. मैं हूँ आरजे लक्ष्मी एंड प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक आज शो. दोस्तों बात कर रहे हैं हम फुटबॉल की, तो फुटबॉल के विजुअल कंटेंट, प्लेयर्स पिक्स, स्टेडियम पिक्स आपके सीखने की जो प्रक्रिया है उसको काफ़ी मज़ेदार बना देती है. ये फोटोज़ आपको वर्ड्स को याद रखने में हेल्प करते हैं. एक्टिविटीज़ के जरिए एक प्ले ऑर्गेनाइज कर सकते हैं आप, जिसमें कॉमेंट्रेटर बनना, प्लेयर्स के साथ इंटरव्यू करना, एक छोटी सी मैच रिपोर्ट लिखना भी आपको ये मैच सिखा सकता है. अंग्रेजी भाषा के शब्दों का इस्तेमाल आप इसमें बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं.

सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।

0: आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित तिवारी। यू आर लिसनिंग कानपुर शहर की म्यूजिकल हार्टबीट 102.2 FM रेनबो कानपुर।

वेलकम बैक ऑन म्यूजिक आज शो। आप सुन रहे हैं 102.2 एफएम रेनबो कानपुर। फुटबॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं जो सिर्फ गेम नहीं है, कई स्कूल सब्जेक्ट्स को भी कनेक्ट करता है। लाइक अंग्रेजी और खेल को कनेक्ट आप कर सकते हैं फुटबॉल रूल्स इन इंग्लिश, स्ट्रेटजी एंड प्रैक्टिस के बारे में बातें करिए। अंग्रेजी और भूगोल को कनेक्ट करके जाने ये देश कहाँ पर हैं, उनकी फुटबॉल हिस्ट्री के बारे में जाने। अंग्रेजी और गणित को आप कनेक्ट करके मैच के डेटा एनालिसिस को उसको एनालिसिस करके जीत की संभावनाओं की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एंड अंग्रेजी एंड सोशल स्टडी को कनेक्ट करके देखें कि खेल समाज और अर्थव्यवस्था में कैसे इम्पैक्ट करते हैं। रियली वर्ल्ड कप 2026 सीखने के लिए बेस्ट ब्रिज है।

फीफा वर्ल्ड कप 2026 जिसके जरिए हम अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, दुनिया के प्रति पर्सपेक्टिव बढ़ा सकते हैं, ग्लोबल सिटीजन की तरह सोच को अपनी डेवलप कर सकते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, इंटरव्यू प्रैक्टिस हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप करता है एंड मजबूत मूल्यों को बनाना, सच्ची खेल भावना, निष्पक्ष खेल और टीम वर्क और स्ट्रेंथ मैटर करता है। अपने कल्चर वैल्यूज़ पर गर्व करना और दूसरे कल्चर्स को अप्रिशिएट करना हम सीख पाते हैं खेलों के माध्यम से। अपने समर हॉलीडेज में पेरेंट्स के साथ पुराने वर्ल्ड कप हाइलाइट्स को देखिए, अंग्रेजी में एक मैच क्लिप कमेंट्री की प्रैक्टिस कर सकते हैं, डिजिटल लर्निंग टूल बनाइए, अंग्रेजी में फुटबॉल रूल का एक वीडियो बनाइए, एक छोटा चैरिटी प्रोजेक्ट स्टार्ट करके गरीब बच्चों को फुटबॉल खेलने में आप हेल्प भी कर सकते हैं।

द प्रोग्राम इज अबाउट टू एन एंड। तो दोस्तों, हमारी जिंदगी भी एक फुटबॉल की तरह ही है। वापसी की उम्मीद तब तक बनी रहती है जब तक आखिरी सीटी नहीं बज जाती। फुटबॉल सिर्फ पैरों से खेला जाने वाला खेल नहीं है, बल्कि दिल, मेहनत और सपनों का खेल है। और सबसे ख़ास बात पता है क्या है? ये एक छोटी सी बॉल पूरी दुनिया को कनेक्ट करती है। फिलहाल वक्त हो गया म्यूजिक आज शो में वाइंड अप का। अपनी दोस्त लक्ष्मी को दीजिए इजाज़त। टेक केयर।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम का एक और अंक लेकर आज आपकी सेवा में उपस्थित हूँ मैं दीपशिखा गुप्ता। और आज हमने अपने स्टूडियो में एक बार फिर से इनवाइट किया है शहर के जाने माने बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमितेश यादव जी को, जो कि JSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट भी काम कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे आकाशवाणी कानपुर के स्टूडियो में।
1: जी नमस्कार।
0: डॉक्टर साहब, आज हम आपसे बात करना चाहेंगे बच्चों में खान पान के महत्व के विषय में। तो सबसे पहले हमारा आग्रह होगा आपसे कि बताएं कि बच्चों में खान पान का महत्व क्या है।
1: जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चे के खान पान को हम लोगों को विशेष तरीके से ध्यान देना है, क्योंकि जो चाइल्डहुड पीरियड है वो ग्रोथ का पीरियड है।
0: जी,
1: अमूमन बच्चे के ब्रेन का विकास, मैक्सिमम विकास शुरू के 6 महीने में होता है, उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर उसके ब्रेन का विकास हो जाता है, शरीर का विकास 18 साल तक होता रहता है। और इन सब चीज़ों के लिए जो भी चीज़ चाहिए वो हमें डाइट से ही मिल सकती है। तो शुरू में 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, उसके बाद हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू करनी है। तो इस तरीके से अगर हमें चाहिए कि बच्चा हमारा दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से और सोशली भी मजबूत रहे, तो अगर हम उसके खान पान अच्छे से करेंगे, उसके शरीर में सारे पौष्टिक चीज़ जा रहे हैं, तो बच्चा आगे चल के बहुत ही मजबूत हर तरीके से हो सकता है।
0: डॉक्टर साहब, आपने बताया कि 6 महीने तक के बच्चे के लिए माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ आहार है, और इसके बाद धीरे धीरे करके हम उसको सॉलिड फूड की ओर ले जा सकते हैं। तो एक बार जब बच्चा अच्छे से सॉलिड फूड लेने लगे, तो उसके लिए जो थाली होती है, जो खाने की थाली होती है, उसका आदर्श कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए, हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को बताएं।
1: जब बच्चा 6 महीने का पूरा हो जाए, 7वें महीने में लग जाए, तभी हमें उसे पूरक आहार शुरू करना है, जिसे कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कहते हैं।
0: जी,
1: तो अभी तक तो जैसे बच्चा सिर्फ दूध पी रहा था, तो कॉम्प्लीमेंट्री शुरू करना एक अलग तरीके की चीज़ है। अगर हम अच्छे से शुरू करेंगे तो बच्चा फूड एक्सेप्ट कर लेता है। तो शुरू में हमें 2 आहार से शुरू करना होता है, और बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए जो भी आहार हम शुरू करेंगे लगातार 7 दिन तक उसको कंटिन्यू करते हैं। 7 दिन में बच्चा अच्छे से पहचानने लगता है। शुरू में 4-5 चम्मच पहले दिन खाएगा, फिर अगले दिन और बढ़ेगा, इस तरीके से 7 दिन में लगभग आधी कटोरी खाना शुरू कर देता है। फिर 7 दिन बाद हम दूसरा आहार जोड़ते हैं, फिर अगले 7 दिन बाद तीसरा आहार जोड़ते हैं। जैसे पहले हम सबसे पहले दाल से बताते हैं कि दाल शुरू करें बिल्कुल गाढ़ी, सबसे पहले क्या शुरू करना है, उसके बाद कैसा हो, तो वो बिल्कुल रबड़ी की तरह गाढ़ा हो। अगर हम चम्मच से लेके उसको कटोरी में करें तो चम्मच से चिपकता हुआ, चम्मच का शेप लेता हुआ वो गिरे, और नमक मिर्च मसाला चीनी ये सब बहुत ना के बराबर हो, तो नेचुरल स्वाद लेने वाला खाना बच्चे जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से 2 आहार से शुरू करेंगे। जब बच्चा 1-2 महीने में वो दोनों आहार बढ़िया से खाने लगेगा, तब हम बीच में 8 महीने पे उसको तीसरा आहार भी जोड़ देते हैं, और साथ में 2 स्नैक्स भी जोड़ते हैं। इस तरीके से 8 महीने के बच्चे को कम से कम 5 बार हमें आहार देना है, बाकी बीच बीच में उसको पानी पिलाना है। जब भी बच्चा खाना खाए उसके बाद पानी देना है, 7-8 बार पानी पिलाना है, और माँ का दूध कंटिन्यू रखना है, और ऊपर का दूध भी 2-3 बार हम लोग बच्चे को पिलाएंगे। और बच्चे की थाली में ये ध्यान देना है कि वो कलरफुल हो
0: जी।
1: उसकी थाली में कम से कम 5 कलर की चीज़ें दिख रही हों, जैसे कि सफ़ेद रोटी, मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल, येलो दाल, और नींबू का प्रयोग करें। और इस तरीके से हम कोशिश करेंगे कि 5 अगर कलर थाली में आ जाते हैं तो जितने भी पौष्टिक तत्व तो बच्चे को चाहिए वो उसके शरीर में पहुँच जाते हैं। तो इस तरीके से हमें एक बच्चे को डाइट का संतुलन बना के खिलाना है।
0: डॉक्टर साहब, एक बढ़ते हुए बच्चे में रोजाना की प्रोटीन रिक्वायरमेंट लगभग कितनी होती है, और इसे कैसे पूरा करना चाहिए, हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं।
1: जी, शुरू में 1 से 1.5 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। जब बच्चा ग्रोइंग एज में होता है, एडोलेसेंट एज ग्रुप में,
0: 1 से 1.5 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी मास,
1: पर केजी पर डे
0: जी।
1: उसके बाद जब वो एडोलेसेंट एज ग्रुप में हो जाता है, 11 साल के ऊपर होता है, तो उसको 1.5 से 2 ग्राम पर केजी पर डे प्रोटीन चाहिए। तो इस तरीके से प्रोटीन से बनी हुई चीज़ें दाल, चावल, पनीर, मीट, ये सब हम उसके खाने में ऐड करना है, ताकि उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन जो उसकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी है उसके मिल सके।
0: जी डॉक्टर साहब, बच्चों के आहार के बारे में अभी बहुत सारी बातें आपसे आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे श्रोताओं को आज अपनी पसंद का कोई एक गीत सुनवा दें।
1: ये छैया छैया

0: दिल से फिल्म से ये एनर्जेटिक सा गाना सुनकर हम वापस आ चुके हैं अपने स्टूडियो में, जहां हम आज बात कर रहे हैं शहर के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर अमितेश यादव जी से। डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए हम जानना चाहेंगे कि बच्चे के लिए आहार के साथ साथ वैक्सीनेशन का महत्व क्या है।
1: हमारा उद्देश्य होता है कि बच्चा बीमारियों से बच के रहे
0: जी,
1: अगर बीमार हो भी रहा है तो आसानी से सही हो जाए, और बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो, वजन अच्छा हो, हाइट अच्छी हो,

0: पढ़ने में होशियार हो, मतलब बच्चे का संपूर्ण विकास हो, तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ उसके आहार के बारे में बताया गया। अब जितना आहार जरूरी उतना ही जरूरी टीकाकरण भी है, क्योंकि टीके से हम बच्चे को बीमारियों से बचा सकते हैं, बीमारी से हो रहे नुकसान से बचा सकते हैं। तो टीकाकरण दो तरीके का है, एक गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, प्राइवेट सेक्टर में होता है। टीके से हम बहुत सारी बीमारियों से बच्चे को बचा सकते हैं। अभी देखा गया कि पोलियो का रिस्क भी अब भारतवर्ष में लगभग ना के बराबर हो गया है, तो ये टीके का कारण ही है।
1: जी
0: एक स्मॉल पॉक्स बीमारी थी जो अब पूरे वर्ल्ड में नहीं है, तो टीकाकरण के कारण ही वो बीमारी आज नहीं है। कोरोना जैसी बीमारी से भी हम टीकाकरण के कारण ही पूरी दुनिया को बचा सके हैं। तो बच्चे के स्वास्थ्य के लिए टीकाकरण सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है।
1: तो हम अपने सभी सुनने वाले श्रोताओं से अपील करेंगे कि बच्चों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि खान पान, आहार, इन सब का जितना महत्व है, टीकाकरण का महत्व भी उसी के बराबर ही है। और डॉक्टर साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे ये हमारा सवाल रहेगा कि आजकल छोटे बच्चों में फास्ट फूड के प्रति बहुत दीवानगी बढ़ती जा रही है। वो नॉर्मल जो घर का खाना है वो खाना पसंद नहीं करते हैं, फास्ट फूड की मांग करते हैं, कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर, इन सब की मांग करते हैं। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं पेरेंट्स?
0: तो पहली चीज़ तो ये कि ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये शरीर में जैसे ही जाती है तो एकदम से शुगर का लेवल बढ़ जाता है। इसमें किए गए जो खाद बनाने की चीज़ें हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं।
1: जी
0: ऐसे बच्चों में आगे चल के हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। तो रेगुलर वे में हमें इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। अगर बच्चे जिद कर रहे हैं तो कोशिश हमें करना है कि घर में बनाकर ऐसी चीज़ों को हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार या किसी अच्छे ओकेजन पे बच्चे को दे सकते हैं। बाकी बाहर की चीज़ें पूरी तरीके से अवॉइड करनी है। और ये कोल्ड ड्रिंक है, आइसक्रीम है, ये सब गर्मी में तो और ज़्यादा खतरा कर देती हैं, डिहाइड्रेशन और ज़्यादा करती हैं। तो इस तरीके के बाहर की चीज़ों को अवॉइड ही करना है।
1: जी डॉक्टर साहब, आपने अभी बताया कि फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक, ये सब जो चीज़ें हैं, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से बच्चों में ओबेसिटी और डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स को भी ये कॉज करता है। तो हम ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में जानना चाहेंगे आपसे जो हम बच्चों को दें जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है।
0: जी घर की बनी चीज़ें हैं जैसे दाल, चावल, रोटी, सब्जी और जो मक्के से बनी चीज़ें हैं। तो घर में जो भी हम लोग खाना बनाते हैं उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स नॉर्मल होता है, उतना ज़्यादा नहीं होता है, धीरे धीरे अब्जॉर्ब होती हैं चीज़ें।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा बच्चों में क्या सप्लीमेंट्स की आवश्यकता होती है या खान पान के माध्यम से ही उन्हें पूरी तरीके से न्यूट्रिशन पहुंचाया जा सकता है?
0: जी जैसे जो बच्चे शुरू के 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध पीते हैं उनको विटामिन डी की ज़रूरत पड़ती है,
1: जी
0: और जो बच्चे कम वजन के होते हैं, कम समय के पैदा हो जाते हैं, उन्हें आयरन की भी ज़रूरत होती है। विटामिन डी तो पैदा होने के बाद ही शुरू कर देते हैं जब बच्चा माँ का दूध अच्छे से पीने लगता है, और आयरन को लगभग 6 वीक पे शुरू करते हैं। और आगे देखा गया है कि बच्चों में कीड़े होने का रिस्क बढ़ जाता है, तो डीवर्मिंग एनुअली करना पड़ता है।
1: जी
0: गवर्नमेंट सेक्टर में, स्कूलों में भी एल्बेंडाजोल नाम की टेबलेट दी जाती है। दूसरा, बच्चे खाना अच्छे से नहीं खाते हैं, उनके खाने का तरीका अच्छा नहीं होता है, हाइजीन नहीं मेंटेन होता है, तो देखा गया है बच्चों में खून की कमी होने का रिस्क रहता है। तो इसलिए उनको बीच बीच में आयरन की टेबलेट भी देनी पड़ती है। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में मंथ में एक बार आयरन की टेबलेट देने का भी प्रावधान है। तो अभी बच्चे का रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए। कुछ बच्चे जो आजकल देखा गया आउटडोर एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करते, उनमें विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो अगर बच्चों के पैरों में दर्द है या सही से चल नहीं पा रहे हैं या प्रॉब्लम होता है, उनमें विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बीच बीच में बच्चे को रेगुलर चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है।
1: डॉक्टर साहब, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आज आपने हमारे श्रोताओं को बताई, जिनके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं हमारे स्टूडियो में आने का, हमसे इतनी सारी बातें करने का। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
1: कार्यक्रम के आज के इस अंक का सफर यहीं तक, अगले किसी अंक में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत दीजिए मुझे यानी दीपशिखा गुप्ता को। नमस्कार, जय हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेल्थ मैगजीन।
1: आप सुन रहे हैं 102.2 FM रेनबो कानपुर। लीजिए सुनिए अपना चहेता कार्यक्रम हेलो कानपुर।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम हेलो कानपुर।

0: गुड इवनिंग, वेलकम, स्वागत, अभिनंदन है आपका आज की इस खास शाम में। मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो हम सफर कौसर, कबूल कीजिए मेरा प्यार भरा सलाम नमस्ते, सलाम नमस्ते। ये प्रोग्राम है हेलो कानपुर, जिसमें बातें होंगी दिल की, मौसम है सुरीले गीतों का, इसमें गूंजेंगे सिर्फ अपने शहर की ही नहीं बल्कि प्रदेश और देश की धड़कनों के सुर। जैसे ही आवाज आएगी हेलो कानपुर, ये आपकी आवाज का ही है असर, जो एक बार फिर शुरू हो गया है हेलो कानपुर का ये सफर।
1: तू सफर मेरा है, तू ही मेरी मंजिल।
0: तो बस अपना प्यार और अपना साथ यूं ही बनाए रखिए, आकाशवाणी के जरिए मुलाकातों का ये सिलसिला यूं ही चलाए रखिए। बिल्कुल जनाब, तो शुरू करते हैं आज की मुलाकातों और बातों का सिलसिला और लेते हैं आज की पहली कॉल। हेलो कानपुर।
2: हेलो कानपुर, कौशल दीदी को प्यार भरा नमस्ते।
0: जी आपको भी हमारा प्यार भरा नमस्ते। सच में बड़े ही खुश आप नजर आ रहे हैं हमें।
2: देखो खुशी अपनों से ही आती है ना, जो अपने लोग होते हैं उनसे ज्यादा ही खुशी मिलती है। तो फोन भी ट्राया आपसे बात, मतलब फोन ट्राई किया और आपसे बात हो रही तो बहुत अच्छा लग रहा है।
0: जी हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं ये भी बताइए।
2: जी मैं राजेश विद्यार्थी बोल रहा हूँ, रहने वाला तो कुर्सा ठरोई का हूँ, बट इस समय मोदीपुरम मेरठ से बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रेडियो ने ऐसा साथ बना दिया है ना, न्यूज ऑन AIR ऐप, जिसके माध्यम से कहीं भी, मतलब देश दुनिया में कहीं भी कोई भी हो वो सुन सकता है।
0: जी बहुत सारी सुविधाएं हो गई है कि अब श्रोता हमको कहीं से भी सुन सकते हैं।
2: बिल्कुल बिल्कुल।
0: राजेश जी क्या करते हैं आप?
2: मैं एक डॉक्टरेट डिग्री कर रहा हूँ, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में है पढ़ाई कर रहा हूँ। तो वही से भी मैं खाली था, अभी तो एग्जाम है लगभग शाम को,
0: जी
2: एग्जाम देना, उससे पहले मैं अभी ऐसे फोन ट्राई किया, आपसे बात हो रही तो बहुत अच्छा लगा।
0: एग्रीकल्चर की आपने बात करी है तो पर्यावरण के बारे में बताइए कि आजकल जो पर्यावरण इतना हमारा जो दूषित हो रहा है, पहले कितनी हरियाली हर जगह देखने को मिलती थी लेकिन आजकल बहुत ही रेयर होता है कि पेड़ दिखे, और आजकल इतनी गर्मी में एक पेड़ की छाया ही देखे कितना सुकून देती है, लेकिन वही पेड़ अब काटे जा रहे हैं, तो कुछ बताइए इसके बारे में।
2: दीदी आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समय के अनुसार आदमी को बदलना चाहिए, क्योंकि हर जगह पे क्या है कि हम लोग देखते हैं पेड़ लगाने वाले तो बहुत कम हैं और उसको काटने वाले ज्यादा हैं, लेकिन क्या है जब आबादी बढ़ती है तो संभवतः आप ही समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो गर्मी ज्यादा बढ़ेगी, जब गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो संभवतः हम लोगों को समस्याएं होंगी। तो इसके लिए क्या है कि हमें अक्सर अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए, क्योंकि जो पेड़ लगाने का समय होता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच में, जो वृक्षारोपण सप्ताह मनाया जाता है, उस समय उस बीच में अगर हम पेड़ पौधे लगा रहे हैं तो ज्यादा, मतलब 100% उनको, मतलब की ग्रोथ होने की संभावना पूरी रहती है, क्योंकि पौधे मरते नहीं है। तो हमें गर्मी से बचना है तो कोई पेड़ पौधे लगाने हैं, और जहां तक है कि इस समय फ्यूल की बात करें तो इससे बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस हो रही है, तो उससे भी हमें बचाना है। अगर एनर्जी लॉस होने से बचाना है तो हमें पेड़ पौधे हर जगह पे लगाने पड़ेंगे।
0: बिल्कुल, और ये तो एक अभियान भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने चलाया था, एक पेड़ माँ के नाम।
2: बिल्कुल दीदी,
0: तो आपने बड़ा ही अच्छा संदेश दिया है आज हेलो कानपुर के जरिए हमारे और दूसरे श्रोताओं को। राजेश जी आप ये बता दीजिए कि गाना कौन सा सुनेंगे?
2: मेरे ख्वाबों में जो आए, इस तरीके के गाने बोल रहे हैं, वो अगर मिल जाए सुना दीजिएगा।
0: अच्छा आपके ख्वाबों में तो मुझे लगता है ज्यादातर पर्यावरण ही आता होगा
2: दीदी, आते तो सब लेकिन क्या करें, सोच रहे हैं आते तो सब हैं, लेकिन वही हाल है कि पर्यावरण के प्रति ज्यादा जागरूक रहना है दीदी।
0: तो बड़ी अच्छी बात है ना, इसीलिए तो आप इतना जागरूक हैं।
2: दीदी है जागरूक, पेड़ पौधों से मोहब्बत है, अपनों से मोहब्बत है,
0: सभी को पेड़ पौधों से मोहब्बत करनी चाहिए तभी वो आपसे मोहब्बत करेंगे।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो चलिए आपको ये गाना सुनवा दिया जाए।
2: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जरा नवाजी सुनाइए दीदी।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और अपनी जगह का नाम बताइए जहाँ से आप हमसे बात कर रहे हैं।
1: चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा आपसे मुखातिब है।
0: बहुत बहुत आपका स्वागत है, वेलकम है एफएम रेनबो के इस हेलो कानपुर प्रोग्राम में।
1: और बिल्कुल आपका भी बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि मेरी पहली बार मैंने कॉल मिलाई और फोन भी मिल गया और पहली बार कानपुर पे मैं बात भी कर रहा हूँ।
0: आप पहली बार बात कर रहे हैं इसलिए आपका डबल स्वागत है।
1: चलो जी, हमारी खुशकिस्मती है ये कि इतनी मोहब्बत मिल रही है।
0: जी कैसे हैं सतीश जी?
1: बिल्कुल ठीक है जी, आप लोगों की दुआएं हैं, अच्छी जिंदगी बसर हो रही है। जो
0: जी
1: ऊपर वाले ने सांसें दी हैं, जो टाइम दिया है, उसकी योजना के हिसाब से बिल्कुल सही चल रहा है।
0: बिल्कुल सही चल रहा है और हमेशा सही चले ऐसे ही हम विश करते हैं।
1: आमीन, थैंक यू।
0: सतीश जी क्या करते हैं आप?
1: चंडीगढ़ में अपना व्यवसाय है जी, मैं रियल स्टेट का काम करता हूँ।
0: मतलब इमारतें बनाते हैं?
1: हाँ जी, बस कोई प्लॉट वगैरह अपना ही खरीद लेते हैं, उस पे बिल्डिंग बना के सेल कर देते हैं, तो साल में 2-3 बिल्डिंगें बन जाती हैं।
0: अरे वाह, बहुत अच्छा आपका काम है।
1: बस जी बिजी रहते हैं, साथ में आकाशवाणी के साथ जुड़े रहते हैं और आकाशवाणी पे ऐसे लगा लो भी हमें काम करने की पूरी ऊर्जा देती है।
0: बिल्कुल ऊर्जावान तो काम भी है आपका। जब आप किसी बिल्डिंग है उसको शेप देते हैं, आकार देते हैं, उसको एक नया रूप देते हैं किसी प्लॉट को, उसमें सबसे पहले

0: किन किन बातों का आप ख्याल रखते हैं?
1: तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखते हैं जी, जब भी बिल्डिंग की शुरुआत करते हैं तो परमात्मा का बिल्कुल नाम लेके शुरुआत करते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि एक बिल्डिंग अच्छी बने, एक जिसको बना के दे रहे हैं जो खरीदेगा उसके लिए एक पहचान बने, शहर के लिए भी पहचान बने, और जिसकी इस पे लगी एक एक जो ईंट है वो रहमतों से भरी हो, तो दिल में यही दुआ रहती है। तो परमात्मा का जब साथ होता है तो बिल्डिंग अपने आप ही।
0: बहुत ही खूबसूरत आपके विचार भी हैं।
1: सबसे बड़ी बात ये है जब हम ईमानदारी से नेक नीति से कोई भी काम करते हैं ना तो हमें इधर उधर झांकना या देखना नहीं पड़ता, परमात्मा की ब्लेसिंग मिलती है और जो उस बिल्डिंग में रहेगा जो उसको इस्तेमाल करेगा वो ताउम्र भर वो उसके लिए दुआ भी करेगा, और दुआएं तो आपको पता ही है जिंदगी में बहुत कारगर सिद्ध होती हैं।
0: बिल्कुल, दुआएं कभी भी खाली नहीं जाती, दुआएं ऐसी होती हैं कि वो लगती जरूर हैं। बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी, यानी कि जो इमारतें हैं ना वो इमारतों के साथ रिश्ते भी आप बनाते हैं। आप FM रेनबो कानपुर से कब से जुड़े हुए हैं?
1: रेनबो कानपुर से मैं काफी टाइम से जुड़ा हूँ, करीब 7-8 साल से जुड़ा हुआ हूँ, और बराबर मैं जो फरमाइशी प्रोग्राम है मैं ईमेल भी करता हूँ, और जब भी टाइम मिलता है ना
0: जी बराबर हम लोग आपकी ईमेल्स पढ़ते हैं। आपने जैसे ही अपना नाम बताया और मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हो गया, क्योंकि हम अपने श्रोताओं के नाम जो है ना वो एकदम दिमाग में बसा कर रखते हैं, फील्ड है सबके नाम। तो बस आपके जो रिश्ते मजबूत हम लोगों के साथ बने, आकाशवाणी के साथ बने, इसको यूं ही और मजबूती देते रहिए। फिलहाल बताइए गाना आज कौन सा सुनेंगे?
1: गाना जी आप लगा दीजिए अपन्ना की तमन्ना, बस हीरा मुझे मिल जाए। दिल से शुक्रिया बहना, आपने मेरी कॉल ली, आपने मेरे से बात की और मैं मेरे लिए आपने मेरा दिन बना दिया, तो इसका सुकून इसका जो नशा है मेरे को काफी लंबे टाइम तक रहेगा
0: जी। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय
1: बाय बाय।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर, गुड मॉर्निंग मैम।
0: वेरी गुड मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मेरी किससे बात हो रही है?
1: तनु शर्मा बोल रही हूँ मैम, दुबग्गा लखनऊ से।
0: तनु जी, मोस्ट वेलकम। हेलो कानपुर प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैम थैंक यू।
0: तनु, क्या करती हैं आप?
1: कुछ नहीं मैम, इस समय तो घर पे रहती हूँ।
0: इस समय घर पे रहती हैं? और इस समय घर पे रहना भी चाहिए क्योंकि इतनी तो गर्मी पड़ रही है। इस टाइम तो वैसे भी जो बाहर जिनका काम है वो भी बहुत मुश्किल से निकल रहे हैं। वैसे क्या करती हो आप?
1: वैसे कुछ नहीं, बस घर पे ही वैसे रहती हूँ और घर का काम हम कर लेती हूँ।
0: पढ़ाई वगैरह करी?
1: पढ़ाई हो गई है, हमारा ग्रेजुएशन हो गया है।
0: अच्छा, उसके बाद आगे कुछ करने के लिए नहीं सोचा?
1: हाँ करेंगे हम, GNM करेंगे हम।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है क्योंकि पढ़ाई को सार्थक करना है तो आगे भी कुछ उसका करना चाहिए यूज, है ना? और वैसे भी पढ़ाई तो कभी बेकार जाती ही नहीं है।
1: वो नहीं जाती कभी बेकार।
0: FM रेनबो कब से सुन रही हैं आप?
1: 2020 से सुन रही हूँ मैम।
0: कैसा लगते हैं आपको इसके प्रोग्राम?
1: अच्छे लगते हैं।
0: कौन कौन से प्रोग्राम्स सबसे ज्यादा पसंद आते हैं?
1: हम नवा और आपकी आवाज मैम बहुत अच्छी लगती है।
0: तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन ये बताइए कि जब आप 2020 से सुन रही हैं और अब 2026 चल रहा है, इन 6 सालों के बीच आपको तब के FM रेनबो के कार्यक्रम में और आपके कार्यक्रमों में कुछ फर्क नजर आया?
1: कुछ भी नहीं मैम।
0: कुछ नहीं? अच्छा, हमारे बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए हैं कि जो बढ़ गए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका थोड़ा सा अंदाज बदल दिया गया है ना?
1: जी मैम, बदलाव आया है। अच्छा आया है।
0: अच्छा बदलाव आया है, मतलब आप लोगों को पसंद आया?
1: जी बहुत पसंद आया।
0: चलिए ऐसे ही आगे और भी इम्प्रूवमेंट इसमें होते रहेंगे और आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हम लोग लाने की कोशिश हमेशा से करते हैं और करते रहेंगे। तनु और बताओ, घर में कौन कौन है?
1: मैं हूँ, मम्मी पापा है, जेठ जिठानी है और हस्बैंड मेरे है, मेरा एक देवर है।
0: अरे वाह, तब तो बड़ी अच्छी फैमिली है, पूरा खुशहाल परिवार है।
1: आना कभी घूम जाना के लखनऊ भी मैम। आप
0: बिल्कुल आएंगे, लखनऊ घूमने आएंगे तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। गाने किस तरह के सुनना पसंद करती हैं?
1: साजन मूवी का मैम।
0: 90s के गाने हमें लगता है आपको ज्यादा पसंद है।
1: तू शायर है ये वाला गाना।
0: तू शायर है तो किससे कहना है आपको कि तू शायर है, मैं तेरी शायरी, किसी से कहना है?
1: जी मैम, अपने हस्बैंड को सुना रही हूँ ये सॉन्ग।
0: अरे वाह, वही तो हम आपके दिल से निकलवाना चाहते थे कि किसको सुनवा रही है ये सॉन्ग।
1: और मैम आपको भी सुनवाएंगे।
0: अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमको सुनवा रही हैं, लेकिन मेन आप अपने पति देव को इस गाने को सुनवा रही हैं और हम पहुंचा रहे हैं ये गाना। ओके, बाय बाय।

0: हेलो कानपुर।
1: ना गीत लिख रहा हूँ ना गजल लिख रहा हूँ, ना गीत लिख रहा हूँ ना गजल लिख रहा हूँ, ना मोहब्बत भरी मैं नजर लिख रहा हूँ। कुछ लिखता हूँ तो लोग समझ लेते हैं शायरी उसको, मैं अपनी जिंदगी का कुछ सफर लिख रहा हूँ।
0: और आप जो भी लिख रहे हैं बहुत ही बेहतर लिख रहे हैं
1: जी। थैंक यू मैम। कैसे हो मैम आप?
0: जी हम बहुत अच्छे हैं। आप जल्दी से अपना नाम और अपनी जगह का नाम बताइए और कैसे हैं ये भी बताइए।
1: मैं ग्राम पोस्ट वक्त डिस्ट्रिक्ट बदायूं तहसील दातागंज से विमल ठाकुर बात कर रहा हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और आकाशवाणी कानपुर सुनकर और भी ठीक हो।
0: जी आकाशवाणी कानपुर बिल्कुल एक मेडिसिन की तरीके ही काम करती है।
1: जी बिल्कुल, सभी श्रोताओं के बीच में अच्छी अच्छी बातें लेकर आप लोग आते हो, अच्छे अच्छे गीत।

0: के साथ अगर व्यक्ति स्वस्थ ना हो तब भी स्वस्थ हो जाएगा।
1: वाह वाह, क्या बात है। तभी तो मैंने बोला कि आकाशवाणी कानपुर हमारे श्रोताओं के लिए बिल्कुल मेडिसिन का काम करती है। कितने वर्षों से आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से?
0: कानपुर तो सुनते करीब 3-4 साल हो गए।
1: 3-4 साल हो गए आप?
0: जी, जी,
1: और
0: जी,
1: आपको
0: जी।
1: मालूम होना चाहिए कि आकाशवाणी अपने 90 वर्ष पूरे करने का पूरी तरीके से सेलिब्रेशन कर रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, बहुत इस खुशी की बात है कि हम सभी लोग आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने को और तमाम श्रोता रेडियो को सुनकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं और अच्छी अच्छी बातों के साथ हर एक नया वचन लेते हैं, क्योंकि रेडियो ही वो हमें सीख देता है अच्छे आगे चलने की जानकारी, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी।
1: बहुत अच्छी बातें आपने की है। और 3-4 सालों का ये जो जुड़ाव है, जब आपने उसमें इतना सीखा है, तो अगर आप
0: मैम आपके यहाँ से कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जब भी समय मिलता है हम जरूर सुनने की कोशिश करते हैं।
1: अच्छा, FM रेनबो को आप कितने सालों से सुन रहे हैं?
0: मुझे 3 हैं और सुन भी रहा हूँ, क्योंकि लगातार कार्यक्रम जो फरमाइशी प्रोग्राम रहते हैं मैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करता हूँ। आपकी

0: जब आपने उसमें इतना सीखा है तो अगर आप
1: मैम आपके यहाँ से कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, जब भी समय मिलता है हम जरूर सुनने की कोशिश करते हैं।
0: अच्छा FM रेनबो को आप कितने सालों से सुन रहे हैं?
1: मुझे 3 गए हुए हैं और सुन भी रहा हूँ, क्योंकि लगातार कार्यक्रम जो फरमाइशी प्रोग्राम रहते हैं उनमें जरूर पार्टिसिपेट करता हूँ। आपकी पसंद हो या मैसेज के ऊपर एक फरमाइशी कार्यक्रम आता था रात में, वो भी कार्यक्रम सुनता हूँ।
0: मतलब आपको फरमाइशी प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उसमें तमाम श्रोता जुड़ते हैं, अपनी जगह का नाम लिखते हैं, फिर अपने अल्फाजों को आप लोगों तक भेज कर और एक आकाशवाणी के जरिए हर घर पर पहुंचा देते हैं,
0: और फिर आपके उन अल्फाजों को हम पढ़ते हैं और दूसरे श्रोताओं तक पहुंचाते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल मैम, और आपकी खूबसूरत आवाज गूंजती है लगातार रेडियो के जरिए, तो दिल में कुछ अलग ही हलचल हो जाती है।
0: तो यही है हमारे आकाशवाणी का जादू।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल। और मैम आपके यहाँ से बात मैं कहना चाहूंगा, जितने भी प्रेजेंटर हैं सभी की खूबसूरत आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है, सभी की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं काफी बार हेलो कानपुर में कॉल भी किया है और आज पहली दफा आपसे जुड़े हैं, मतलब आपका नाम मुझे नहीं पता पर आपसे पहली बार जुड़े।
0: जी मैं कौसर बोल रही हूँ।
1: जी जी अरे बिल्कुल मैम, आपका ही प्रोग्राम सुनते हैं हम, नवाज आज आता है प्रोग्राम। जी जी जी
0: विमल जी, किस तरीके के गाने सुनना ज्यादा पसंद करते हैं?
1: मैम मुझे ज्यादा से ज्यादा 1990 के जो गीत है मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सभी गीत बहुत अच्छे लगते हैं।
0: आज कौन सा गाना सुनेंगे?

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर मैम, अस्सलाम वालेकुम।
0: जी वालेकुम अस्सलाम। हम कौन जनाब से बात कर रहे हैं?
1: जी मैम, मैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी बात कर रहा हूँ मैम।
0: वक्कार जी, आपका हेलो कानपुर प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। और आपकी, जहाँ तक नाम से मुझे याद आ गया कि आपकी ईमेल्स काफी आती हैं।
1: बिल्कुल मैम, और ईमेल्स वाले में सभी प्रोग्राम में ईमेल्स भेजता हूँ और साथ ही साथ खत भी भेजता हूँ, लेकिन हेलो कानपुर में मेरी आज ये पहली कॉल है।
0: हेलो कानपुर में आपकी पहली कॉल है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
1: जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आज कि मेरी कॉल आज लगी है। काफी बार मैंने पहले भी ट्राई किया लेकिन मेरी कॉल लगी नहीं मैम।
0: तो आज लग गई, आपका लक आज काम कर गया।
1: बिल्कुल मैम।
0: वो होता है ना, लक बाई चांस।
1: जी मैम, बिल्कुल मैम। और आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और वैसे मैं आपका रेगुलर लिसनर हूँ और काफी मतलब समय से जुड़ा हुआ हूँ
0: जी।
1: और सभी प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं आपके यहाँ से।
0: तो कितने साल से जुड़े हुए हैं?
1: हाँ समथिंग मैम, 2-1 साल से तो मैं सुन ही रहा हूँ प्रोग्राम आपके।
0: अच्छा, तो FM रेनबो के कौन कौन से प्रोग्राम्स आपके दिल से ज्यादा कनेक्ट करते हैं?
1: हाँ मैम, एक तो आपकी पसंद प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है
0: जी,
1: और दूसरा रात्रि 10 से 11 में जो आता है आपकी फरमाइश
0: जी, वो विविध भारती पर आता है।
1: हाँ विविध भारती पर आता है, वो भी अच्छा लगता है। और हेलो कानपुर तो अपना है ही फेवरेट
0: जी। वैसे वक्कार जी, आप करते क्या है?
1: मैं मिठाई का काम करता हूँ, मिठाई बनाता हूँ, कारीगर हूँ मैं।
0: मिठाई बनाते हैं? कौन कौन सी मिठाई बनाने में आपने महारत हासिल करी है?
1: सभी मिठाई बना लेता हूँ, सबसे ज्यादा गुलाब जामुन बनाते हैं
0: जो कि मेरा बहुत ही पसंदीदा स्वीट डिश है।
1: अरे वाह मैम, बहुत अच्छे। कभी आइए आप शेरपुर।
0: जी बिल्कुल आएंगे, और गुलाब जामुन का नाम सुनते ही वैसे भी मेरा मुंह एकदम मीठा हो चुका है।
1: इस समय तो हमारा बहुत ही ज्यादा मतलब काम वो हो जाता है क्योंकि ईद की तैयारियां करनी होती है, बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी होती है।
0: तो आपकी शॉप ये कितने दिन से आप चला रहे हैं?
1: कम से कम 12-13 साल हो गए।
0: 12-13 साल, कहाँ से ये दिमाग में आया कि हमें मिठाई की दुकान खोलनी है?
1: ये काम जो हमारा है ना, एक जैसे कि कहते हैं कि पहले से चला रहा है, हमारे जो पुरखों से चला रहा है।
0: पुरखों से आपका खानदानी काम है ये?
1: खानदानी काम जिसे कहते हैं, जैसे दादा, परदादा, चाचा, ताऊ सभी करते हैं
0: जी जी।
1: तो एक खानदानी काम है
0: जी,
1: और हमारे बड़े भी करते थे तो बस हम उसी में थोड़ा थोड़ा करके हम भी सीख गए।
0: तो आज गाना कौन सा सुनेंगे?
1: मैम आज मैं सुनूंगा, फिल्म का नाम है गदर 2। फिर से

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और कहाँ से बात कर रहे हैं वो भी बताइए।
1: मैं जीशान वारसी बात कर रहा हूँ, ग्राम संधोली, तहसील मीरगंज, जिला बरेली, यूपी से।
0: जीशान जी, कैसे हैं आप?
1: मैं एकदम बहुत बढ़िया हूँ, आप बताएं, आपके यहाँ आकाशवाणी में सब लोग कैसे हैं?
0: हमारे यहाँ आकाशवाणी में हम सब बहुत अच्छे हैं। बताइए क्या करते हैं आप?
1: मैं टेलरिंग का काम करता हूँ और उसके साथ साथ आकाशवाणियों से कनेक्ट रहता हूँ, आकाशवाणियों के प्रोग्राम सुनता हूँ।
0: ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसमें तो आकाशवाणी के सारे प्रोग्राम सुनते सुनते आपका काम भी बहुत आसान हो जाता होगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेडियो जो है बहुत अच्छा माध्यम है और हमारा काम भी होता रहता है और मनोरंजन भी होता रहता है साथ साथ।
0: किस तरीके के आप कपड़ों की सिलाई करते हैं?
1: मैं लेडीज टेलर हूँ, लेडीज कपड़े सिलता हूँ।
0: जो टेलरिंग की आपकी शॉप है उस पर जो लोग आती हैं लेडीज, वो किस तरीके के डिजाइन ज्यादा पसंद करती हैं? किस तरीके का फैशन आजकल चल रहा है, ट्रेंडिंग में है, जरा कुछ बताइए।
1: क्या है, फैशन तो बदलता रहता है,
0: बदलता रहता
1: कभी
0: है।
1: कुछ है कभी कुछ है,
0: प्रेजेंट टाइम
1: लेकिन
0: में क्या चल रहा है,
1: हाँ
0: किस तरीके से वो कौन से लुक को पसंद कर रही है, कौन सा डिजाइन पसंद कर रही है?
1: इस टाइम अगर कहा जाए तो फ्रॉक और ट्राउजर ये ज्यादा चल रहा है हमारे साइड में। टॉप
0: आपकी शॉप ये कब से है?
1: तकरीबन करीब 15 साल हो चुके होंगे।
0: जी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप आकाशवाणी से कब से जुड़े हैं जरा बताइए हमें भी।
1: आकाशवाणी से जुड़े हुए मुझे 18 साल पूरे हो गए, मैं सन 2007 से जुड़ा था।
0: अच्छा, तो आपकी लाइफ में कोई भी रेडियो या आकाशवाणी से जुड़ी ऐसी कोई याद है जो बिल्कुल कभी भूलने वाली ही ना हो?
1: जी ऐसी बहुत सारी यादें हैं जो कभी नहीं भूल पाएंगे हम, क्योंकि आकाशवाणी से हम कनेक्ट रहते हैं और आकाशवाणी को हम बहुत दिल से चाहते हैं, तो आकाशवाणी के प्रोग्रामों में भी जाना होता है हम लोगों का,
0: जी
1: तो आकाशवाणी से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं जिनको बता पाना बहुत
0: बहुत
1: मुश्किल है,
0: सारी यादें
1: क्योंकि
0: हैं,
1: जी जी बहुत सारी यादें हैं।
0: यादों का एक पिटारा है आपके पास।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: अच्छा, आज का जो ये वक्त चल रहा है, ये डिजिटल टाइम चल रहा है ना,
1: जी
0: तो रेडियो की बड़ी अहमियत आज भी है और अब
1: जी
0: तो ऐप के माध्यम से हर जगह सुना जाता है आकाशवाणी को। तो मोबाइल स्क्रीन जो है ना वो थका सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो रेडियो की आवाज है वो कभी नहीं थकाती। आप मानते हैं इस बात को?
1: बिल्कुल मानता हूँ, यूट्यूब का जमाना है
0: जी
1: तो यूट्यूब से मनोरंजन किया जा सकता है, लेकिन आकाशवाणी से जो नगमे बजाए जाते हैं
0: जी
1: उसका अपना अलग ही मजा है और अलग ही अंदाज है।
0: जी बिल्कुल, एक सुकून देता है।
1: बिल्कुल
0: अच्छा, कोई ऐसा कार्यक्रम जो आपको बहुत अच्छा लगा हो?
1: जी, कार्यक्रम मुझे हेलो कानपुर में अच्छा लगता है और बाकी जो वार्ताएं आकाशवाणी केंद्रों से प्रसारित होती हैं।

0: की जाती हैं, वो उनसे हमें काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मनोरंजन तो हम कर ही लेते हैं, लेकिन उसमें जो किसी खास मौके पर जो जानकारियां मिलती हैं वो ज्यादा लाभप्रद होती हैं हम लोगों के लिए।
1: चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा है, और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहेंगे आप, ये हमको उम्मीद है आपसे। आज गाना कौन सा सुनेंगे?
0: आज मुझे गाना सुनना है, फिल्म का नाम है साजन और गीत के बोले हैं मेरा दिल भी कितना पागल है। और इसी गीत के साथ मैं सभी अपने देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहूंगा, क्योंकि हमारी आकाशवाणी ने 90 वर्ष बहुत ही सुरमई अंदाज के साथ पूरे किए हैं।
1: जी
0: और मैं आकाशवाणी से जुड़ा रहा हूं और मैं सभी से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आकाशवाणी को सुनें, इससे जुड़ें, इसके प्रोग्रामों का आनंद लें और कुछ अच्छा सीखें अपनी जिंदगी में।
1: बहुत अच्छा मैसेज आपने हमारे और भी लिसनर्स को दिया है, और आपको हम आपकी पसंद का गाना सुनवा रहे हैं। ओके, बाय बाय।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो कानपुर मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते, अपना नाम बता दीजिए।
1: जी मैम, मेरा नाम ज्ञानेंद्र कुमार है, हम सूबेदार चौराहा नगवा कानपुर से बात कर रहे हैं। मैम
0: स्वागत है आपका, और बताइए क्या करते हैं?
1: जी मैम, फिलहाल मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ और प्राइवेट जॉब के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी भी करता हूँ। शुरू से मैं विविध भारती के प्रोग्राम और बाद में एफएम रेनबो शुरू हुआ, तो मैम मैं बहुत पहले से सुन रहा हूँ। तो इसके साथ साथ जब एफएम रेनबो का प्रसारण चालू हुआ तो इसके भी प्रोग्राम पसंद आए।
0: जी, बहुत पहले से, मतलब कब से आप आकाशवाणी से जुड़े हुए?
1: आकाशवाणी से बहुत पहले जुड़ा हुआ हूँ, 6th 7th में पढ़ाई करते थे
0: तब, जब आप छोटे थे।
1: जी, एफएम रेनबो शुरू हुआ था तब से, और उसके पहले से,
0: मतलब जब आप 6th या 7th में पढ़ते थे तब से आप सुन रहे हैं। तो मतलब आपको पढ़ाई तो करनी ही करनी थी, साथ में आप आकाशवाणी के भी दीवाने थे।
1: जी मैम, जब से ये चालू हुआ था, शायद आधे घंटे का प्रोग्राम चालू हुआ था पहले, तब से।
0: और बताइए कैसे हैं आप?
1: ठीक है मैम, हम, और आप कैसे हैं मैम?
0: जी हम भी बहुत अच्छे हैं, और गर्मी बहुत पड़ रही है अभी। जब आप बाहर निकलते हैं तो किन किन बातों का ख्याल रखते हैं?
1: जी मैम, बाहर निकलने से पहले सबसे मेन बात तो ये, अगर कोई जरूरी होता है तो निकलते हैं, नहीं तो फिर सुबह या फिर शाम को जाना होता है।
0: हाँ, 12 बजे से 4 बजे तक का जो समय होता है वो बहुत ज्यादा तपिश का होता है। उस वक्त जितना भी हम उसको अवॉइड कर सकते हैं बाहर निकलना, उतना हमें करना चाहिए।
1: जी मैम, जी बिल्कुल।
0: अच्छा, और क्या करते हैं अपने को गर्मी से बचाने के लिए? किस तरीके का खान पान रखते हैं?
1: गर्मी से बचने के लिए मैम सबसे बड़ी बात है, अपने आप को पहली बात तो निरंतर पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी की कमी शरीर में नहीं होनी चाहिए। और इसके साथ साथ जो भी तरल वो पदार्थ हैं, जो भी मतलब है, उनका सेवन करना चाहिए, और ये सब।
0: और खाने पीने में ज्यादा तला भुना आजकल नहीं खाना चाहिए।
1: जी मैम, जी बिल्कुल।
0: और वैसे भी तेल वगैरह शरीर के लिए काफी नुकसानदेह होता है, तो जितना हल्का भोजन हम कर सकते हैं ना, उतना हल्का भोजन करें।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि गर्मियों में शरीर को नुकसान पहुंचा सकता
0: बिल्कुल
1: है।
0: ज्यादा खाना जो है वो शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर कम खाएंगे और थोड़ा संतुलित खाएंगे तो हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, बल्कि फायदा पहुंचाएगा।
1: फायदा होगा बिल्कुल मैम।
0: तो इसलिए इस तरीके का ध्यान रखिए गर्मी में। और आपने हमें कॉल किया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। गाना बता दीजिए कौन सा सुनेंगे?
1: मैम, राजा हिंदुस्तानी का गाना हमको सुनना है, पूछो जरा पूछो।

0: हेलो कानपुर।
1: हेलो, नमस्कार जी।
0: नमस्ते, कौन बोल रही है? अपना नाम बताइए और कहाँ से बोल रही है, जगह का भी साथी नाम बता दीजिए।
1: मैं सुदेश मल्होत्रा हूँ और बर्रा से बोल रही हूँ। मैं बर्रा कानपुर से।
0: सुदेश मल्होत्रा,
1: जी।
0: आप पंजाबी हैं?
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: पंजाबी नाम सुनते ही तो उनके खाने की जो एक खुशबू है वो बिल्कुल एकदम दिमाग पर तारी हो जाती है, जारी हो जाती है, हावी हो जाती है।
1: ये तो सभी लोग कहते हैं, पंजाबी खाने की बात ही कुछ अलग है।
0: पंजाबी तड़के की बात अलग
1: सही कह रही हैं आप।
0: है। कैसी हैं आप सुदेश जी?
1: जी बिल्कुल ठीक हूँ।
0: करती क्या है, हाउसवाइफ है या फिर कहीं जॉब भी करती हैं?
1: जॉब करती थी पहले, अब हाउसवाइफ हूँ।
0: अच्छा,
1: हाँ, स्कूलिंग में थी, मतलब एज ए प्रिंसिपल थी मैं।
0: यानी
1: हाँ
0: कि
1: जी,
0: बच्चों को शिक्षित करती थी, बच्चों को अनुशासन में रखने के लिए सारे नियम बनाती थी, क्योंकि प्रिंसिपल का काम ही वही होता है, अनुशासन में रखना टीचर्स के
1: आप
0: साथ साथ स्टूडेंट्स को और पूरे स्कूल को। तो
1: जी।
0: अब आप घर में क्या क्या करती हैं?
1: घर में अब बच्चों की देखभाल करते हैं, दो बेटियां हैं मेरी,
0: जी
1: और घर के काम ही इतने हो जाते हैं कि उन्हीं में ही सारा समय निकल जाता है।
0: जैसे कि मैंने बात करी थी कि पंजाब के तो खाने की खुशबू ही निराली है,
1: हाँ जी,
0: तो आपको खाना बनाने का खूब शौक है?
1: बिल्कुल बिल्कुल शौक है, और मुझे खिलाने का बहुत शौक है।
0: खिलाने का बहुत शौक है, वो तो मैं जब आऊंगी आपसे मिलने तो जरूर खाऊंगी। फिलहाल ये
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए कि खाने में क्या क्या चीज आपको पसंद है और क्या क्या आपकी आपके हाथ की इतनी अच्छी डिश बनती है कि आपके जो घर मेहमान आते हैं वो कहते हैं वाह वाह क्या लजीज खाना बनाया है।
1: ज्यादातर हम पंजाबी में ना राजमा, जैसे राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, पनीर है, शाही पनीर, छोले है, मतलब दाल मखनी है, ये चीजें ज्यादा लोग पसंद करते हैं।
0: मतलब आपने जो बताया है यहाँ से स्टूडियो में बैठे बैठे ही जायका उसका मेरे मुंह में घुल ही गया है।
1: तो आप आइए ना किसी दिन।
0: जी बिल्कुल आएंगे। ये बताइए कि इस वक्त तो गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ गई है, तो इस वक्त खाना खाने और साथ में खिलाने दोनों में क्या ख्याल रखती हैं? क्योंकि गर्मी में खाने पीने का ख्याल सबसे ज्यादा रखा जाता है।
1: खाने में इस समय जो है ज्यादा हैवी नहीं बनाते हैं,
0: जी
1: थोड़ा लिक्विड में ज्यादा ध्यान देते हैं, जैसे लस्सी है, छाछ है, मतलब सत्तू का पानी है, इस तरह से ज्यादा ध्यान रखते हैं। और हरी सब्जी जैसे, मतलब हैवी दालें जो हैं ये कम बनाते हैं।
0: जी, तला भुना थोड़ा सा कम,
1: जी
0: मसाले
1: थोड़ा,
0: वाली चीज थोड़ा सा कम, ये सब इस वक्त में अवॉइड करनी चाहिए।
1: हाँ, स्पाइसी कम रखें तो ज्यादा ठीक रहता है
0: बहुत
1: इस
0: ही अच्छा
1: मौसम
0: लगा
1: में।
0: है आपसे बात करके और आपके जो जायके हैं उनको महसूस करके। फिलहाल तो आप ये बताइए कि गाना कौन सा सुनेंगी?
1: अच्छा, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि
0: जी
1: आपको मुझसे मिलकर अच्छा लगा, और मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा है।
0: जी तहे दिल से शुक्रिया आपका।
1: मुझे शुक्रिया कहना चाहिए, आपने मुझसे बात की अच्छे से। गाना दिल अपना और प्रीत पराई का है ना, अजीब दास्तां है ये।
0: जी

0: ये था आज के हेलो कानपुर प्रोग्राम का सफर। सच बताऊं तो इस सफर को और इस शाम को आपकी बातों ने और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया।
1: मिठी मिठी बोल, रसकानों बीच बोल।
0: जी हाँ, बातों में अगर मिठास हो तो रिश्ते अपने आप खूबसूरत बनते जाते हैं ये बातें भले ही छोटी हो पर उनका असर, जी हाँ, वो बड़ा ही गहरा होता है। जो कभी किसी की होंठों की मुस्कान बन जाती है तो कभी किसी के दिल का खूबसूरत हिस्सा।
2: दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है।
0: तो बस अब मैं आपकी अपनी रेडियो हमसफर कौसर चाहूंगी आपसे हेलो कानपुर प्रोग्राम से इजाजत। आप खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राहुल कुमार पाल, तकनीकी सहयोग रहा श्रीमती अन्नपूर्णा और श्री प्रवीण कुमार का।

नमस्कार, शाम के 5 बजे आप सुनिए मुख्य समाचार। रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 2 एकड़ जमीन वाराणसी के मौजा पिंडरा अजयपुर कोलसला में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से लीज डीड की कार्रवाई की जा रही है। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि लीज डीड पर रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान के प्रतिनिधि एवं पर्यटन विभाग के निदेशक मृदुल चौधरी के हस्ताक्षर होंगे। उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक की अध्यक्षता और प्रभारी मंत्री केपी मल्लिक की उपस्थिति में आज अमरोहा में कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरोहा को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। केंद्र और प्रदेश सरकार की सभी योजनाओं को धरातल पर उतार कर अमरोहा को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। लखनऊ में आज स्वच्छ भारत मिशन अर्बन उत्तर प्रदेश की आगामी त्योहारों की तैयारी को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने की। बैठक में त्योहारों के दौरान स्वच्छता, पेयजल आपूर्ति, बिजली, यातायात प्रबंधन, सुरक्षा और अन्य नागरिक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

अधिकारियों को सख्ती से कहा गया कि त्यौहार शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित तरीके से मनाए जाएं। राम मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की प्रथम वर्षगांठ कल है, जिसमें गंगा दशहरा पर राम मंदिर में विशेष हवन पूजन और भक्ति उल्लास से राम मंदिर सराबोर होगा। कार्यक्रम सादे समारोह में संपन्न किए जाएंगे। पिछले वर्ष गंगा दशहरे के मौके पर ही शेषावतार व परकोटा में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी। प्रदेश में गर्मी के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन लोगों से जरूरी सावधानियां बरतने की अपील कर रहा है। इसी क्रम में बलरामपुर में हीट वेव और गर्मी से बचने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। लोगों से अनावश्यक दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक धूप में न निकलने के लिए अपील की गई है। साथ ही नियमित अंतराल पर पानी और तरल पदार्थ पीने को कहा गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 6 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती है नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।
3: गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, शाम के 5 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं यानी अनुग्रह आ चुका हूं आपके बीच लेकर आपका अपना प्रोग्राम टॉप 10। जहां हम करेंगे टॉप 10 उन फिल्मों की बातें जिनसे बॉलीवुड स्टार्स ने दी दस्तक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आमिर खान से। आमिर खान ने यूं तो फिल्मी दुनिया में कदम रखा है, एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म थी यादों की बारात जो की रिलीज हुई 1973 में यानी 1973 में, बट एज एन एडल्ट हिज फर्स्ट फीचर फिल्म रोल वाज इन होली जो कि रिलीज हुई 1984 में। लेकिन बॉलीवुड में उनको पहचान मिली उनकी पहली कॉमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म कयामत से कयामत तक से, जिसका ये गाना आज भी कई सारी यादें और सपने निगाहों के सामने ले आता है। ऐसा आपके साथ भी होता है ना? तो चलिए एंजॉय करते हैं टॉप 10 पोजीशन पे कयामत से कयामत मूवी का ये ट्रैक।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
3: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
4: पता पहली फिल्म में सपोर्टिंग रोल में नजर आए सलमान खान, जिसमें मुख्य भूमिका में थे फारूक शेख और रेखा। उसके बाद साल 1989 यानी 1989 में रिलीज फिल्म मैंने प्यार किया ने सलमान खान को रात बराते स्टार बना दिया। फिल्म तो ब्लॉकबस्टर रही, साथ ही फिल्म के गाने भी सुपरहिट रहे। तो चलिए सुपर नंबर 9 पे एंजॉय करते हैं दिल दीवाना फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया।

500 साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म दीवाना, जिसमें ऋषि कपूर दिव्या भारती मुख्य भूमिका में नजर आए। लेकिन फिल्म में एक और स्टार ने डेब्यू किया था, वो थे शाहरुख खान। फिल्म में जरूर थोड़ी सी देर के बाद नजर आए, लेकिन उनकी एंट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया। तो चलिए नंबर 8 पोजीशन पे एंजॉय करते हैं ऐसी दीवानगी फ्रॉम दी मूवी दीवाना।

1992 में एक फिल्म आई बेखुदी, जिसके लिए मेल रीड के लिए जो है कास्ट किया गया सैफ अली खान को, लेकिन कुछ रीजन की वजह से उनकी जगह लिया गया कमल सदाना को, जिसमें काजोल ने भी अपनी एक्टिंग करियर की जो है शुरुआत की। लेकिन सैफ अली खान को ऑफर मिला फिल्म परंपरा के लिए, जिसको इन्होंने एक्सेप्ट किया और अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत भी की। तो चलिए नंबर 7 पोजीशन पे एंजॉय करते हैं परंपरा मूवी का ये ट्रैक, और नंबर 6 पोजीशन पे एंजॉय करते हैं बेखुदी फिल्म का ट्रैक। तो पहले परंपरा मूवी से मेरे साथिया आपके लिए।

90s के दौर में जबरदस्त एक्शन के साथ अपनी पहली फिल्म में नजर आए अजय देवगन, और फिल्म थी फूल और कांटे। जहां इस फिल्म की खासियत ही यही थी कि खतरनाक एक्शन भी खुद अजय देवगन ने परफॉर्म किया था। जहां दर्शकों को मूवी का एक्शन पसंद आया, वहीं इस मूवी के गाने भी लोगों को खूब भाए। तो चलिए नंबर 5 पोजीशन पे एंजॉय करते हैं अजय देवगन का ये ट्रैक।

दोस्तों एक्शन की बात की जाए और अपने एक्शन स्टार अक्षय कुमार का नाम ना आए ये नामुमकिन है। 1987 यानी 1987 में रिलीज हुई महेश भट्ट निर्देशित फिल्म आज, जिसमें छोटी सी भूमिका निभाते नजर आए अक्षय कुमार, लेकिन सही मायनों में उनके करियर की शुरुआत हुई 1991 में रिलीज हुई फिल्म सौगंध से, और उसके बाद रिलीज हुई खिलाड़ी ने उन्हें पहचान दिलाई। फिल्म की स्टोरी, अक्षय कुमार का एक्शन दर्शकों को सिनेमा घरों तक लाने में कामयाब रहा, और साथ में कामयाब रहा फिल्म का गीत संगीत। तो चलिए नंबर 4 पोजीशन पे एंजॉय करते हैं वादा रहा ट्रैक फ्रॉम द मूवी खिलाड़ी।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो। कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: की बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: तो जब भी किसी स्टार सन की फिल्म जो है रिलीज होती है तो उस फिल्म के लिए दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। ऐसा ही क्रेज था अभिषेक बच्चन की पहली फिल्म रिफ्यूजी के लिए, जहां अभिषेक के साथ करीना की भी ये पहली फिल्म थी। फिल्म सफल रही और अभिषेक बच्चन और करीना कपूर ने अपने फिल्मी करियर की सफल शुरुआत की, और साथ ही इस फिल्म का म्यूजिक आज भी सुकून देता है। तो ऐसे ही पहला ट्रैक जो है

करीना कपूर को रिफ्यूजी से पहले ऑफर मिला था कहो ना प्यार है के लिए, लेकिन किन्हीं कारणों से बात नहीं बन पाई और कहो ना प्यार है से दमदार डेब्यू किया ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल ने। ये फिल्म उस साल की सबसे सफल फिल्म बनी और वेरियस प्लेटफॉर्म पे इस फिल्म ने 92 अवार्ड्स जीते, जो कि एक रिकॉर्ड है। तो चलिए एंजॉय करते हैं नंबर 2 पोजीशन पे कहो ना प्यार है मूवी का ये ट्रैक।

साल 1991 में सुभाष घई निर्देशित फिल्म रिलीज हुई सौदागर, जहां दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे दिग्गज कलाकार नजर आए और साथ में नजर आए दो नए कलाकार विवेक पुष्करण और मनीषा कोइराला। और पहली बार इस फिल्म के गाने ने इलू शब्द का मतलब समझाया। जी गाने तो आप समझ गए होंगे, नंबर वन पोजिशन पे है इलू इलू ट्रैक। और इसी के साथ दोस्तों टाइम हुआ है 5:54, जो कि कह रहा है फिलहाल तो टॉप 10 प्रोग्राम से लीजिए इजाजत, लेकिन अगले प्रोग्राम यानी कि शामे अवध में भी रहूंगा आपके साथ, तो कहीं मत जाइए, सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो।

नमस्कार, शाम के 6 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम पर और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। शीर्ष न्यायालय ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह की दलीलों पर संज्ञान लिया। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता की विभिन्न शिकायतों के समाधान के लिए प्रत्येक विकासखंड स्तर पर साप्ताहिक चौपाल लगाने का निर्णय लिया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी गंगा दशहरा और बकरीद पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। अयोध्या इन दिनों भीषण गर्मी और हीट वेव की चपेट में है। तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों को राहत देने के लिए नगर निगम ने शहर के भीड़भाड़ वाले चौराहों और रेड लाइट पॉइंट्स पर अस्थायी शेड लगाए हैं। नगर आयुक्त जयंद्र कुमार ने बताया कि शहर के सभी प्रमुख और व्यस्त चौराहों पर इस तरह के शेड लगाए जाएंगे। साथ ही रामपथ, राम मंदिर और हनुमानगढ़ी के आसपास भी श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अस्थायी विश्राम शेड बनाए जाएंगे, जिससे दर्शन करने आने वाले श्रद्धालु धूप से राहत पा सकें। उन्नाव की ग्राम पंचायत कमालपुर में नवनिर्मित अत्याधुनिक कला प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये कला केंद्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

नाथ के उस संकल्प का जीवंत उदाहरण है जिसमें वे उत्तर प्रदेश के हर गांव को आत्मनिर्भर और साधन संपन्न बनाने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि यहां चित्रकला, हस्तशिल्प, सिलाई एवं वस्त्र डिजाइनिंग, संगीत और नृत्य जैसी विधाओं का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जाएगा। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: पुरानी हवेलियों की दीवारें सुनाती हैं नवाबों की दास्तान। चिकनकारी के बूटों से खिलते गलियारे, गिलोरियों की खुशबू से बहकते पानदान, यहाँ हर कोना एक शायरी, हर गली गजल। ये लखनऊ है जनाब।
1: हाईटेक मॉल्स, स्ट्रीट फूड, 10.90 पर गुलजार होती शामें, चाय की चुस्कियों से कॉफी के उठते धुएं तक, ये भी लखनऊ ही है जनाब।
2: समझे जनाब यारी।
1: जहां हर घर में बचता है 100.7 FM रेनबो। धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी दोस्तों, शाम के 6:12 हो गए हैं और एक बार फिर आपसे गुड इवनिंग कहने के लिए मैं यानी अनुग्रह आ चुका हूँ आपके पास प्रोग्राम शामे वक्त को लेकर। तो बिल्कुल बातें भी होंगी, मुलाकातें भी होंगी और होंगी बहुत सारी जानकारियां भी। लेकिन चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और प्यारे से ट्रैक के साथ।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: दोस्तों 6:20 हो गए, प्रोग्राम चल रहा है शाम में, और अनुग्रह है आज आपके साथ। और क्या है साथ जी? बेशुमार गर्मी है आज क्या है, बिल्कुल गर्मी का मौसम बिल्कुल पीक पे है, और झुलसती तपती गर्मी सबको थोड़ा सा सता रही है। ऐसा आपके साथ भी हो रहा है ना? मुझे पता है। ऐसे में देखने में आ रहा है कि कई लोगों को घमौरियां टाइप की घमौरियां हो रही हैं, छोटे छोटे दाने आ रहे हैं स्किन पे, और बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं, मतलब हॉस्पिटल में लाइन भी लग रहे हैं ऐसे मरीजों की। तो अगर आपके साथ भी ऐसी दिक्कतें आ रही हैं तो आपको बताऊं कि डॉक्टर्स का कहना है कि ऐसे दाने होने पे, घमौरियों होने पे, आप इनिशियल स्टेज में कोई भी आप क्रीम ना लगाएं, कोई दवा ना लगाएं और ना ही किसी डॉक्टर के पास जाएं, बल्कि दिन में 2 बार अगर आप ठंडे पानी से नहाएं तो इस समस्या से आप मुक्त हो सकते हैं। और 4-5 दिन तक यही क्रम रखिए, देखिए ये जो बीमारी है, घमौरियां हैं, वो दूर हो जाएंगी। और साथ में सूती कपड़े पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए, और साथ में पानी तो पीते ही रहिए, क्योंकि पानी तो अमृत है, गर्मी से आपको बचाता है, डिहाइड्रेशन से आपको मुक्त करता है, जी बचाता है। तो ये सब बेसिक चीजें हैं, ध्यान रखिए, देखिए आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो फिलहाल तो चलिए एक और प्यारा सा ट्रैक बिल्कुल तैयार है आपके लिए, जरा सा दिल में दे जगह। तो मुझे पता है कि आपके दिल में मेरे लिए बहुत जगह है, तो चलिए इसी बात पे एंजॉय करते हैं जन्नत मूवी का ये ट्रैक।

0: पर्सनल लोन ऑफर।
1: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
0: फ्री ट्रिप टू दुबई,
1: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
2: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
1: तो क्या करूं?
2: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
2: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
3: Keep listening to 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

जी, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कब कैसे क्या हो जाती है। उनमें से एक चीज है मोहब्बत, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमें एहसास नहीं होता जब तक वो हमारे पास रहती हैं। हमें एहसास होना चाहिए, छोटी छोटी चीजों पर गौर करना चाहिए। और ऐसी कीमत होती है पानी की। जी कहते हैं ना, पानी की कीमत पहचानिए, पानी का मूल्य पहचानिए, तो इस समय पानी का मूल्य पहचानिए और पानी अपने साथ हमेशा रखिए। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, कहीं भी आप सफर कर रहे हैं, पानी की बोतल आपके पास जरूर होनी चाहिए, जिससे आप बीमार होने से बच सकते हैं। और साथ में अगर कोशिश करिए, पॉसिबल हो, और बल्कि कोशिश क्या करिए, मतलब आप करिए ही करिए कि आपकी छत की बालकनी होती है वहां पे पानी भर के किसी बर्तन में आप रखिए, क्योंकि अगर आपको प्यास लगती है, सोचिए पशु पक्षी हैं, उनको भी प्यास लगती है ना। तो थोड़े बहुत अच्छे अच्छे काम कर दिया करिए, दिल को तसल्ली मिलती है, दिल को बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे हम प्यारे प्यारे गाने बजाते हैं ना, आपको अच्छे लगते हैं। तो चलिए, एक ऐसा ही प्यारा सा ट्रैक आपके लिए बिल्कुल तैयार है, आपके रेडियो सेट पे एंजॉय करिए।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444।
2: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
2: जी, हमेशा की तरह घर जाने की जल्दी आपको भी होती है और ठीक है, घर याद आता है जब हम कामकाज से लौटते हैं और बस यही लगता है कैसे हम उड़ के पहुंच जाए। मतलब ये गाना जो है ना, पंख होते तो उड़ आती रहे, तो कुछ ऐसे ही सीन हो जाता है। दिल का हाल जो होता है ना, वो कुछ ऐसे ही हो जाता है भाई। ठीक है, वो सब भावनाएं आपकी सब जायज हैं, लेकिन जो जरूरी है वो ये है कि ट्रैफिक रूल्स जो है आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सुविधा के लिए बने हैं, उनको जरूर ध्यान रखिए। सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट लगाइए, आपकी पूरी तरह से सुरक्षा होगी। और बाकी यह कि रेड लाइट है तो थोड़ा सा मान जाया करिए, रेड लाइट पे गाड़ी को रोक लिया करिए और गाड़ी का जो इग्निशन है उसको ऑफ कर दिया करिए, तो पेट्रोल भी सेफ होगा, आपका जो ईंधन है वो बचेगा, साथ में गर्मी से थोड़ी सी राहत भी मिलेगी। 6:51 हो गए हैं, प्रोग्राम चल रहा है शामी अनुग्रह है आज आपके साथ और एक और प्यारा सा ट्रैक फ्रॉम द मूवी लूडो।

और दोस्तों घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि फिलहाल तो ली जाए इजाजत इस प्रोग्राम से, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपसे हेलो कहने के लिए एक बार फिर से अनुग्रह रहेगा आपका साथ प्रोग्राम हेलो एफएम में। तो चलिए फिलहाल तो दीजिए इस प्रोग्राम से इजाजत, मिलता हूं आपसे हेलो कहने के लिए हेलो एफएम प्रोग्राम को लेकर।

नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। अब सुनिए टॉप यूपी की टॉप 10 न्यूज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तर प्रदेश की एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ विशेष बैठक में कर प्रणाली को अधिक सरल, डिजिटल और जवाबदेह बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी गंगा दशहरा और बकरीद पर्व को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। 4 दिवसीय भारत दौरे पर आए अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने अपनी पत्नी और उच्च प्रतिनिधिमंडल के साथ आगरा में ताजमहल का दीदार किया। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन भी कराया। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में विकास कार्यों की समीक्षा की। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अमरोहा को प्रदेश के सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना सरकार का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 नामों का ऐलान कर दिया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह और शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। मुजफ्फरनगर में डीएम उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने जिला कारागार का निरीक्षण किया। रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान को वाराणसी में बौद्ध मंदिर और गेस्ट हाउस के निर्माण के लिए 2 एकड़ जमीन वाराणसी के मौजा पिंडरा अजयपुर कोलसला में उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से लीज डीड की कार्रवाई की जा रही है। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। फर्रुखाबाद, हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर और प्रयागराज में आसपास के जिलों के साथ दूसरे राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंचे। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन 7:20 पर प्रसारित होगा। नमस्कार।

डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई DND ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई DND ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।

0: पल थोड़ा सा भारी सा लगता है, ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे साथ। भाई चलिए जानते हैं कि आज पहले कॉलर हमारे आज के कौन हैं। हेलो
1: हाँ भाई साहब, श्री प्रकाश तिवारी बोल रहा हूँ।
0: जी, श्री प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका।
1: हाँ थैंक यू भाई साहब।
0: जी और बताइए कैसे हैं आप।
1: हम बिल्कुल ठीक हैं भाई साहब, गर्म बहुत है।
0: जी फिलहाल तो सबका यही हाल है, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है।
1: हाँ
0: जी और बताइए गाना कौन सा सुनना चाहेंगे आप।
1: हम कति पसंद का प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, और डेडिकेट भाई साहब सबसे पहले आपको करेंगे, आपकी टीम को।
0: जी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: फिर हमारे बाबू अंसारी भाई है, हरकेश भाई है, नवनीत, संदीप
0: जी,
1: और रिंकी पिंकी मेरी बहन।
0: जी जी जी तो सबको डेडिकेट करना चाहेंगे आप ये गाना।
1: हाँ भाई साहब यही गाना हमको सुना दीजिए, थैंक यू वेरी मच।
0: जी बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश करिए। अच्छा आपके फेवरेट हीरो पुराने में कौन था।
1: हम भाई साहब पुराने गाना ज्यादा सुनते
0: जी
1: हैं।
0: तभी हमने पूछा कि आपका फेवरेट हीरो कौन था, आपका पसंदीदा कलाकार कौन था, एक्टर कौन था।
1: हमारा फेवरेट हीरो किशोर कुमार।
0: जी ये तो सिंगर हो गए, मुझे लगता है कि आपको शायद राजेश खन्ना ज्यादा पसंद होंगे।
1: अमिताभ बच्चन है वैसे।
0: हाँ हाँ क्या बात है क्या बात है। तो श्री प्रकाश जी हमने आपका गाना बिल्कुल निकाल लिया है, उम्मीद करते हैं जिनको आपने डेडिकेट किया है वो सब सुन रहे होंगे। तो एंजॉय करिए ये ट्रैक कटी पतंग फिल्म का, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है।
1: थैंक यू भाई साहब।
0: जी आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। जी तो ये थे श्री प्रकाश जी जिनकी पसंद का ये ट्रैक बिल्कुल है तैयार। तो चलिए हम और आप एंजॉय करते हैं प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है।

0: एम के बंधानी हींग हर समझदार गृहिणी की पहली पसंद।
1: जी, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है और हमारी पसंद है आप, जो इतनी अच्छी अच्छी फरमाइशें करते हैं। तो फिलहाल तो हमारे साथ हेलो एफएम प्रोग्राम में कोई और भी हेलो कहने के लिए आ चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका।
2: जी नमस्ते सर, सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार और प्यार भरा सलाम और प्यार भरा गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग जी, और बताइए अपना शुभ नाम भी बता दीजिए ताकि हमारे श्रोताओं को पता लग जाए कि आज कौन जुड़ा है हमारे साथ।
2: जी मेरा शुभ नाम है मोहम्मद फैज, रामपुर कटरा फुलवारी बाजार जिला बाराबंकी से बात कर रहे हैं सर।
1: क्या बात है फैज जी, आपका अंदाज बड़ा निराला है।
2: जी जी जी सर, ये तो बड़ा पुराना स्टाइल है।
1: जी जी, क्या बात है। अच्छा, नया नया स्टाइल भी है कुछ। जी फैजी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे और किसे सुनाना चाहेंगे?
2: जी सर, गाना तो सुनना चाहेंगे, उसके हम ये कहना चाहते हैं सर कि आपके लखनऊ का मौसम कैसा है?
1: हमारे लखनऊ का मौसम बहुत अच्छा है।
2: जी जी,
1: और आपके आपसे बात हो रही है तो हमारे स्टूडियो का जो मौसम है बहुत अच्छा हो गया। फिलहाल तो स्टूडियो का जो मौसम है बहुत ठंडा है, उम्मीद करते हैं बाहर का मौसम वैसे ही होगा जैसा आपके इधर का है।
2: अच्छा अच्छा
1: जी,
2: तो गाना बताएं सर।
1: हाँ हाँ बिल्कुल
2: जी, गाना सुनना है। कसम खुदा के यही कहूंगा, तुम्हारे बिन ना जी सी सकूंगा, ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल ऐ दिल, ये वाला सॉन्ग है सर।
1: क्या बात है, आप सुनेंगे रेडियो सेट पे और हमने सुन लिया आपकी आवाज अपने कानों से, इतना प्यारा आप गा रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था।
2: अच्छा हेलो सर।
1: जी जी,
2: कुछ लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
1: बिल्कुल करिए
2: जी, सबसे पहले मेरे क्यूट से प्यारे वाले अनुग्रह सर को।
1: क्या बात है, शुक्रिया शुक्रिया।
2: उसके बाद मेरे पिताजी का नाम है मुबारक अली
1: जी,
2: और मोहम्मद सद्दाम भाई है
1: जी,
2: और फकीर अली है, मोहम्मद तेज भाई है
1: जी,
2: और मोहम्मद जावेद अख्तर भाई, आसिफ भाई है, रिंकी पिंकी है, समा परवीन आप है, गुलाब साहब है, साहिबा है, सादिया है, यासिर अमित भाई, बाबू भाई है, सुरभी सिंह है, और अकबर भाई है, और वकील अहमद मंसूरी भाई है, और अलका मैम जी को।
1: क्या बात है, इतने सारे लोगों को आपने डेडिकेट किया, उम्मीद करते हैं कि मतलब मिलने पे सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे, सब लोग कहेंगे आपने मेरा नाम लिया, थैंक यू सो मच। हाँ जी जी जी,
2: मैं ये कहना चाहता हूँ जब मेरी शादी होगी तो कार्ड मतलब इतने ज्यादा हो जाएंगे, ये एफएम रेनबो वाले की पूछिए मत।
1: जी जी, क्या बात है, तो बहुत अच्छी बात है कि आपकी शादी में बाराती बहुत सारे होंगे।
2: जी जी जी जी
1: जी, तो फिलहाल तो आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फैजी, और आपका गाना बिल्कुल तैयार है रेडियो सेट पे, सुनिए एंजॉय करिए। जी मोस्ट वेलकम आपका जी। तो चलिए आप भी जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम में, हेलो एफएम में हमसे हेलो कह सकते हैं। आपको करना एक छोटा सा काम, 0522 स्टडी कोड के साथ नंबर मिलाने हैं, 2238845 और 2238852, ये दो नंबर हैं, इन पे कॉल करिए और जुड़ जाइए हमारे साथ प्रोग्राम हेलो एफएम में। और साथ में तो देखिए एक गाना प्ले ही हो रहा है। और दोस्तों आपको याद भी दिलाते हैं कि 7:20 पे आप सुनेंगे प्रादेशिक हिंदी समाचार, और उसके बाद एक बार फिर से आपके साथ हेलो करने के लिए मैं यानी अनुग्रह रहूंगा आपके साथ 7:30 पे।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, जबकि अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रदेश के 6 अन्य लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। एक रिपोर्ट।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों आज 66 लोगों को पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश से आज 7 विभूतियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। इनमें कला के क्षेत्र में डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: डॉक्टर श्रीमती एन राजम, कला वायलिन।
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ककराल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर श्याम सुंदर को चिकित्सा, डॉक्टर अशोक

0: कुमार सिंह को विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, प्रोफेसर बुद्ध रश्मि मणि को पुरातत्व विज्ञान और प्रवीण कुमार को खेल के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया।
1: श्री प्रवीण कुमार, खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
0: शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज आगरा पहुंचकर ताजमहल का दीदार किया। उनके साथ उनकी पत्नी और उच्च प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। आगरा पहुंचने पर उनका स्वागत जिलाधिकारी मनीष बंसल और पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने किया। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने करीब 40 मिनट तक ताजमहल का दीदार किया। ताजमहल भ्रमण के दौरान उन्होंने पत्नी के साथ डायना बेंच पर फोटो सेशन कराया, साथ ही गाइड से ताजमहल के इतिहास, निर्माण और पच्चीकारी के बारे में विस्तृत जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने स्मारक की खूबसूरती की जमकर प्रशंसा की। श्री रूबियो ने विजिटर बुक पर इस इमारत की खूबसूरती देखने का अवसर दिए जाने पर आभार जताया। सज्जन सागर, आकाशवाणी समाचार, आगरा।
2: पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपये और डीजल में 2.71 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में यह पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब लखनऊ में पेट्रोल की कीमत 101.89 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल 95.36 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 11 सीटों पर होने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में मेरठ शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से श्रीचंद शर्मा को प्रत्याशी घोषित किया गया है। वहीं बरेली मुरादाबाद शिक्षक सीट पर डॉ हरि सिंह ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया है। लखनऊ में स्नातक सीट पर अवनीश कुमार सिंह, जबकि शिक्षक सीट पर उमेश द्विवेदी को मैदान में उतारा गया है। आगरा की स्नातक सीट पर डॉ मानवेंद्र प्रताप सिंह पार्टी प्रत्याशी होंगे। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर प्रदेश के सभी प्रमुख मंदिरों और पावन नदियों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। फर्रुखाबाद में भी गंगा दशहरा के पावन पर्व पर श्रद्धालु गंगा तट पर पवित्र डुबकी लगा रहे हैं। जिला प्रशासन ने गंगा तट को 4 सेक्टर में बांटा है। गंगा नदी में 50 नाव और करीब 50 गोताखोरों की भी तैनाती की गई है। हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में भी आसपास के जिलों और राज्यों से लोग गंगा स्नान करने पहुंच रहे हैं। प्रयागराज में सभी प्रमुख घाटों पर भोर से ही भक्त गंगा में स्नान पूजा अर्चना कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
4: संगम नगरी प्रयागराज में गंगा दशहरे के पावन पर्व पर श्रद्धालु त्रिवेणी संगम सहित रामघाट, दारागंज और वीआईपी घाट पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस पवित्र पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए कल रात से ही आसपास के जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों ने गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के संगम पर प्रार्थना, दान और भेंट अर्पित कर समृद्ध और खुशहाली की कामना की। भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के लिए घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर स्थापित राम परिवार की स्थापना की पहली वर्षगांठ पर कल विशेष अनुष्ठान होंगे। इस अवसर पर भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र धारण कराने के साथ 56 भोग लगाए जाएंगे। एक रिपोर्ट।
5: पिछले वर्ष गंगा दशहरा के मौके पर शेषावतार व परकोटे में बने 6 मंदिरों की स्थापना हुई थी, जिसकी कल पहली वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस मौके पर राम मंदिर यज्ञशाला में विशेष धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया जाएगा। साथ ही भगवान राम के संपूर्ण परिवार को नए वस्त्र पहनाए जाएंगे और 56 भोग लगाए जाएंगे। इस अवसर पर वाल्मीकि रामायण का पारायण भी होगा। तन्मय सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या।
2: प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप जारी है। बीते 24 घंटों में बांदा 46.8 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश के सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। वहीं झांसी, प्रयागराज, जालौन, उरई, आगरा और हमीरपुर में पारा 45 डिग्री के पार रहा। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमरोहा में मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार ने

0: हीट वेव से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है, साथ ही अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम सुनिश्चित किए हैं।
1: जिले के सभी अस्पतालों में बेड आरक्षित करने के साथ साथ दवाइयों का इंतजाम किया गया है। ORS घोल को सभी आशा वर्कर के माध्यम से गांव गांव पहुंचाया जा रहा है और यदि किसी को किसी सहायता की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए तत्काल इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं।
0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
2: 42-47 डिग्री से ज्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी चोटियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहां पे ट्रैफिक लाइट है, जहां पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहां पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहां पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहां ट्रेनिंग्स दी गई हैं।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू

0: तेज गर्मी के मद्देनजर वाराणसी में जिला प्रशासन ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि जनपद में अर्बन हीट एक्शन प्लान को सक्रिय कर दिया गया है ताकि बढ़ते तापमान के प्रभाव को कम किया जा सके।
1: 42-43 डिग्री से ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर चल रहा है, उसके दृष्टिगत जो अर्बन हीट एक्शन प्लान है उसको एक्टिवेट कर दिया गया है। विद्यालयों में भी छुट्टियां कर दी गई हैं, जो चौक चौराहे हैं जहाँ पे ट्रैफिक लाइट है, जहाँ पे ट्रैफिक में लोगों को मोटरसाइकिलों पे वेट करना पड़ता है, वहाँ पे भी शेड के लिए ऊपर से कवर किया गया है। वो अलग अलग जगहों पे कोल्ड रूम्स बनाए गए हैं। जो CHC PHC डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई हीट स्ट्रोक का अगर पेशेंट आता है तो इमीडिएटली उसके लिए रिस्पॉन्ड किया जा सके, इसके लिए वहाँ ट्रेनिंग्स दी गई हैं।
0: मौसम विभाग ने कल भी प्रदेश भर में लू को लेकर चेतावनी जारी की है। हालांकि हाथरस, मथुरा, मैनपुरी समेत पश्चिमी संभाग के जनपदों में आज रात बिजली गिरने और तेज हवा के साथ बारिश की संभावना जताई है। नौतपा की शुरुआत के साथ श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान श्री विश्वेश्वर का आज फलों के रस से विशेष अभिषेक किया गया। बाबा विश्वनाथ का अभिषेक गुलाब, लीची और आम के रस से संपन्न हुआ। मंदिर प्रशासन के अनुसार नौतपा के सभी 9 दिनों तक प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान का अभिषेक किया जाएगा। मंदिर प्रशासन ने बताया कि इस विशेष अनुष्ठान का उद्देश्य भीषण गर्मी के दौरान भगवान विश्वनाथ को शीतलता अर्पित करना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश की 7 विभूतियों समेत 66 लोगों को प्रदान किए पद्म पुरस्कार। वाराणसी की डॉक्टर एन राजम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समेत 6 अन्य लोग पद्मश्री से अलंकृत। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आगरा पहुंचकर किया ताजमहल का दीदार, स्मारक की सुंदरता को जमकर सराहा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए 5 भाजपा प्रत्याशियों का ऐलान, लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह उम्मीदवार। और प्रदेश भर में भीषण गर्मी और हीटवेव का प्रकोप जारी, मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में लू का सिलसिला जारी रहने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: पर्सनल लोन ऑफर
2: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
1: फ्री ट्रिप टू दुबई
2: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
3: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
2: तो क्या करूं?
3: कॉल उठाओ, फिर ट्राई डीएनडी ऐप पर रिपोर्ट करो, कैटेगरी सेलेक्ट करो, बैंकिंग, ट्रैवल, इंश्योरेंस और सबमिट। बस कुछ सेकंड्स का काम।
2: मतलब सबका स्पैम कम होगा?
3: हाँ, रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है। सिर्फ ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट जरूर करें। ट्राई डीएनडी ऐप, डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग।
4: नेहा सरोज
5: जी,
4: जिला मेटी ब्लैक गौरीगंज और विलेज अर्जुनपुर
5: जी। नेहा जी, और बताइए क्या कर रही थी, कैसी हैं आप?
4: मैं बहुत अच्छी हूँ सर, आप कैसे हैं?
5: हम भी अच्छे हैं, आपकी आवाज सुन ली और अच्छे हो गए। तो और नेहा जी क्या कहना चाहेंगी
4: सर? क्या
5: जी, गाना कौन सा सुनना चाहेंगी आप?
4: दिल दिया था के तुझको, दिल है मेरा तेरा
5: जी।
4: और मैं डेरी सुनना चाहूंगी
5: बिल्कुल
4: शिवम भैया को और रिया दीदी को।
5: शिवम भैया को और रिया दीदी को डेडिकेट करना चाहेंगी?
4: हाँ
5: ठीक है नेहा जी, हमने आपको
4: तो ऐसा लग, हम अपने सारे गम भूल जाते हैं
5: जी। क्या बात है, हाँ लाइफ में कई सारे लोग ऐसे होते हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं सारे गम भूल जाते हैं, अच्छा लगता है उनसे मिलना जुलना बातें करना। तो नेहा जी आप जी, नेहा जी आपकी पसंद का ट्रैक हमने निकाल लिया, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगा क्योंकि आपकी पसंद का है और जिनको डेडिकेट किया है उम्मीद करते हैं वो भी सुनेंगे, एंजॉय करेंगे ट्रैक। तो फिलहाल तो बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
4: थैंक

0: जी तो चलिए एंजॉय करते हैं दिल दिया था ट्रैक रेडियो सेट पे।
1: हर रोज दिल का रास्ता तुम्हारे घर से गुजरता था, दूरियां बढ़ती गई पर दिल फिर भी धड़कता था, आखिर एक अनजान मोड़ पर हम बिछड़ कर रह गए, जमाने से ज्यादा मोहब्बत करी थी इसलिए शायद ये जख्म सह गए।

0: जी, जब दिल टूटता है तो कुछ हाल ऐसा ही होता है। फिलहाल तो अपने दिल को जोड़े रखिए हमारे साथ, और ऐसे ही फिलहाल तो कोई कॉल हमारे साथ जुड़ चुकी है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
1: हेलो सर, प्यार भरा नमस्ते, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
0: जी आपको भी बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार, शुभ संध्या। जी, और अपना शुभ नाम भी बता दें।
1: हर वक्त धड़कने वाली आपकी अपनी जानी पहचानी श्रोता रिंकी और पिंकी बात कर रहे हैं दीवानों के शहर जिला रायबरेली से।
0: क्या बात है, रायबरेली से, दीवानों के शहर रायबरेली से हमारे पास कॉल आई है रिंकी और पिंकी जी की। तो इस समय हमारे साथ कॉल पे कौन है, रिंकी जी या पिंकी जी?
1: सर दोनों लोग हैं।
0: क्या बात है रिंकी जी, पिंकी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल करी। नमस्ते जी, कैसी हैं आप पिंकी जी? जी आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, पूरी आवाज नहीं मिल पा रही।
1: जी सर, रिंकी पिंकी दोनों लोग सर लाइन पे हैं। सर आप बताइए कैसे हैं और आपके हालचाल?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, आपसे बात हो गई, आप दोनों बहनों से बात हो गई तो हम भी अच्छे हो गए।
1: और सर आपकी आवाज सुन के और आपका कार्यक्रम सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज आपने इतने अच्छे गाने

0: बजाए, 3-6 गाने बजाए सर, बहुत मजा आया सर
1: जी। मतलब हमारे गानों से आपको गर्मी में राहत मिली?
0: जी सर बिल्कुल, क्या गाने सुनने के लिए ना हम लोगों के कान तरस जाते हैं।
1: जी जी जी बिल्कुल, आप ही की पसंद के गाने प्ले होते हैं यहाँ पे। तो बताइए आज कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
0: ना कार्यक्रम में बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आप लोग मतलब श्रोताओं को हंसाते भी रहते और गाने भी अच्छे सुनाते रहते, तो अच्छा लगता सर।
1: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी तारीफें करी। तो बस कोशिश रहती है हमारी आपसे, हमारी, कि आप खुश रहें, मुस्कुराती रहें। तो रिंकी पिंकी जी,
0: हम तो खुश हमेशा ही रहते हैं, बस हमारे जो श्रोता है ना वो लोग खुश नहीं रहते। तो हम उम्मीद करते हैं कि मतलब अब आगे से खुश भी रहेंगे और अच्छे भी रहेंगे।
1: जी देखिए, जहाँ मोहब्बत होती है वहाँ नाराजगी भी होती है, तो हमें क्या ही किसी से कहना है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि सर मैं कहना चाहता हूँ कोशिश करने वालों की सर कभी हार नहीं होती, बस आप कोशिश करते रहिए, एक ना एक दिन आपकी कॉल जरूर लगेगी, बस आप मेहनत करते रहो।
1: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे रिंकी पिंकी जी की लग गई।
0: जी सर पता, हम लोग एक एक घंटा बीत जाता सर, एक एक हफ्ते बीत जाते कॉल ट्राई करते रहते, लगती तो ठीक, नहीं लगती तो सर कोई बात, शिकायत करने से कॉल थोड़ी लग जाएगी।
1: बिल्कुल सही बात है, और ये भी पता है मोहब्बत के कारण होती है, इतने सारे लोग मोहब्बत करते हैं, इतनी सारी कॉल्स आती है।
0: मैं इसका क्रेडिट सर अपने सभी अनाउंसर और सभी श्रोताओं को देती हूँ, क्योंकि सर उनकी मोहब्बत है, उनकी दुआएं होती है कि मेरी कॉल लग जाती।
1: बिल्कुल सही बात है। तो रिंकी जी पिंकी जी हमें ये बता दी कि आज गाना कौन सा आप सुनेंगी?
0: जी सर, मूवी का नाम है सनम तेरी कसम और सॉन्ग के बोल है मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ तुम गवाही दो, और कुमार सानू की आवाज में है, और सब गाना डेडिकेट भी करना चाहेंगे। जी सर, सबसे पहले आपको और हमारे भाई हैं दिलीप राजमाही, नीरज राजमाही और समा परवीन, साहिब अंसारी, साजी अंसारी, महक अंसारी, समा परवीन, ममता गौतम, मोहम्मद फैज भाई, जावेद अख्तर सर, वकील अहमद भाई, अमीन अंसारी भाई और नेहा वर्मा और पूनम दीदी गुंजनती।
1: जी क्या बात है, तो सभी लोग खुश हो गए होंगे आपके डेडिकेशन को सुन के।
0: मुझे गाना डेडिकेट किया था उनको भी।
1: जी तो बहुत बहुत शुक्रिया रिंकी पिंकी जी, आपने हमें कॉल किया, उम्मीद करते हैं ऐसी आप जुड़ी रहेंगी हमारे साथ।
0: सर, और आपको भी सर थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी कॉल शामिल की।
1: जी तो चलिए फिर इसी बात पे एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा ट्रैक रिंकी पिंकी जी की पसंद का।

0: जी हमें लगता है जब प्यार होता है तो सबूत की क्या जरूरत होती है भाई। मैं आपसे प्यार करता हूँ, सही कह रहे ना? बिल्कुल, आपकी स्माइल बता रही है कि हम सही कह रहे हैं। तो जहां प्यार होती है, मोहब्बत होती है, वहां पे किसी गवाही की, किसी सबूत की जरूरत नहीं होती है। बस वो दिल की फीलिंग है, समझ जाया करिए। तो फिलहाल तो ऐसी कोई फीलिंग लेके आया हमारे साथ, जानते हैं कौन है वो। हेलो
1: हेलो, प्यारे अनुग्रह सर को शिव का बहुत बहुत प्रणाम।
0: जी शिव जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में आपका।
1: कैसे हैं सर आप?
0: बस आपकी दुआएं हैं, आपकी कॉल आ गई तो और अच्छे हो गए।
1: जी सर, प्रोग्राम सर बहुत दिनों से आपका सुनते थे और आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी लगती है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया जी शिव जी।
1: जी सर मैं सॉन्ग सुनना चाहता हूँ आज, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों के लिए।
0: जी
1: जी, एक दिलीप जी पे सर कर्मा फिल्म का सॉन्ग है जो फरमाया गया है,
0: जी
1: वही सर सॉन्ग सुनना चाहता हूँ और सर डेडिकेट भी करना चाहता हूँ लोगों को।
0: बिल्कुल करें।
1: सबसे पहले सर आपको और आकाशवाणी पूरी टीम को
0: जी धन्यवाद।
1: और जो भी हमारे बुजुर्ग लोग हैं
0: जी,
1: जो सर देवी प्रसाद जी हैं जुगौली ओमती नगर से, और सर जो भी बुजुर्ग लोग हमारे हैं
0: जी,
1: सभी लोगों को
0: जी। गाना कौन सा है कर्मा का, आप ये भी बता दें।
1: जी सर, इस उम्र में पूछे बीबी डू यू लव मी
0: जी। अच्छा, ऐसा कभी आपके साथ हुआ है?
1: हाँ सर, पहले तो मतलब अपनी वाइफ को भी डेडिकेट करता हूं मैं जी।
0: बिल्कुल, उम्मीद है कि आपकी वाइफ यानी भाभी जी बिल्कुल खुश हो जाएंगी आपका गाना सुन के।
1: गौरीगंज में रहती हैं
0: जी जी,
1: राजापुर में
0: जी। और उम्मीद करते हैं कि अब वो ये नहीं पूछेंगे डू यू लव मी, उनको यकीन हो जाएगा कि आप उनसे बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं।
1: जी
0: जी शिव जी, तो आपने हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम से जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो चलिए जी, तो आपकी पसंद का ट्रैक बिल्कुल है तैयार, एंजॉय करिए।
2: हो प्यार मुझसे क्या करते हो प्यार, अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी डू यू लव मी।
3: तो क्या कहा आपने?
2: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू।

0: मॉर्निंग एक्सरसाइज के बाद फिट बॉडी का फंडा, 5 ग्राम फैट और 80 कैलोरीज वाला ब्रेकफास्ट यानी रोज एक अंडा।
1: स्वस्थ रहने का फंडा, रोज खाएं अंडा। NECC द्वारा जनहित में जारी।
2: जी, लाइफ में खुश रहना जरूरी है, बहाना कोई भी हो, मोहब्बत का इजहार भी जरूरी है, कर दिया करिए, चाहे वो घर में ही क्यों ना हो। क्योंकि कई बार कुछ लोग सोचते हैं ना कि अरे घर में क्या कहना, कई तारीफ क्या करनी है, लेकिन छोटी छोटी जो फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आपको स्पेशल बना देती हैं। तो फिलहाल तो हमारे साथ कोई फॉर्मेलिटी नहीं कर रहा, कोई मोहब्बत से जुड़ चुका है, तो चलिए जानते हैं कौन है वो। हेलो।
3: हेलो, नमस्ते सर जी।
2: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है हेलो FM प्रोग्राम में आपका।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, और फोन बहुत देर से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सर जी वेलकम अब हुआ है सर जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: ये सब आप ही लोगों की मोहब्बत है।
3: एक एक बात है सर जी, बहुत शिद्दत से और बहुत मन से फोन लगाते हैं सर जी, लेकिन लग जाता है फोन।
2: देखिए, ये आपकी मोहब्बत का ही कमाल है, सच्ची मोहब्बत है
3: जी।
2: जी तो बताएं तालिब जी, कौन सा गाना सुनना चाहेंगे, किसे सुनाना चाहेंगे?
3: यार हम गाना सुनेंगे फेरा सजी मूवी का है, और मेरी जोहरा जबी, ये हिमेश रेशमिया भाई साहब का गीत है, और मैं तालिब अंसारी बोल रहा हूँ राजा कटरा बाराबंकी से, और ये गाना डेडिकेट रहेगा आसिफ साबिर और अकबर भाई को।
2: जी तालिब जी, बिल्कुल हमने आपका सॉन्ग निकाल लिया है, तो प्ले होने के लिए बिल्कुल तैयार है।
3: जी जी, थैंक यू सर जी, टाइम बहुत कम है सर जी, दूसरे कॉल भी मिल जाए।
2: जी जी, धन्यवाद ये सोचने के लिए। फिलहाल तो चलिए आपकी पसंद का ये ट्रैक एंजॉय करते हैं हम और आप।
3: थैंक यू सर जी।
2: जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।

0: जी फिलहाल तो ये सोमवार की शाम है और इस शाम के आखिरी कॉलर कौन है ये जानने का टाइम आ चुका है, क्योंकि 7:53 हो गए हैं। तो फिलहाल तो अनुग्रह को लेनी होगी इजाजत, लेकिन चलिए पहले जानते हैं कि कौन है और कौन से गाने की फरमाइश करी उन्होंने। हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी।
1: सर मैं सत्यम कुमार
0: जी,
1: परसेंदी कैसरगंज बहराइच से।
0: जी सत्यम जी,
1: रेनबो के जरिए सुप्रसिद्ध संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लक्ष्मीकांत को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ आज उनके पुण्यतिथि पर।
0: जी और बताइए, और क्या कहना चाहेंगे आप?
1: सर कहना यही चाहूंगा कि जैसे कि अभी कुछ देर पहले एक श्रोता ने कहा कि जो लोग कॉल मतलब करते हैं नहीं लगता है तो शिकायत करते हैं।
0: जी वो तो देखिए मोहब्बत है आपकी, वो शिकायतें जायज हैं क्योंकि मोहब्बत है तो शिकायतें हैं।
1: फिर आज बात हो रही है।
0: जी जी, तो सत्यम जी गाना कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: सर गाना मैं सुनना चाहूंगा। सर पहले कुछ नाम ले लूं?
0: बिल्कुल।
1: सर सीतापुर से हैं
0: जी
1: सिस्टर समा परवीन अंसारी, लखीमपुर से हैं सिस्टर साहिबा अंसारी, और एक है कहीं के बबलू यादव जी।
0: जी
1: सर अब गाना मैं बता दूं।
0: हाँ हाँ।

0: सत्यम जी आपको पता है जी,
1: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत,
0: मैं
1: गाना मुझे बहुत पसंद है
0: जी। आपको बताऊं सत्यम जी, आपने इतना अच्छा गाना गाया है, जिनको आपने डेडिकेशन डेडिकेट किया है गाना, उनको आपकी आवाज का गाना बहुत अच्छा लगा होगा।
1: ये तो करना ही पड़ता है
0: जी जी। अच्छा इसलिए नाम ले रहे कि वो लोग आपका नाम लेते, मतलब मोहब्बत वोब्बत कुछ नहीं है?
1: ऐसा नहीं है सर, तो अपने दोस्तों से, एफएम रेनबो से
0: जी,
1: आकाशवाणी लखनऊ, विविध भारती लखनऊ सबसे मोहब्बत करते हैं
0: जी जी,
1: आप लोगों से
0: जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सत्यम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करते हैं जिनको आपने डेडिकेट किया वो गाना सुनेंगे और एंजॉय करेंगे। तो धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए
1: जी, थैंक यू सर
0: जी। तो ये थे सत्यम जी, और अब टाइम हो गया 7:55, जो कि कह रहा है कि फिलहाल तो अनुग्रह ले इजाजत इस प्रोग्राम से, फिर आपसे मिलूंगा किसी और दिन, ये वादा है आपसे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो। और भाई हमारे चलना जरूरी भी है, क्योंकि आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। तो फिलहाल तो आज कोई जा रहा है, लेकिन कोई आ भी चुका है, कौन है वो, बस थोड़ी देर आप इंतजार करिए, जान जाएंगे। कोई खनकती आवाज के साथ आ रहा है, अब आप सुन के बताइएगा कि आवाज खनकती हुई है कि नहीं। फिलहाल तो एंजॉय करिए ये ट्रैक अपने रेडियो सेट पे।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं। आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।

नमस्कार, रात के 8 बजे हैं, आप सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 66 विभूतियों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। आज के समारोह में उत्तर प्रदेश की एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया,

0: FM Rainbow पर।
1: ये है 100.7 FM Rainbow, धड़कन लखनऊ की।

लोग कहते हैं कि इश्क रोग है या कोई बला, ये बात समझ के परे है, लेकिन एक बात पुख्ता तौर पर तय है कि इश्क इंसान को बेहतर से बेहतरीन बना देता है, एक दूसरे को एक दूसरे के जैसा बना देता है। मोहब्बत करने वाले बड़े नादान होते हैं, मोहब्बत करने वाले बड़े नादान होते हैं, हासिल कुछ नहीं होता मगर बदनाम होते हैं। रात के 8:19 का वक्त आप सुन रहे हैं आप शाह, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर रचा के साथ।

कहते हैं कि जीवन के हर रंग हर एहसास को बेहद नजाकत से बयां करने वाली सदा को ही गजल कहते हैं। गजल सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि जीता जागता एहसास है, वो एहसास जिससे ना तो कहा जाता है ना पढ़ा, बस महसूस किया जाता है, कभी किसी की आंखों में तो कभी किसी के चेहरे में।

इस बात को एक प्यार भरे दिल से बेहतर कोई समझ नहीं सकता। जिसे आप चाहते हो जब वो आपके सामने हो तो यकीनन वो वक्त दुनिया का सबसे खूबसूरत लम्हा लगता है, और फिर दिल बस यही चाहता है कि यूं ही सामने कोई बैठा रहे, हाथों में हाथ ली और ये वक्त यूं ही गुजर जाए। 8:35 का वक्त, आपशार इस वक्त आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर आपकी मेज़बान रिचा के साथ।

इश्क अगर पाक हो तो इबादत बन जाता है, इश्क अगर पाक हो तो इबादत बन जाता है, ये वो लम्हा है जो कयामत बन जाता है। हमने जब भी पुकारा उन्हें दिल से, हमने जब भी पुकारा उन्हें दिल से, उनका आना भी जैसे एक आदत बन जाता है। ठीक वैसे जैसे जब जब आप हमारी ज़िंदगी में आते हैं, हर पल हर लम्हा सबसे खास बेहद खुशनुमा होता है। रात के 8:40 का वक्त हो चुका है। आज के आबशार की इस आखिरी गज़ल से दीजिए आपकी दोस्त आपकी मेज़बान रिचा को इजाज़त, लेकिन आप कहीं मत जाइए। ठीक 8:45 पर समाचार संध्या और ठीक 9 आपका मोस्ट अवेटेड एंड फेवरेट शो पॉप टाइम लेकर हम होंगे वापस हाजिर आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। तब तक सुनते रहिए या जुड़े रहिए।

0: के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और एसडीआरएफ की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधानी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार।

0: मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भील, रतिलाल मोहनलाल, भूरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: Against the assessment of
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: से भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए दो दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी

0: Panchatic, West Bengal, Konkan, Goa, Saurashtra, Kutch, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. According to the Met Department, thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are likely to prevail over Bihar, Kerala, Mahe, Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Lakshadweep, Madhya Maharashtra, North Interior Karnataka and Northeastern region tomorrow. At the Asian Under-23 Wrestling Championships in Da Nang, Vietnam, Indian wrestlers put up a dominant show, securing 2 gold medals today. In the 57 kg freestyle category, Akshay Tanaji Dhere defeated Yelaman Amangal Diev 4-2 to claim the top podium spot. Meanwhile, in the 97 kg freestyle category, Vicky also struck gold after a closely fought 7-5 victory over Sherzod Poyonev. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu presents Padma Awards 2026 at Rashtrapati Bhavan. Noted film actor late Dharmendra and legendary violin maestro Dr. N. Rajam honored with Padma Vibhushan. Finance Minister Nirmala Sitharaman launches initiatives aimed at strengthening MSMEs and accelerate modernization of rural industries. Joint operation to evacuate stranded tourists at Gulmarg following technical fault in cable car system concludes. All tourists rescued safely. Foreign ministers of India, Australia, Japan and US to participate in Quad meeting in New Delhi tomorrow. IMD forecasts severe heatwave conditions over Haryana, Delhi, Punjab, Uttar Pradesh and Rajasthan during next 2 to 3 days. And in wrestling, Indian grapplers Vicky and Akshay Dhere clinch gold in men's freestyle category at Asian Under-23 Championships in Vietnam. That's all in the news at 9. Good night.
1: साइबा, साजिया, शमा, पिंकी रिंकी, महक अंसारी और गुलफशाह सिद्दीकी भी हैं, साथ में एमन नवाब भी हैं। चलो बड़ी अच्छी बात है, आज एक नया नाम आपने जोड़ा है, स्तुति आ चुकी है हमारे साथ, स्तुति वाजपेयी। और आपने कहाँ से हमें लिखा है, हमेशा की तरह आपका ईमेल दुगावा रानीगंज लखनऊ से है। कैसी हैं आप पहले तो मुझे ये बताइए। और आपने लिखा है कि मेरी बेजुबान मेल को अपनी आवाज देने वाली रिचा मैम को स्तुति वाजपेयी का प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू सो वेरी मच स्तुति, इतने प्यार से आपका ईमेल हम तक भेजने के लिए। और आप लिखती हैं आप आई तो बाहर आ गई और बहुत प्यारी लग रही है। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया, आप मुझे चुपचाप देख लेती है ना। रजनीगंधा तक हमारे साथ आप रहने वाली, हम चाहते ही रहिए क्योंकि आज का रजनीगंधा बहुत खास है। भारतीय सिने जगत के कैसे कलाकार, एक अभिनेता को हम याद करने वाले हैं जिन्हें हमने खोया आज, लेकिन फिर वही बात है कि वो ऐसी शख्सियतें हैं जो कहीं नहीं जाती, हमेशा रहती हैं हमारे आपके साथ। तो सुनना बिल्कुल नहीं भूलना, और आप रहेंगे तो हमेशा सफर और ज्यादा अच्छा होता है। फिलहाल तो ये अच्छा है कि 9:16 ही हुए हैं अभी, बहुत सारा वक्त है हमारे आपके पास एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए। लेकिन इस जुड़ाव को और पक्का मजबूत करना है तो आपको आना पड़ेगा हमारे साथ FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। तो जब तक आप आते हैं तब तक गाना आप तक हमने भेज दिया, गाने को एंजॉय कीजिए, सुनते रहिए आपका अपना 100.7 FM रेनबो धड़कन लखनऊ की, कहीं बच जाइए।

अच्छा फिलहाल आपको घाघरा वगैरह घुमाने की जरूरत नहीं, आपसे घूम घाम के सिर्फ और सिर्फ आकर के जुड़ जाइए फिर आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com से, क्योंकि यहाँ पर आपके ईमेल से ही जो है ना सारा मजा है, सारा चार में जब आप आते हैं आपके ईमेल्स के साथ हमसे जुड़ते हैं तो फिर वाकई चार नहीं आठ चांद लगते हैं। वैसे ही जैसे आप कभी कभार लिखते हैं कि आपके आने से चार चांद नहीं आठ चांद लग जाते हैं, तो हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके ईमेल्स आठ चांद लगाते हैं बहुत बार हर बार। अच्छा मेरे पास अभी जो ईमेल है वो है विजय पाल यादव जी का, और हमेशा की तरह आपने लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल भेजा है। आपने लिखा है कि गजल ने आपको बहुत पसंद आई, आप शायर अच्छा लगा और साथ ही इस वक्त का प्रोग्राम भी आपको अच्छा लग रहा है, रजनीगंधा तक हमारे साथ रहने वाले, बहुत शुक्रिया धन्यवाद। जब आप ये कह देते हैं कि आप रजनीगंधा तक रहने वाले तो सुकून पड़ता है कि अकेले नहीं बैठेंगे, आप भी होंगे हमारे साथ। और आपके साथ बबलू यादव, विजय पांडे, ग्राम वपोस, ललहवा जिला खीरी से हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया। बोनू सेठ लिख रहे हैं, कोयल जैसी शहद वाली मीठी आवाज की मलिका, पढ़ने में बड़ा मजा आता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपके ईमेल के लिए बोनू जी। ऐसे ही अपने ईमेल्स भेजते रहा करिए ताकि हमें लगे कि आप

यहाँ पर और फिर जमाएंगे ईमेल आपके अच्छे वाले, तो हमें भी अच्छा लगेगा। नाम राज जी आ चुके हैं, आपका नाम इतना बढ़िया है, जैसे हम ये नाम लेते हैं बड़ा सुकून पड़ता है। और आपने हमें जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से आपका ईमेल भेजा है, आपके साथ रामराज, राजू भान और शंकर और मनीष, नीरज, मधु बजरंगी काका जो हैं सब मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं और कार्यक्रम आपको अच्छा लग रहा है, इसके लिए दिल से आपका धन्यवाद। अगला ईमेल किसने किया? अशनूर नूर अंसारी जी हैं हमेशा की तरह, और आपके साथ डीजे प्रधान, तस्लीम मोइन, शकील अहमद फरियाद, शाहरून नूर अंसारी खुद, सारे के सारे मिलकर प्रोग्राम सुन रहे हैं। सुनिए, ये रेनबो कैफे नहीं है, आपको बता दूं, रेनबो कैफे आपको ट्यूसडे और सैटरडे सुनने को मिलता है। हाँ, ये और बात है कि बीच बीच में कुछ हरियाणवी, कुछ भोजपुरी गाने आप तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वैसे रेनबो कैफे आप ट्यूसडे एंड सैटरडे सुन सकते हैं, क्या समझे, नोट कर लीजिएगा इस बार इसको, ठीक है। अगला ईमेल जिसने भेजा है, ये बड़ी जानी पहचानी सी एक ईमेल है, जब मेरे पास आता है ना तो इसको खोलने से पहले हमेशा कहती हूँ नॉक नॉक, जानते हैं, क्योंकि ये है हाउस दीक्षित। इस ईमेल से मेरे पास ईमेल आता है और जब हम इसको खोलते हैं तो फिर अंदर से निकलते हैं अनिल कुमार दीक्षित जी, एलडीए कॉलोनी कानपुर रोड से हमेशा की तरह लिख रहे हैं, गुड इवनिंग, नाइस टू हियर फ्रॉम योर वॉइस, वेरी गुड प्रोग्राम, आफ्टर लॉन्ग टाइम दिस धमाल शो लिसन बाय मी। हाँ, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि आप शायद बहुत दिनों बाद हमसे जुड़ रहे हैं, हमें भी इंतजार था कि आगे आप कहां चले गए। बहरहाल, आपका जो आशीर्वचन आते हैं मेरे पास उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने लिखा लॉन्ग लिव, गॉड ब्लेस यू, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी प्यार भरी शुभकामनाओं के साथ हमसे जुड़ने के लिए। ऐसे ही जुड़ा कीजिए, अच्छा लगता है, थोड़ी सी और प्रोत्साहन मिल जाता है कि हाँ, हमारे पास सुनने वाले कितने अच्छे हैं, दिल से चाहते हैं। अच्छा, आनंद तिवारी भी हैं, लिख रहे हैं टूट गया दिल, अरमान वही है, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, देखें क्या क्या लिखा आपने, टूट गया दिल पर अरमान वही है, दूर है फिर भी प्यार वही है, जानते हैं फिर ना मिल पाएंगे कभी, मगर इन आंखों को आज भी इंतजार वही है, हर दिल का एक राज होता है, हर बात का एक अंदाज होता है, जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, इस पर जरा जोर दे रहे हैं हम, जब तक ना लगे बेवफाई की ठोकर, हर किसी को अपनी मोहब्बत पर नाज होता है। अभी क्यों लिखा है ये आप ही जानते होंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो है परेशान होने की जरूरत नहीं, रेनबो आपका सच्चा साथी हमेशा आपके साथ रहता है, आपके दिल के करीब रहता है, तो बाकी सारी परवाह छोड़िए, चुपचाप सिर्फ और सिर्फ 100.7 FM रेनबो ट्यून इन कीजिए, जहां पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आपका मोस्ट अवेटेड, मोस्ट फेवरेट शो, जिसे आप कहते हैं रेनबो नहीं पॉप टाइम इस वक्त, और ये जो शो है ना, ये आप अभी जिसके साथ सुन रहे हैं वो है आपकी दोस्त, आपकी आज रचा, और आपने जहां से लिखा है वो है दारुकिया मल्लावा हरदोई यूपी, जबरदस्त प्रोग्राम, ये भी लिखा है आपने, तो चलिए इसी बात पे अगला गाना आप तक दे रहे हैं, आपको बड़ी याद आ रही थी ना किसी की, तो इस गाने को सुनिए और शायद वो यादें जो आपके दिल में है कहीं कुछ ये इसमें पूरा कर जाए काम। 9:26 सिर्फ और सिर्फ, अभी भी बहुत सारा वक्त है आपके साथ जुड़े रहने के लिए।

9:43 का वक्त हो चुका है। बस आपके ईमेल्स बड़ा सुकून देते हैं, इतने सारे ईमेल्स मेरे पास हैं, कुछ नाराजगी से भी भरे आ रहे हैं कि भैया हमारा ईमेल क्यों नहीं पड़ा। तो जैसे आपका ईमेल मेरी आंखों के सामने आएगा उसे हम तुरंत ऑन एयर कर देंगे। तो सुल्तान रजा साहब, आपका ईमेल अभी अभी मुझे मिला है, हमेशा की तरह आपने लिखा है रॉकिंग रिचा पी, कैसी हैं आप? तो आपकी दुआओं से बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, मजे में है। शायद आपको मेरी आवाज से लग भी रहा होगा मैं ठीक ठाक लग रही हूं ना, और आपने हमें हमेशा की तरह कुतुब खाना सब्जी मंडी बरेली से आपका ईमेल भेजा है। और आपके साथ इकबाल, जीशान, अफजल, मोनीश, सादिक और आपके अम्मी पापा, सारे के सारे लोग मिलकर शो को एंजॉय कर रहे हैं। और आपने लिखा वाह क्या गाना बजाया कांटा लगा, चलो बड़ी अच्छी बात है, इसीलिए लगाया था ताकि दिलों के से दिल के जो कांटे हैं ना वो आपस में मिल जाएं और आप यहाँ वापस हमारे साथ जुड़ जाएं। और आपने जो प्यारी सी शायरी लिख के भेजी है पढ़नी बनती है। आप लिख रहे हैं जब चाय से भरा कप हाथ में हो, अर्ज किया है कि जब चाय से भरा कप हाथ में हो, जब कप रखने

की जगह ना हो, मतलब कुछ भी है, ठीक उसी समय आती है जोरदार छींक। आपने लिखा है हैप्पी टी टाइम, तो भाई आप पीते रहे चाय, क्योंकि अभी तो हम यहाँ बैठे हुए और आपके लिए कुछ गाने ढूंढ ढूंढ कर आप तक पहुंचा रहे हैं। हाँ, चाय पियेंगे पक्का एक दिन जरूर से आपके साथ। बहरहाल आपने ईमेल किया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगला ईमेल जो है वो है विवेक कश्यप जी का, और आप लिख रहे हैं, विवेक जी क्या लिखा है आपने, फटाफट पढ़ दीजिए। अरे खुल जाओ भाई। विवेक जी ने लिखा है कि प्रोग्राम आपको बहुत बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, आवाज पसंद आ रही है, और आपके साथ नहीं आपने कहाँ से लिखा है, मैं जिला सीतापुर से आपका ईमेल है, और कोई भोजपुरी गाना तो ठीक है बच जाएगा, हालांकि रिक्वेस्टेड नहीं है, बट फिर भी अब चूंकि वो एक प्रथा है बजा देते हैं, तो यहाँ भी बजाएंगे, परेशान मत, तो बिल्कुल बजाएंगे। अरविंद कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धर्मा देवापोस जिला मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से लिख रहे हैं, एफएम रेनबो लखनऊ की खनकती हुई आवाज का आपको विशेष सलाम, धन्यवाद, शुक्रिया, करम, मेहरबानी इतने अच्छे विशेषण के साथ हमें एड्रेस करने के लिए। और आपने लिखा है कि पूरे परिवार के साथ रेनबो लखनऊ के जो प्रोग्राम है उसको सुन रहे हैं, पॉप टाइम जोरदार धमाकेदार रोज सुनने को मिलता है, भूले बिस्तरे गीत पुराने दिनों की याद दिला जाते हैं, और अल्ताफ रजा के गीत भी कार्यक्रम में जोड़िए। ठीक है, इसको नोट कर लेते हैं, और अगली बार कोशिश करेंगे कोई अच्छा वाला उनका गाना जरूर से लेकर आप तक आए। और आपके साथ गोविंद, प्रतिमा, प्रतिष्ठा, तन्वी, दीपा, श्याम कुमारी, ये सारे लोग हैं जो हमें इस वक्त सुन रहे हैं, जिला मिर्जा उत्तर प्रदेश धर्मादेवा पोस्ट छठहा से। थैंक यू सो वेरी मच आपके ईमेल के लिए। और ताली बंसारी भी आ चुके हैं और लिख रहे हैं, ताली बंसारी लिख रहे हैं राजा कटरा से, अच्छा बाकायदा उन्होंने लिखकर भेजा है, और फुल गर्मी, फुल एंजॉय और कूल से भरा शो, अच्छा कूल से नहीं मतलब, चलो ठीक है, अच्छी बात है। और आपने लिखा जिसके गीत एक नंबर, थैंक यू सो वेरी मच आपके प्यारे ईमेल के लिए। इंद्रपाल जी मेरे साथ जुड़ गए और लिख रहे हैं, पिछले हफ्ते रेडियो स्टेशन हम भी घूमने आए, अच्छा राय साहब से मुलाकात हुई आपकी, आपको अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए, आपसे हमारी मुलाकात नहीं हुई, कोई बात नहीं, अगली बार जरूर से किसी दिन किसी रोज होगी। और आपने हमें सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है, थैंक यू, शुक्रिया आपके ईमेल के लिए इंद्रपाल जी। राज किशोर जी क्या लिख रहे हैं, चलो पढ़ लेते हैं। आपने हमें रंगीला नगर लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल भेजा है, प्रोग्राम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और कुछ नाम भेजे हैं, राजन, राजकिशोर, ओमकार प्रकाश, ओम प्रकाश, अंशिका, आयुष, विराज और गोलू इतना प्यारा नाम है जिनका, तो कैसे होंगे ना, बढ़िया वाले होंगे, तो कहिए उनको भी साथ साथ बैठ करके सुनते रहे। और जब आप सब साथ रहते हैं, हर बार हम इस बात को कहते हैं, जितनी बार आपसे मिलेंगे हम हर बार यही बात कहेंगे कि जब सब साथ होते हैं, आपका साथ होता है, तो फिर वाकई बड़ा मजा आता है, तभी और चार चांद लगते हैं, आठ चांद लगते हैं। जितेंद्र नामदेव जी लिख रहे हैं कि प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, चारों तरफ म्यूजिक ही म्यूजिक है, लो तो इसी बात पे जोरदार ये फुल वॉल्यूम करके सुनिए, क्योंकि जब आप यहां से वहां तक रेडियो को बजाएंगे, तो जो आपने लिखा है ना कि बहुत अच्छा लग रहा है, सबके कानों तक एक अच्छा म्यूजिक जाएगा, इससे अच्छी बात और क्या होगी। और आपके साथ हैं अंजू नामदेव, कनक नामदेव, आरोही, सौम्या, और आपने हमें जिला शहडोल मध्य प्रदेश से आपका ईमेल भेजा है, बहुत शुक्रिया आपके ईमेल के लिए। इतनी दूर दूर से जब आप सबके ईमेल आते ना, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हम दूर तक अपनी जो आवाज है उसको पहुंचा पा रहे हैं। रामकृष्ण धकल जी का भी ईमेल आया, लिख रहे हैं, नमस्कार, धड़कन लखनऊ की लोकप्रिय कार्यक्रम पॉप टाइम की संचालिका रचा को और सभी साथियों को आपने बहुत नमस्कार प्रेम भेजा है। साथ ही आपने लिखा है कि सुदूर पूर्व नेपाल से आपके रेडियो का आप रेगुलर लिसनर हैं, अक्सर सुनते हैं ये प्रोग्राम, इससे पहले का रेनबो कैफे भी सुनता आया हूं, खास बात क्या है कि आपको हमारी प्रस्तुति आकर्षक लग रही है, इसके लिए बहुत धन्यवाद, शब्द चयन और स्पष्ट उच्चारण विशिष्ट प्रतिभा है, ये आपने लिखा, इसके लिए भी दिल से आपका धन्यवाद, क्योंकि जब ऐसी कोई तारीफ लिखता है तो लगता है कि हाँ ठीक ट्रैक पर जा रहे हैं हम बाकी कुछ कमियां हैं तो वो आप बताएंगे, उसको हम जरूर से दूर करेंगे। आपने जो लिखा है, जो कंफ्यूजन है, हाँ इसको डेफिनेटली बाय द टाइम दूर करने की कोशिश की जाएगी। बहरहाल फिलहाल तो पॉप टाइम आप सुन रहे हैं और कुछ गाने आप तक पहुंचाने की कोशिशों में हम लगातार हैं। 9:38 9:38 बाय स्टूडियो क्लॉक एंड यू ऑल आर लिसनिंग पॉप टाइम विद योर वेरी ओन आरजे रिचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर। अगला गाना वापस आप तक भेज रहे हैं, सुनते रहिए, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए FM आकाशवाणी लखनऊ @gmail.com पर। फटाफट ट्यून इन कर लीजिए, TUNE ट्यून इन, कैसे बोलेंगे इसको करके बोल के बताइएगा, ठीक है, बहरहाल गाना सुनिए।

लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप थोड़ा सा नहीं, आप पूरी तरीके से इस वक्त मेरे साथ डांस कर रहे होंगे, आपके पैरों की थिरकन लगातार बता रही है। तब जब आपके ईमेल थोड़े से ऊपर नीचे करते आ रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे इतने इतने क्लब करके आपने लिख दिया कि मुझे पढ़ने में भी कई बार दिक्कतें हो रही है, और ये साफ जाहिर हो रहा है कि हाँ भैया ठीक है, आप डांस करते करते करते मुझे सुन रहे हैं। हालांकि इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती, ये बात डांस करने वाली है ही, जब गाने ऐसे बजेंगे तो जाहिर सी बात है आपके पैर थिरकेंगे। बहरहाल एम के राज जी का ईमेल है मेरे पास, और आपने में भानपुर जिला लखीमपुर खीरी से आपका ईमेल भेजा, लिख रहे हैं कि तहे दिल से नमस्कार पूरी रेनबो टीम को, कार्यक्रम प्रस्तुति हर घंटे लाजवाब है और लाइव सुनते हैं, एक भी एपिसोड मिस नहीं करते। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता कि आप एक भी एपिसोड मिस ना करें। तभी तो कहते हैं कि रेनबो से जुड़े रहिए, 100.7 एफएम से जुड़े रहिए, दिलों की धड़कन है, आपके दिल की धड़कन है, लखनऊ की धड़कन है, और अब तो पूरी दुनिया में हम गूंज रहे हैं ना। और आपने लिखा है कि आरजे की बातों में वो जादू है जो हर श्रोता को कर दे कायल, कायल की ठीक करिएगा, है ना। और गाने तो कमाल है ही, आपकी एंकरिंग शो में चार चांद लगा देती है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद इतनी शिद्दत से हमें सुनने के लिए, वरना तो बस यही है कि बस हो ही रहा है जो हो रहा है आप सबके सौजन्य से। आपने हमें लिखा है आपका पक्का श्रोता मुकेश कुमार, मुनीश कुमार राज, थैंक यू सो वेरी मच। तो अगर आप हमारे पक्के श्रोता है ना, तो हम भी आपके पक्के वाले दोस्त हैं, हमें पता है कि आप हमारे साथ रहते हैं, हमें सुनते हैं, और तभी तो देखो ना इतना सब कुछ बढ़िया हो जाता है। जावेद अख्तर साहब आ चुके हैं हमेशा की तरह, लिख रहे हैं कि गुड इवनिंग, एक से बढ़कर एक गाने बज रहे हैं, कार्यक्रम में भूचाल सा आ गया है, और आप लिख रहे हैं क्या तारीफ करें, बस कानों में जैसे ही आवाज पड़ती है तो दिल को राहत मिल जाती है। और आपने हमेशा की तरह रेशमी नगरी मुबारकपुर आजमगढ़ से आपका ईमेल भेजा है, आपके साथ शमशूल कमर राही, बेगम रुखसार और रकीबा और शाहीन भी हैं जो इस वक्त सुन रही हैं। विपिन कुमार का ईमेल आ गया है, और आप लिख रहे हैं कि कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आपने क्या भेजा है, ये खुल जाए, खुल नहीं रहा है, पता नहीं आपने क्या भेजा, कुछ अच्छा ही भेजा होगा, बट बहुत शुक्रिया इसके लिए, आपके ईमेल के लिए। और अगला ईमेल जो है वो नाजिम उस्मानी का है, और आप लिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, सही बताइए, दिल से बताइए कि ऐसा कुछ है। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है और आपकी आवाज है, चलो अच्छी बात है, मान लेते हैं। और आपने लिखा है कि सभी सुनने वाले साथ में हैं इस वक्त आपके, और ईमेल भी करते हैं, और आपने हमें महमूदाबाद सीतापुर से आपका ईमेल भेजा है, थैंक यू नाजिम जी, आगे भी ऐसे ही ईमेल भेजते रहिए। रामराज जी आपका ईमेल हम ऑलरेडी शामिल कर चुके हैं, बट आपने भेजा उसके लिए शुक्रिया। सुल्तान रजा साहब, शायद आप अपना ईमेल आज सुन नहीं पाए, बहरहाल आपका ईमेल हमने उसी प्यार के साथ जैसे आपने भेजा था ना रॉकिंग रचा करके, उसको वैसे ही पढ़ दिया था। स्तुति, आपने जो लिखा हमने उसे चुपचाप पढ़ लिया है, ठीक है। सावित्री देवी भी आ चुकी है हमारे साथ, और आपने लिखा है कि प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है, बरगदी पोस्ट अर्जुनगढ़ डिस्ट्रिक्ट लखनऊ से आपने आपका ईमेल भेजा है, थैंक यू, शुक्रिया ईमेल के लिए। और आपके साथ हमारे साथ हैं अनंत, ईशान, गुड़िया, ज्योति, गुड़िया भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, गुड़िया से कहिए सिर्फ सुने नहीं, धमाकेदार डांस फ्लोर पर डांस करती रहे, साथ में थिरकती रहे, और अगर कोई मना कर रहा है तो उसको भी साथ में ले आए। जय का ईमेल आ चुका है, होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से, लिख रहे हैं प्रोग्राम सुपर से भी ऊपर, बहुत शुक्रिया जय आपके ईमेल के लिए, सदाशिव हमारे साथ हैं। और आपने लिखा दिल का दर्द सुनने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, पर जब एफएम पर गाना बजता है तो पैर अपने आप थिरक जाते हैं। क्या बात, ये हुई ना बात असली वाली की, वाकई में जब एफएम पे गाने बजते हैं तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि भैया नाचो या फिर डांस कर लो या फिर पैर थिरका लो, ऐसा कुछ नहीं होता, वो अपने आप ही होता बिना किसी के कहे। और आपने सलेमपुर मंडेरी जिला सीतापुर से आपका ईमेल भेजा, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आपने वो भेजे इमोजीज जो होते हैं ना अच्छा लगने वाले, तो बहुत शुक्रिया, 8 भेज दीजिएगा अगली बार, तो पूरे 8 चांद हो जाएंगे। बट एनीवेज आपका ईमेल आया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट ईमेल किसने में भेजा है?

रोशनी रावत बड़ी देर के बाद दिखाई पड़ी है मुझे, हमेशा की तरह अपनी रोशनी बिखेरती हुई आ गई हैं। प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा, लिख रही आते आतंक जैसे शुरुआत करती अच्छी बात है जो आप लिख देते हो ना, रोज रोज तो पढ़ के अच्छा लगता है। लिख रही मत पूछिए कितना अच्छा लग रहा है, एक शब्द में बोलूं तो कमाल धमाल है। शुक्रिया धन्यवाद आपके ईमेल के लिए, और आपने हमें तहसील सफीपुर जिला उन्नाव से आपका ईमेल भेजा है। मिश्रा की तरह चंडीगढ़ में है इस वक्त आप, और आपने लिखा है अर्ज किया है, यूं तो तन्हाइयों का सन्नाटा है हर तरफ, पर कानों को हर रोज आपकी आवाज सुनने की चाहत है। तो सेम है, हमें हर वक्त हर बार आपके ईमेल्स की चाहत रहती है। सादगी में भी कमाल की अदा रखते हैं, वो चेहरा ऐसा है बस देखते रहने को जी चाहे। तो आपका ईमेल ऐसे हैं जिनको पढ़ने को जी चाहे, बस वही वाली बात है ना। निसार अली आपका जी, आपका ईमेल मिला, बहुत शुक्रिया इसके लिए। विपिन जी आपने वापस ईमेल भेजा, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, धन्यवाद दिल से। रवि कुमार, राहुल रवि मेरे साथ हैं, और रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल हैं, ये सारे लोग मिलकर इस वक्त सुन रहे हैं। अम्बाला हरियाणा से आपका ईमेल है, 9:55 हो चुके हैं, सारे ईमेल्स को फटाफट हम शामिल कर ले, किसी का छूट ना जाए, छूट जाए तो भैया माफ कर दीजिएगा। हमेशा की तरह जय लिख रहे हैं कि सुपर से भी ऊपर सोनी के नखरे चलो अच्छी बात है कि गाना को पसंद आए इसके लिए। नीलू लिख रही है आपकी हंसी के मालिक खुद बनिए, वरना यहाँ रुलाने वाले लोग बहुत बैठे, तभी तो देखो आपके साथ हम साथ साथ हंस रहे हैं। आपने लिखा है गाना सुनकर ही जान गए थे कि आप हैं, और टेंशन ना लो, हम आपका साथ 1 बजे तक साथ निभाएंगे, अच्छा घर तक चलेंगे। चलो बड़ी अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कि आप हमारे साथ चलिएगा, और आपके साथ साथ पीहू, रोशनी, बबीता, स्नेहा, सोनी, वंदना, मनु को नमस्कार आपने बोला है, तो चलिए आपका नमस्कार सब तक पहुंच चुका है। तेज बहादुर यादव जी भी आगे, टाइम भागा जा रहा है, और आपने बड़े प्यार से आपका ईमेल भेजा, सुपर डुपर गाने आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है, आवाज की मिठास अच्छी लग रही है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तेज बहादुर जी, आपने ईमेल किया, दिल से धन्यवाद, ऐसे ईमेल भेजते रहिए। मोनू सेठ जी वापस आ चुके हैं, आपको प्रोग्राम अच्छा लगा, धन्यवाद। राजन शर्मा जी आपने प्रोग्राम को पसंद किया, दिल से शुक्रिया उसके लिए आपका। अगला ईमेल और एक हम फटाफट ले लें, और उसके बाद सीधा आपके लिए पहुंचेगा गाना। तो रणधीर गुप्ता जी आपका ईमेल मैंने शामिल किया था, शायद आप सुन नहीं पाए, बट कोई बात नहीं, आपने वापस ईमेल भेजा तो वापस आपके नाम के साथ, और 9:56 हो चुके हैं, मतलब ये कि अब फाइनली इस शो को जिसे आप कहते हैं पॉप टाइम, वाइंड अप करने की है बारी। लेकिन बस आपसे गुजारिश इतनी है कि आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अगला जो घंटा भी है ना वो बहुत खास होने वाला है, रजनीगंधा जब हम लेकर के आते हैं, और आज का रजनीगंधा तो वैसे भी विशेष है क्योंकि याद करने वाले हैं भारतीय सिने जगत के एक ऐसे अदा कलाकार को, अभिनेता को, जिनके बारे में आप जितना बोलेंगे वो कम होगा, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने भारतीय सिने जगत को अपनी मौजूदगी से हमेशा गुलजार रखा। फिलहाल 9:57, दिस इज आरजे रिचा साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, बट हम आपके साथ रहने वाले हैं अगले घंटे भी, सुनते रहिए, जुड़े रहिए, कहीं मत जाइए, आपके अपने 100.7 FM रेनबो को।

अच्छा ये जो गाना बजाया ना इसलिए बजाया कि थाड़े रही हो कहीं मत जाइयो, बस थाड़े रही हो 100.7 FM रेनबो सुनते रही हो, अगला गाना प्रोग्राम रजनीगंधा के साथ रही हो, ठीक है? फिलहाल जुड़े रहिए।

नमस्कार, रात के 10 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने यह पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने संभल में डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर ग्राम पंचायत सचिवालय असमोली तथा सचिवालय परिसर स्थित पुस्तकालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सचिवालय में उपलब्ध फर्नीचर, कर्मचारियों एवं अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने पुस्तकालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों से संवाद कर उन्हें उज्जवल भविष्य हेतु प्रेरित किया। प्रदेश सरकार के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने वाराणसी के सिगरा स्थित कार्यालय से आयुष विभाग के अधिकारियों, चिकित्सकों और आयुष महाविद्यालयों के प्रधानाचार्यों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। बैठक में आयुष पॉलिसी, योग और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की गई। मंत्री ने आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के व्यापक प्रचार प्रसार पर विशेष जोर देते हुए कहा कि योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रभावी अभियान चलाया जाए। 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर लखनऊ में 64वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक तैराकी एवं कॉन्स्ट्रक्टरी प्रतियोगिता 2026 का शानदार आगाज हुआ। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि डॉ प्रीति नंदर सिंह, सचिव उत्तर प्रदेश पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड एवं पुलिस महानिरीक्षक पीएसी मध्य जोन उत्तर प्रदेश द्वारा किया गया। इस प्रतियोगिता में कुल 425 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें 355 पुरुष और 70 महिला खिलाड़ी शामिल हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। अगला समाचार बुलेटिन रात्रि 11 बजे प्रसारित किया जाएगा। तब तक आप सुनते रहिए 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

0: क्या है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: कोई एहसास जो महकता है लफ्जों में कभी, कतरा बन के पिघल जाता है आंखों से कभी। कहीं तन्हाइयों का शोर तो कभी मुलाकात की

0: गीतों में सिमटते अल्फाज सहलाते हैं दिल को, तो महक उठती है नगमों की महफिल रजनी गंधा। हर रात 10 बजे 100.7 FM रेनबो पर, धड़कन लखनऊ की।
1: ये है 100.7 FM रेनबो, धड़कन लखनऊ की।

तो रात के 10:04 का वक्त, इनफैक्ट 5 मिनट का वक्त हो चुका है, जब फिजाओं में ये आवाजें गूंजती हैं ना, तो ये सीधी दस्तक है उन दरवाजों पर जहां पर रजनीगंधा की खुशबू बिखरने को बिल्कुल तैयार है। आइए, आपका स्वागत, आपके साथ आज का रजनीगंधा लेकर हम रहेंगे इस घंटे और अगले घंटे भी। आज का रजनीगंधा विशेष होने वाला है, इसलिए आपसे इल्तिजा गुजारिश है कि कहीं मत जाइए, सुनते रहिए।

हफ्ते रात के 10:10 का वक्त हो चुका है और जैसे ही घड़ी की सुइयां ये 10 बजे का वक्त बताती है ना, यकीन मानिए दिलों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि रजनीगंधा जो शुरू हो जाता है जब ये हवाएं ये फिजाएं बहती हैं, तो अक्सर प्यार इश्क मोहब्बत की दास्तान आप तक पहुंच जाती है। लेकिन कई बार इन दास्तानों से इतर कुछ ऐसी भी चीजें लेकर आपके लिए आती हैं, कुछ ऐसी भी खुशबू आपके लिए लेके आती है जो फिजाओं को न केवल महकाती है बल्कि बहुत लंबे अरसे तक अपने एहसास से उसको तारी भी रखती है, उससे भरा भरा सा भी रखती है। और आज का रजनीगंधा एक ऐसी ही शख्सियत के नाम है जो भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी शख्सियत, उनका ऑरा, उनकी खुशबू आज भी फिजाओं में वैसे ही है जैसे तब थी जब वो हुआ करते थे। भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में बहुत से ऐसे कलाकार रहे हैं जिन्होंने शानदार अभिनय और फिल्मों के जरिए अपना योगदान दिया है। ये वो सितारे हैं जिनकी चमक कभी भी की नहीं पड़ी, ना अपने जीवन काल में और ना ही इस जीवन से जाने के बाद भी। तो आज के रजनीगंधा में हम बात करेंगे एक ऐसे ही सितारे की जो ना सिर्फ रियल बल्कि रियल लाइफ का भी सितारा थे, रियल लाइफ के भी हीरो थे, जिसने रोमांटिक किरदार से लोगों को जितना दीवाना बनाया उतना ही गंभीर अभिनय से भी लोगों का दिल जीता। और जब भी कभी कोई हास्य का किरदार आया तो लोगों के चेहरे पर हंसी भी वैसे ही लाने में सक्षम रहे वो। अभिनेता के साथ साथ वे एक बेहतरीन राजनेता के रूप में भी काफी सफल रहे और जिंदगी के कई उतार चढ़ाव के बावजूद भी कहते हैं कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फिर बनकर उभरे एक ऐसे अभिनेता जिन्हें भारतीय सिने जगत सुनील दत्त के नाम से जानता है। तो आज का रजनीगंधा हम नाम करेंगे उन्हीं दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त साहब के नाम, भले ही वो आज के दिन हमारे बीच में नहीं है, आज के दिन उन्होंने हम सबसे विदा ली थी, लेकिन बात फिर वही कि भले ही वो नहीं है पर उनकी शख्सियत का जो जादू है आज भी वैसा ही फिजाओं में बिखरा है जैसे ये कल की बात हो। तो आज के रजनीगंधा को उन्हें याद करते हुए हम डेडिकेट करते हैं उन्हें। रात के 10:12 का वक्त रजनीगंधा में आज के साथ मैं आपकी दोस्त, आपकी रचा, आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर।

तो अगर सुनील दत्त साहब की आप पूरी जीवनी सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं, तो आप इस बात को बहुत साफ तौर से समझ सकते हैं कि वो एक ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने ना कभी कोई गलत बयानबाजी की, ना ही कभी किसी गलत बयान को सुना या उसको सहा, और ना कभी सिर झुकाकर जीने वाली ऐसी कोई भी स्थिति अपनी जिंदगी में उन्होंने लाकर खड़ी करी। हमेशा एक नेक दिल अनुशासित इंसान की तरीके से, फिर चाहे वो उनकी निजी जिंदगी रही हो या फिर फिल्मी दुनिया का सफर रहा हो, बचपन से ही अभिनेता बनने का सपना उनके मन में था। हालांकि कई जद्दोजहद इस बीच में आई, कई उतार चढ़ाव भी उनके जीवन में आए, लेकिन उन्होंने उन तमाम सारे उतार चढ़ाव को पार करके, क्रॉस करके अपने उस जो लक्ष्य था उसको हासिल भी किया। अच्छा, आज सुनील दत्त साहब की इस कहानी को या फिर उनकी जिंदगी की चीजों को सिर्फ ये समझ के मत सुनिए कि सुनील दत्त साहब के बारे में आपसे बात हो रही है। खासकर जो आज की युवा पीढ़ी है ना, उनसे हम जरूर कहना चाहेंगे, जब अभी हम आगे बढ़ेंगे और आप उनकी जिंदगी के कुछ किस्सों को सुनेंगे, तो उसे इतनी गौर से सुनिए ताकि आप उसे कहीं अपनी जिंदगी में कुछ सीख सकें, उतार सकें। क्योंकि जब आज की डेट में कहीं कुछ छोटी सी भी ऐसी चीज होती है जो आपके मन की नहीं है, आपके फेवर की नहीं है, आप परेशान होते हैं और जिंदगी को खत्म करने तक की बात तक पहुंच जाते हैं, ये सोचे समझे बिना कि आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी नहीं है, आपसे जुड़े लोगों का भी उतना ही इख्तियार।

उसके ऊपर है और हम अपनी जिंदगी को फना कर देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। लेकिन सुनील दत्त साहब एक ऐसे किरदार जिन्होंने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव झेले, उनको सहा, बावजूद उसके एक सशक्त शख्सियत की तरह खड़े रहे, लड़ते रहे और अपने मकाम को भी हासिल किया। फिल्म मदर इंडिया के बिरजू को कौन भूल सकता है, वही फिल्म मिलन की गोपी की अगर बात हो तो आप कतई अपने जहन से उसे निकाल नहीं सकते। जाने दुश्मन के लाखन का किरदार कहाँ आप भूल सकते हैं, जो तमाम सारे किरदार हैं जो आपके घर में हैं और इनको जीने वाली एक वही शख्सियत जिन्हें आज हम याद कर रहे हैं रजनीगंधा के गलियारे से। डेथ एनिवर्सरी है उनकी और इस मौके पर उन्हें याद करना बनता है। कहते हैं जब उन्होंने पर्दे पर आकर वो गीत गाया ना, मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद सा मुखड़ा रहता है, तो सुनते हैं कि अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे ये गाना अपनी पड़ोसनों को देखकर गाते रहे और फिर वो जो चार्म सुनील दत्त साहब ने पर्दे पर क्रिएट किया यकीनन निजी जिंदगियों में भी हुआ। 10:20 का वक्त, रजनीगंधा आज आपके साथ, आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर, आपकी दोस्त ऋचा के साथ।

पता है जिस उम्र में बच्चे ठीक से चीजें याद नहीं रख पाते, उस उम्र में सुनील घर के एक जिम्मेदार बेटे में तब्दील हो गए थे। और उनके जीवन पर एक बार नजर अगर फिराएं तो शुरुआती जीवन ने ही कहते उन्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान बना दिया, जो न सिर्फ अपने परिवार बल्कि अपने दोस्तों और समाज के लिए हमेशा खड़ा रहा, हमेशा उनकी जरूरतों में उनके साथ रहा, हमेशा उनकी दिक्कतों में उनके साथ एक साया बनके उनके साथ चला, हमेशा परेशानियों की बात हो तो भी उनके साथ रहा। अगर हम संजय दत्त साहब का जीवन देखें तो बचपन जितने ऐशो आराम से कट गया, अगर सुनील दत्त का जीवन हम उसके बारे में पढ़ें या जानें तो ऐसा कतई नहीं था, कहीं से नहीं था। जीवन तकलीफों से भरा रहा, उतार चढ़ाव से भरा रहा, लेकिन बावजूद उसके भी उन्होंने खुद को कहीं डिगने नहीं दिया, कहीं गिरने नहीं दिया। अब जब आगे का किस्सा हम आपसे पहुंचाएंगे ना, अब तक तो मैं चाहूंगी कि आप उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये कहानी शायद आप में से तमाम सारे युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन सकती है। पहले भी मैंने आपसे बात कही, जब आप उन्हें सुनेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि लोग किस किस जोर से निकल करके आते हैं, लेकिन बावजूद उसके अपने जज्बे को अगर नहीं छोड़ते हैं, अगर अपनी दृढ़ जो निश्चय होता है उसको नहीं छोड़ते हैं, तो अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाते हैं। 10:24 का वक्त, आज का रजनीगंधा सुनील दत्त साहब के नाम, आपके अपने 100.5 रेनबो के जरिए।

तो अगर उनके बचपन को हम गौर से देखें, उसकी बात करें ना, तो कहीं किसी बादल के जैसे, कवारा बादल के जैसे, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जिसका कोई बसेरा नहीं, बस यहाँ से वहाँ अपने आप को लेकर चलते जाना और ज़िंदगी की जद्दोजहद से निपटते जाना, कुछ ऐसी ही कहानी। कहते हैं कि उथल पुथल भरे शुरुआती जीवन की रेखाएं हाथ में लिए पश्चिम पंजाब के खुर्द गांव के एक घर में 6 जून 1929 को सुनील यानी बलराज दत्त का जन्म हुआ। जी हाँ, बलराज दत्त, वो बलराज दत्त जो बाद में सुनील दत्त के नाम से भारतीय सिने जगत में जाने गए। कैसे बने थे वो, इसकी भी कहानी जब आगे बढ़ेंगे तो इसका जिक्र भी करेंगे। इस बात को आप याद रखें, हम आगे ये बात आप तक पहुंचाएंगे। कहते हैं कि हिंदी सिनेमा जगत में जिन्होंने राज किया, न केवल सिनेमा जगत में बल्कि दिलों में भी, फिल्मों से लेकर राजनीति तक इस शख्स का नाम हमेशा रोशन रहा। झेलम नदी से 14 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में, एक गांव में जन्मे बलराज के पिता गांव के रसूखदार जमींदार थे। नाम था रघुनाथ दत्त और गांव में लोग उन्हें दीवान साहब के नाम से पुकारते थे, बड़े दिल वाले दीवान साहब। लंबे चौड़े कद काठी वाले रघुनाथ अक्सर अल सुबह अपने कर्मचारियों से बात करने और अपनी जमीन को देखने के लिए घर से निकल जाते थे और फिर तमाम बैठकी भरे दिन के बाद जब घर लौटकर अपने परिवार के साथ समय बिताते थे तो वाकई वो सबसे सुकून भरा वक्त होता था, पहर होती थी। लेकिन फिर एक सुबह कुछ यूं हुआ कि सुबह आई तो वैसे ही, लेकिन दिन वैसा नहीं लौटा। कहते हैं एक दिन घर से निकले रघुनाथ फिर कभी घर नहीं लौटे। वो दौर था जब बलराज महज 5 साल के थे। बताते हैं कि उस दिन घर के बाहर खेल रहे बलराज और उनकी छोटी बहन रानी ने अचानक अपनी दादी की चीख

चीखने की आवाज सुनी। और ऐसे में जब तक लोग आने वाली चीख की तरफ भागते, तब तक सामने से दादी तेजी से भागती हुई बलराज के पास आ गई और उन्हें फटाफट नन्हे बलराज को तांगे पर बिठाया और उससे बस इतना ही कहा कि उनके पिता को कुछ हो गया है और वो उन्हें ढूंढने जा रही हैं। फर्ज कीजिए एक 5 साल का बच्चा क्या ही कुछ समझेगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा है, दादी को बिलखते सुन रहा है, बहन को परेशान देख रहा है। हाँ, बस इतना समझ पा रहा था कि सब के सब बदहवास हैं, रोए जा रहे हैं, कोई तो ऐसी बात हुई है। इसी बीच गांव की एक चाय की दुकान पर

क्या ही कुछ समझेगा, लेकिन अपनी आंखों के सामने सब कुछ होता देख रहा है, दादी को बिलखते सुन रहा है, बहन को परेशान देख रहा है। हाँ, बस इतना समझ पा रहा था कि सब के सब बदहवास हैं, रोई जा रहे हैं, कोई तो ऐसी बात हुई है। इसी बीच गांव की एक चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ दिखाई दी। पास जाने के बाद समझ आया कि भीड़ किसी आदमी को घेरे हुए है जो जमीन पर निस्तेज पड़ा हुआ है, और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ दत्त यानी दीवान साहब थे। क्या हुआ था आखिर ऐसा, बताएंगे आपको आगे। 10:30 रजनीगंधा आपके अपने 107.7 FM रेनबो पर।

इसीलिए शायद कहा जाता है कि हमें आपको सबको वक्त से डरना चाहिए, क्योंकि वक्त कब क्या करे क्या दिखाए हमारे हाथ में नहीं होता। 5 साल का एक छोटा बच्चा जिसकी आंखों के सामने उसके पिता निस्तेज पड़े हुए हैं, इससे बड़ी त्रासदी जीवन की कोई शायद और हो नहीं सकती, और वो उन्हें देखकर कुछ ना कर सके ये तो और बेबसी का आलम है। सुनील साहब ने एक इंटरव्यू में इस बात को साझा भी किया था, तब उन्होंने कहा कि मैं दूर खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था, लोग मेरे पिता को उठाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे पिता जैसे कभी ना खुलने वाली गहरी नींद में जा चुके थे।

जो किसी भी बच्चे के लिए त्रासदी से कम नहीं हो सकती। वो बच्चा जिसका पिता उसे लोरी गाकर सुनाता था उसे एक अच्छी नींद के लिए, अब वो खुद ऐसी नींद में सो चुका था जहां से वो कभी उठ नहीं सकता था।

कहते हैं कि इस हादसे ने उनका बचपन भी उसी वक्त कहीं खत्म कर दिया था। उनके बचपन ने भी जैसे उसी वक्त दम तोड़ दिया था। एक जमींदार का राजकुमार जैसा बेटा पिता के चले जाने के बाद घर का जिम्मेदार बेटा बन चुका था। अब महज 5 साल की उम्र में उनके सिर से पिता का साया उठ चुका था।

0: चाहता तो हर पिता यही है कि वो अपने बेटे को वो प्यारी लोरियां सुना सके जिसको सुनकर वो एक अच्छी नींद सो सके। और हर एक बेटा, हर संतान यही चाहती है कि वो अपने पिता की गोद में सर रखकर लोरी सुनते सुनते सो जाए। लेकिन विडंबना ये कि सुनील दत्त साहब के हिस्से में ऐसा हो ना सका। और ऊपर से गहरी विडंबना तब और हुई जब नियति शायद रुकने को तैयार नहीं थी। तमाम जिम्मेदारियों के बीच बलराज के जीवन में अभी मुश्किलें आना और भी बाकी थी। कहते हैं 1947 में जब देश विभाजन की त्रासदी से जूझ रहा था, हर तरफ उत्पात था, इस दौरान बलराज यानी सुनील दत्त साहब का गांव खुद पाकिस्तान के हिस्से चला गया और बलराज अपने पिता के एक सबसे खास दोस्त याकूब की मदद से भारत आ गए। विभाजन के बाद बलराज ने अपने परिवार को शरणार्थी कैंप में ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया। महीनों बीतने के बाद उन्हें अपना परिवार अंबाला में मिला तो, लेकिन इस समय तक बलराज अपनी पुश्तैनी संपत्ति खो चुके थे। तंगहाली का दौर, बलराज और उनका परिवार शरणार्थी कैंप में ही अपने दिन जैसे तैसे बिताने लगे। विभाजन से मिली चोट के कारण ही दत्त साहब खुद को ताउम्र रिफ्यूजी भी बताते रहे। हालांकि इसी जद्दोजहद के बीच में जैसे तैसे हालत उनकी सुधरी भी और एक समय बाद बलराज दत्त नाम का ये लड़का मुंबई पहुंच गया। वो मुंबई जहां वो हमेशा जाना चाहते थे, क्योंकि बचपन से ही एक्टर बनने का सपना देखते थे। और इसी शहर में कहते हैं उनको वो मकाम मिला जिसकी उन्हें चाहत थी, साथ ही उनकी मोहब्बत भी मिली जिसका नाम था तेजेश्वरी। वो मोहब्बत जो उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। तो अगर तेजेश्वरी उनकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी तो नरगिस दत्त साहिबा से उनकी मुलाकात कैसे हुई सब बताऊंगी आपको। 10:41 का वक्त हो चुका है। रजनीगंधा आपके अपने 100.7 FM रेनबो पर इस वक्त आपकी मेजबान दोस्त रिचा के साथ।
1: सावन का महीना पवन करे शोर,
2: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
2: अरे बाबा शोर नहीं।

जिंदगी की धारा अपनी रफ्तार से बहती जा रही थी और इधर उस धारा में सुनील दत्त और उनका परिवार भी अपनी रफ्तार से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। माँ कुलवंती देवी ने जैसे तैसे बेटे की परवरिश की और इस दौरान सुनील ने अपनी पढ़ाई को भी जारी रखा और कहते हैं कि फिर हायर एजुकेशन के लिए मुंबई आ गए थे। हालांकि कुछ समय उन्होंने लखनऊ में भी बिताया था, लेकिन बाद में मुंबई जाकर जय हिंद कॉलेज में अपना दाखिला लिया और वहां से पढ़ाई पूरी करने लगे। कहते हैं कि उस वक्त पढ़ाई का खर्च उठाना खासा मुश्किल हुआ करता था, लिहाजा उन्होंने मुंबई की बसों में काम करना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें हर महीने 100 रुपए सैलरी मिला करती थी। दोपहर के 2:30 बजे से रात 11 बजे की शिफ्ट होती थी, जिसमें वो रोज सुबह 7 बजे स्कूल जाते, अपने कॉलेज जाते और वहां से पढ़ने के लिए लाइब्रेरी जाते थे, क्योंकि पढ़ाई का खर्च और किताबों का खर्च वो उस वक्त उठा नहीं सकते थे। लाइब्रेरी जिसके लिए उनका सबसे अच्छा एक आयाम बन गया था, जहां पर जाकर अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते थे। हालांकि इस बीच काफी जद्दोजहद चलती रही, स्टेशन, घर और फिर बसेस, सारा काम एक साथ करते करते कहते हैं कि एक वक्त वो भी आया जब मुंबई की बसों में काम करने वाले इस शख्सियत सुनील दत्त का, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं अभी, लोगों ने बस का टिकट कटवाने के बजाय उनकी फिल्मों के टिकट कटवाने शुरू कर दिए, उनकी फिल्मों की टिकट के लिए लाइन में खड़े दिखाई देने लगे। पढ़ाई के दौरान ही स्थिति खराब थी तो बस कंडक्टर की नौकरी भी शुरू की थी और कहते हैं कि इसी दौरान उन्होंने रेडियो जॉकी का भी जो काम था उससे भी किया था। और जब इस बात को हम बताते हैं तो बड़ा फक्र महसूस होता है कि हम भी आज आपके साथ उसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जहां से ऐसे दिग्गज शख्सियतें निकल करके गई हैं। तो कैसे एक रेडियो अनाउंसर भी बने वो, इसका जिक्र भी हम करेंगे आपसे अभी, जब आगे ये जिक्र आप तक रहेगा। फिलहाल सुनील दत्त साहब को हम और आप याद कर रहे हैं आज, तब जब आज के दिन हमने और आपने उन्हें खो दिया था।

वैसे सच है ये बात, अगर दिल में उम्मीद के दिए जलते हैं तो आप नो डाउट आपकी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अपनी पढ़ाई के खर्च को पूरा करने के लिए बस कंडक्टर की नौकरी उन्होंने शुरू की थी, लेकिन मन में ख्वाब ये भी था कि कुछ बड़ा करना है, तो उसी दौरान रेडियो जॉकी का काम भी उन्हें मिल गया। रेडियो सलोन में एक अनाउंसर के तौर पर उन्होंने नौकरी अपनी शुरू कर दी थी, और उस वक्त कहते हैं कि फेमस अनाउंसर के पद पर तैनात थे वो, जहां उन्हें फिल्मी सितारों का इंटरव्यू लेने के मौके मिला करते थे, और उस दौरान उन्हें इस काम के 25 रुपए महीना मिलते थे, जो जिससे उनका पढ़ाई का खर्च और बाकी सारे काम हुआ करते थे। अब रेडियो सलोन में काम कैसे मिला था ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि सुनील कॉलेज में थिएटर से जुड़े हुए थे, और एक बार कॉलेज थिएटर का प्ले देखने रेडियो के प्रोग्रामिंग हेड वहां पहुंचे। कहा जाता है कि सुनील दत्त को देखा और उनकी आवाज सुनकर इतने कायल हो गए कि तुरंत ही प्रोग्रामिंग हेड ने सुनील दत्त साहब को जॉब ऑफर कर दी, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। फिर सुनील दत्त साहब बड़े बड़े कलाकारों का इंटरव्यू लिया करते थे, जिसमें दिलीप कुमार सरीखे अभिनेता भी होते थे, और कई सारी फिल्मी हस्तियां अक्सर वहां आती थी जिनके इंटरव्यूज वो लेते थे, और इसी तरीके से वो अनऑफिशियली फिल्मी दुनिया से भी जुड़ गए थे, वो फिल्मी दुनिया जिसका वो हिस्सा हमेशा से बनना चाहते थे। और इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई उनके पहले प्यार से, तेजेश्वरी से। जी हाँ, हालांकि उस वक्त दोनों नहीं जानते थे कि भविष्य में वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, जीवन साथी और संगरी बनकर चलेंगे। तो अगर तेजेश्वरी उनका पहला प्यार थी, तो नरगिस दत्त साहिबा के साथ उनकी जिंदगी कैसे वो उसमें शामिल हुई थी, ये भी इसका जिक्र हम आपसे करेंगे। फिलहाल अभी 10:52 का वक्त, और ये प्यारा सा ट्रैक आपके रेडियो जेट्स तक। कहते हैं कि जब पहली बार वो मिले थे तेजेश्वरी से, तो इंटरव्यू लेना भी भूल गए थे, कुछ नहीं कह पाए थे, और उस वक्त मन की दबी बात कुछ यूं निकली थी।

नमस्कार। रात के 11 बजे हम सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कृषि विभाग की विभिन्न प्रस्तावित कार्य योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि खरीफ 2026 की सभी तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं तथा किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी सहायता समय पर उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक, पारदर्शी व्यवस्था और फसल